0: 5:30 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर।

0: इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि के तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार।

7:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक 8 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 8:02 पर एक बार फिर से जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

9 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। ठीक 10 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। और 10:02 पर आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूजिक।

11 बजे आप सुन सकेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। 12 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। अब से कुछ ही देर में होंगे हिंदी में समाचार।

समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनयिक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित गुलाबी टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे एफआईएच विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलेगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुप्रभात दोस्तों। उठ गए आप या अभी भी मोबाइल की स्क्रीन को घूरते हुए सोच रहे हैं, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट का 35 मिनट हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज की सुबह जो है दोस्तों वो जरा अलग है। आज हम मौसम की बात नहीं करेंगे, आज हम ये भी नहीं कहेंगे कि उठिए जागिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए पहले कभी कभी अलार्म बंद करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। जैसे घर से निकलते समय माँ का वो कहना कि बेटा नाश्ता कर लेना, पापा का बिना कुछ कहे हमें दरवाजे तक छोड़ने आ जाना, बच्चे का स्कूल जाते जाते पीछे मुड़कर देखना और बाय बाय कहना, या फिर किसी दोस्त का अचानक मैसेज आ जाना कि क्या कर रहे हो, और हमें लगता है बस इतना ही तो है। लेकिन सच पूछिए, इन्हीं बस इतना ही वाली चीजों से तो पूरी जिंदगी बनी होती है दोस्तों। तो आज की पहली सुबह उन छोटी छोटी खुशियों के नाम।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं हम आप, और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। और दोस्तों, वाकई में ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चाय में चीनी कम हो जाए तो हम तुरंत बोल देते हैं कि आज चाय जो है वो अच्छी नहीं बनी, लेकिन ज़िंदगी में मिठास कम हो जाए तो हम कितने दिन चुप रहते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, बस मन में कहते रहते हैं चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ अपने आप थोड़ी ठीक होती है, कभी कभी हमें खुद कहना पड़ता है चलो आज बात करते हैं, चलो किसी से मिलते हैं, एक दोस्त से, एक भाई से, एक बहन से, किसी पुराने रिश्ते से, या शायद कभी कभी खुद से। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए, वहां कौन है जिससे आप रोज की रोज जो है बात आपकी होती है लेकिन आप उसकी बात सुनते नहीं कभी भी? कौन है जो आपके लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन कभी कभी भी आप उनके लिए थैंक यू नहीं कहते? और कौन है जिसके बिना घर की आवाज थोड़ी कम लगती है, लगता है कि घर में कुछ कमी है? तो आज कुछ बड़ा मत सोचिए, बस उसके लिए बैठिए, उसके पास बैठिए। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिना मोबाइल के, बिना जल्दी के, बस 5 मिनट। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए लंबी बातचीत नहीं दोस्तों, सिर्फ थोड़ी

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।

एसएमएस कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुप्रभात। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपके साथ में साझा करने वाली हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रोज खिलौने की दुकान के बाहर खड़ी लाल कार को देखा करता था। एक दिन उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और सिर्फ 10 रुपये लेकर दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा कि अंकल इतने में ये वाली कार मुझे मिल जाएगी? तो दुकानदार अंकल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा ले जाओ मिल जाएगी। बच्चा खुशी से कार लेकर भाग गया। दुकानदार के बेटे ने बाद में पूछा, पापा ये तो 50 रुपये की कार थी, आपने 10 रुपये में क्यों दे दी? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, आज मैंने कार नहीं बेची बेटा, मैंने आज ये कार नहीं बेची है, आज मैंने एक बच्चे की खुशी खरीदी है, उसकी मुस्कुराहट खरीदी है। शायद खुशी भी ऐसी ही होती है, कीमत बड़ी नहीं होती, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जो हमारी सोच है, जो हमारे दिल के अंदर है, वो जो भावना है वो बड़ी होनी चाहिए। आज आपसे एक अजीब सा सवाल पूछती हूँ चलते चलते, कि अगर आपको आज सुबह अपने जीवन के पिछले 10 सालों में से सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो आप वो कौन सा चुनेंगे? कौन सा दिन होगा वो? आपका पहली नौकरी का दिन, पहला स्कूल का दिन, आपकी शादी का दिन, बच्चों के बचपन का कोई दिन, या फिर वो दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था? दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर बीते हुए दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं ढूंढते हैं। दोस्तों कोई छोटी घटना आज सोच कर देखिए कि शायद वो दिन दोबारा आ जाए। सोचिए, बताइए। तब तक हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, और आज के सुप्रभात में बस इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी बात कि जिंदगी हमें हर दिन कुछ देती है, कभी खुशी, कभी सबक, कभी कोई इंसान और कभी किसी इंसान की कमी। सबको संभाल कर रखिए।

क्योंकि समय वापस नहीं आता, यादें आती रहती हैं, किसी खुशबू में, किसी गीत में, किसी तस्वीर में, तो कभी कभी खुद में। मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि, आप सुन रहे हैं सुप्रभात। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए सवाल के साथ, और शायद ज़िंदगी के किसी ऐसे कोने की कहानी लेकर जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन पहली बार महसूस करेंगे। तब तक सुबह को सिर्फ गुजारिए मत, थोड़ा सा जी भी लीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के छठे अध्याय को, जहां पर ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है और 33वें श्लोक में उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो कुछ कहा वो असत्य नहीं है, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। 33वें श्लोक में उन्होंने कहा, न भारती में अंगम ऋषोप लक्षते न वे क्वचिन में मनसो मृषागति ही न मे ऋषि काणी पतंत्य सत्पथे यन्मे हृदोत कंठ अवता धृतो हरि ही। कि प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती है, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती हैं। तो नारद जी वस्तुतः ब्रह्मा जी की बात सुनकर के जो कुछ भी उन्होंने बताया, तो ये सुनकर के नारद जी ने मानो सोचा कि देखिए, आपने बताया किस ब्रह्मांड में महलोक के ऊपर जनलोक है, तपलोक है और सत्यलोक जहां की आप रहते हैं, तो आपने ये बताया और ये भी बताया कि भगवान की एक पाद विभूति जो है वो माइक है, यानी वो प्रलय काल में नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान की जो त्रिपाद विभूति है जिसमें उनके अपने धाम आते हैं वो नित्य है ना। तो एक पाद विभूति जो है वो त्रिगुणमय है, प्रपंच है, माइक है। और आपने ये भी कहा कि माया इतनी लज्जित हो जाती है भगवान के सामने कि उनके सामने जाती ही नहीं है। तो भगवान की ये जो बहिरंगा माया है उसके द्वारा ये संसार निर्मित होता है, प्रपंच। और आप ये कह रहे हैं कि ये तो सत्य ही है, ये प्रपंच भी सत्य ही है, जबकि हमने तो सुना है बड़े बड़े लोगों से, वो कहते हैं ये प्रपंच ये माया अनित्य है, वो कहते हैं कि ये प्रपंच ये माया मिथ्या है, आप कहते हैं कि नहीं ये भी सत्य है। तो ये कैसे विश्वास करें? क्योंकि माइक वस्तु जो है वो तो जड़ है, वो तो समाप्त हो जाती है, परिणामशील है, इसलिए वो अनित्य है, इसीलिए तो क्या वो मिथ्या नहीं हुई? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो, जो माइक वस्तु है ना, वो भी भगवान के सानिध्य से ही तो प्रकट होती हैं, भगवान की वजह से हैं, इसलिए वो भी सत्य ही हैं, परंतु इतनी क्षणिक हैं, इतने कम समय के लिए हैं कि वो मिथ्या जैसी लगती हैं। तो लोग जो हैं बड़े बड़े शास्त्रज्ञ अपने मन की कल्पना से सब कुछ मिथ्या मिथ्या मिथ्या कहते रहते हैं। अगर ऐसा हो तब तो भगवान की भगवत्ता को भी वो अनित्य कह देंगे। और अगर भगवान की भगवत्ता ही अनित्य हो गई तो उनकी जो त्रिपाद विभूति रूप उनके समस्त धाम है, फिर उनकी बात क्या कहें, वो भी अनित्य हो जाएंगे, है ना, वो तो ऐसा ही कहेंगे। तो इस विषय में मैं, यानी नारद जी कह रहे हैं, इस विषय में मैं किसकी बात पर विश्वास करूं? उन लोगों की बात पर जो ये कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, और आपकी बात कि आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ सत्य है। तो इसी के उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना भारती में अंग, यानी मेरा जो वाक्य है कभी मिथ्या हो नहीं सकता, मेरा मन कभी भी मिथ्या का चिंतन नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियां कभी भी अन्य किसी पथ पर गमन नहीं करती हैं। तो जो कुछ मैंने तुम्हें बताया
वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे मन की जो गति है वो कभी मिथ्या की तरफ नहीं जाती। सर्वत्र हेतु, क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपके मन की गति मिथ्या की तरफ नहीं जाती? तो सर्वत्र हेतु यानी इसलिए क्योंकि मैं उत्कंठायुक्त चित्त के द्वारा भगवान का स्मरण करता हूं, मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ है, और जहां हरि है वहां सब कुछ ही तो सत्य है, इसलिए मेरी वाणी पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा। किंतु जो अन्य लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े शास्त्र अवश्य ही पढ़े होंगे, परंतु मन के द्वारा भी उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए उनके मन की गति मिथ्या की तरफ ही जाएगी। अतः उनकी वाणी उनके वाक्य मिथ्या ही है। तो ये जो मिथ्यावादी हैं उनके मत को तुम ग्रहण मत करना, यही भाव इस श्लोक का है। तो ब्रह्मा जी चूंकि अधोक्षज हरिपरायण है, यानी वो हरि जो इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं, जड़ इंद्रियां जिनको नहीं जान सकती हैं, ऐसे भगवान के परायण हैं, इसलिए उनकी वाणी उनका मन उनकी इंद्रियों के क्रिया समूह सब भगवान के अलावा अन्य किसी भी वस्तु की सेवा में नियुक्त नहीं होती। हरि सेवा के अलावा माइक भोग में यदि कोई व्यक्ति कोई भी नियुक्त हो जाए तो वो अनेक प्रकार की बातें करेगा, प्रजल्प, उसका मन चंचल होगा और उसकी इंद्रिय समूह भी चंचल होंगे और वो बहिर्मुख हो जाएगा। और अगले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस प्रकार की उत्कंठा से युक्त होकर मैं भगवान का ध्यान करता हूं तो भी मैं वेदमय हूं, तपोमय हूं, प्रजापतियों के द्वारा पूजित प्रभु हूं और मैं बहुत एकाग्र चित्त हूं। एकाग्र चित्त का समाशय किया है तो भी जिससे मैंने जन्म ग्रहण किया था उसको मैं जान नहीं पाया, तब फिर मेरे द्वारा सृष्ट अन्यान्य जीव किस प्रकार उस पुरुष को जान पाएंगे, ये तो कहो। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि कहो कि देखिए जो विद्वानगण हैं और वो अभिमान करते हैं कि हम पंडित हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो वो जिन शास्त्रों का ज्ञान लेकर कुछ कहते हैं वो शास्त्र मेरे ही तो हैं, मुझे ही से तो प्रकट हुए हैं, भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से। तो इस तरह श्री भगवान का आदेश प्राप्त होकर मैंने पहले तपस्या की थी, इस बात को बता करके ब्रह्मा जी अपना ज्ञान और विज्ञान दोनों ही दिखा रहे हैं। उन्हें ज्ञान है और व्यवहारिक रूप से भी उन्होंने भजन किया, तपस्या की, ये विज्ञान है। और भगवान के द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य के बारे में भी उन्होंने कहा कि देखो प्रजापति मेरी पूजा करते हैं, मैं प्रजापतियों द्वारा पूजित प्रभु हूं। तो ये भी तुम नहीं कह सकते कि मुझ में उस प्रकार योगेश्वरत्व नहीं है, है तभी तो सब पूछते हैं, है ना? यानी मैं निपुण योग के द्वारा युक्त हूं तो भी मैं एकाग्र चित्त से भगवान को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि मैं जान ही नहीं सकता, जिनसे मेरा जन्म है, मेरी सृष्टि है, मैं उनको ही नहीं जान पाया। तो मेरे द्वारा सृष्ट बाकी लोग जो अपने आप को कितना भी विद्वान क्यों ना कहें, ये सारे जीव, ये भला भगवान को कैसे जान सकेंगे? और जो लोग भगवान को तटस्थ कहते हैं, तटस्थ लक्षण, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बात कही ब्रह्मा जी ने। और आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं
न तो अस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिद्धम स्वस्तयनम सुमंगलम यो हियात माया विभवम स्म पर्यगाद यथा नभा स्वांत मथा परे कुताहा।

0: 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। कह रहे हैं, शरणागत भक्तों के संसार के दुख को जो नाश कर देते हैं, जो अपने प्रेम रूपी सुख को प्रदान करते हैं, जिनके चरण अतिशय मंगल जनक हैं, ऐसे श्री भगवान के चरणों में मैं प्रणत होता हूँ, शरणागत होता हूँ। आकाश जिस प्रकार अपना ही अंत नहीं पा सकता है, इसी प्रकार वो पुरुष भी अपनी योग माया के विस्तार की सीमा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर दूसरे लोग किस प्रकार से उनकी माया विस्तार का परिमाण करने में समर्थ होंगे, कैसे माप पाएंगे? संभव नहीं है। तो जो लोग ऐसा प्रलाप वचन कहते हैं, यानी जो उन्मादित हो गए हैं और वो सोचते हैं कि अरे भगवत तत्व हम कह सकते हैं भाई, हम जानते हैं भगवत तत्व क्या है, अरे ये लोग तो अतिशय तुच्छ गण हैं, तुच्छ जनगण। जब मैं भगवत तत्व पूरी तरह नहीं जान पाया, वो इतना सीम है, जब भगवान ही अपनी योग माया की अवधि को नहीं जान पाए कि कितनी फैली हुई है उनकी महिमा, तो ये भला क्या जान सकते हैं है? भगवान अपने तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, ये सोचकर भक्ति का उद्रेक हुआ है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भक्ति से भरकर भगवत चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, न तो अस्म्यहम् ये कह रहे हैं, यानी मैं परमेश्वर के उन्हीं चरणों में प्रणाम करता हूं जिन चरणों की शरणागति लेने से व्यक्ति का भव बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान शरणागत व्यक्ति के भव बंधन का छेदन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और भक्त को समस्त शांति प्रदान करते हैं और जो परम मंगलमय है। समी उषाम, यानी जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, ऐसे भक्तगण भव छिद्दम, यानी ये जो भव छिद्दम है अर्थात पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार का दुख छेद देते हैं भगवान, समाप्त कर देते हैं। बारंबार ना जाने कब से हम जन्म ले रहे हैं, कब से मर रहे हैं, कितने कितने शरीर धारण करते हैं, कितने कितने शरीर छोड़ते हैं, और जब शरीर धारण करते हैं तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां त्रिताप कितने ही दुखों से निपटते रहते हैं। तो कितने ही दुख हैं, उन सब का नाश हो जाता है भगवान के चरणों की शरणागति का। ये तो गौण फल है, आनुषंगिक फल है, ये मुख्य फल नहीं है। तो मुख्य फल क्या देते हैं भगवान? तो बताया स्वस्थ अयनम, अर्थात भगवान अपने प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। भगवत प्रेम का सुख अतिशय विशाल है। भगवत प्रेम सुख के आगे अमृत भी तुच्छ है। भगवत प्रेम सुख के आगे समस्त सुख नगण्य है, समस्त सुख नगण्य है। तो ऐसा प्रेम सुख भगवान देते हैं, क्योंकि इसी प्रेम सुख से कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है, भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर सकता है, भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त कर सकता है। अगर प्रेम सुख नहीं है तो वो प्राप्त नहीं कर सकता, और अगर प्रेम सुख है तो वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे भगवान जिनके श्री चरण अतिशय सुमंगल प्रदायक हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो क्या वो अपने साधन से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते? तो उत्तर है, नहीं कर सकते, अगर भगवान की कृपा ना हो, भक्ति का आश्रय ना हो। सिर्फ कर्म से यज्ञों से कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर जो कुछ प्राप्त भी हुआ तो वो शीघ्र नष्ट हो जाएगा, सब मायक है। भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रेम सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो वैसे भगवान जिनके चरणों की शरण लेने से ही इतनी कृपा मिल जाती है, वो भी मगर अपनी योग माया का विस्तार स्वयं नहीं जानते हैं, स्वयं नहीं जानते हैं। यानी ये नहीं जानते हैं कि इतनी दूर तक मेरी योग माया का विस्तार है, मेरी महिमा का विस्तार है। अब वही नहीं जान सकते हैं तो हमारे जैसे अन्य जनगण कैसे जानेंगे, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब कोई कहे, अच्छा ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो भला कैसे नहीं जान सकते। तो उसका उत्तर एक दृष्टांत के साथ दे रहे हैं ब्रह्मा जी, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जिसका अर्थ यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से जो शरणागत व्यक्ति हैं उनके सारे संसार दुख समाप्त हो जाते हैं, उसका भव बंधन खंडित हो जाता है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रेम सुख को प्राप्त करता है। ऐसे भगवान भी मगर अपनी महिमा पूरी तरह नहीं जान पाते, इतनी महिमा है उनके, अपार यश है। तो अगर कोई ये प्रश्न करे, ये कैसे हो सकता है भाई, ज्ञान शक्ति के तो वही आधार हैं, ज्ञान तो उन्हीं से प्रकटित होता है संवित शक्ति के रूप में, अरे वो तो सर्वज्ञ हैं, वो कैसे नहीं जान सकते। तो इसका उत्तर एक दृष्टांत के द्वारा दे रहे हैं। कह रहे हैं भगवान असीम है, अनंत है, और उनकी योग माया का जो वैभव है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं, इतनी इतनी विशाल है। आकाश जैसे अपना अंत अपनी सीमा नहीं पा सकता है, इसी प्रकार से भगवान स्वयं अपनी योग माया का वैभव और उसकी भी सीमा नहीं पा सकते हैं, अन्य की बात और क्या कहें। इसके द्वारा उनके सर्वज्ञत्व पर कोई आघात नहीं होता, उनके सर्वज्ञत्व की कोई हानि नहीं होती। कारण जैसे कोई कहे, तुमने आसमान में फूल खिलता हुआ देखा है क्या, और दूसरा आदमी कहे, नहीं नहीं मैंने तो आसमान में फूल कभी देखा नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई वो तो देख ही नहीं पाया, बेकार है, उसकी दृष्टि शक्ति ही बेकार है, पर हम देख पाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो चीज है ही नहीं, उसे अगर किसी ने नहीं भी देखा तो उससे किसी का सर्वज्ञत्व, उसकी हानि नहीं होती है। ऐसे ही दशम स्कंद में श्रुतियों ने भगवान की आराधना की है, स्तुति की है, और कहा है उन्होंने कि हे परमेश, ब्रह्मा आदि स्वर्ग लोकपाल गणों के पक्ष में आपके गुणग्राम के अंत को पाने की बात तो दूर रहे, हे अनंत, आप अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं, आपका यश अनंत है, आपकी महिमा अनंत है, आप स्वयं भी अपनी महिमा का अंत नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही जैसे आसमान है और आसमान में असीम धूल के कण वायु के संचालन से यहां वहां भागते रहते हैं, अनंत कण है। ऐसे ही प्रभु आप में भी तो पृथ्वी आदि उत्तरोत्तर 10 गुण 7 आवरण से परिवृत्त ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड प्रचंड काल के वेग से परिभ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो कोई आपकी महिमा की धारणा नहीं पा सकता, आप स्वयं नहीं पा सकते हैं। तो यही बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। और अगले श्लोक में कहा, देखो मैं हूं, तुम हो या रुद्र जी हो, वो तो भगवान की एक पाद विभूति भी नहीं जान सकते हैं, तो बाकी देवता गण कैसे जान पाएंगे। उनकी माया के द्वारा विमोहित बुद्धि होकर उनकी माया से निर्मित इस विश्व को लोग कैसे जान पाएंगे, वो तो बस अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसका वर्णन ही करते रह जाते हैं। यानी हम लोग ही नहीं जान पाते इतने बड़े बड़े देवता, तो बाकी जो देवता हैं वो भला कैसे जान पाएंगे। भगवान की माया को ही नहीं जान पाते तो फिर त्रिपाद विभूति जो है, यानी भगवान के अनंत धाम, उनको भला कोई कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता। तो यहां बहुत दीनता के साथ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो सृष्टि करता हूं ब्रह्मा, तुम सब ऋषि हो, रुद्र पर्यंत जिन नारायण के स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं तो अन्य अन्य देवगणों की बात भला क्या कहें, क्या कहें। और उसमें भी उनकी त्रिपाद विभूति यानी उनके धाम के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे हैं। हम तो एक पाद विभूति यानी अनंत ब्रह्मांड जो है वही नहीं जान पाते। अनंत ब्रह्मांड को ही कहां जान पाते हैं, वो तो सिर्फ एक पाद विभूति है, यानी एक चौथाई विभूति है भगवान की सृष्टि का, और 3/4 विभूति जो है वो भगवान के अपने धाम है। इतने धाम है, इतने तो कितनी बड़ी बात है। तो फिर क्या करें, आप क्या करते हैं। तो 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ उनके अवतारों का और उनके कार्य समूह का, कि उन अवतारों ने क्या कार्य किए, क्या लीलाएं की, बस उसका गान करते रहते हैं। गान, गुणानुवाद, गुणानुवर्णन करते रहते हैं, है ना। किंतु कोई भी उनको यथार्थ शक्ति स्वरूप तत्व के साथ जान नहीं सकता। तो हम उन भगवान का स्वरूप भला क्या बताएं, हम तो बस उन प्यारे श्री भगवान के चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं और वही करते हैं। तो ठीक है, भगवान को पाने के लिए उन्हें जानना क्या जरूरी है, जब उनको जाना ही नहीं जा सकता तो कैसे उन्हें पाया ही जा सकता है, बिना जाने क्या पाया जा सकता है। तो उत्तर है कि अगर उनके नामों का कीर्तन करें, उनके रूप का कीर्तन करें, उनकी लीलाओं का कीर्तन करें, भक्ति करें, तो उनके स्वरूप का अज्ञान होते हुए भी भक्ति तो संभव है। यही बता रहे हैं कि उनके नामों का कीर्तन संभव है, भक्ति संभव है, उनके अर्चा विग्रहों का अर्चन संभव है, है ना, उनकी लीलाओं का स्मरण, उनकी लीलाओं की कथा का श्रवण, ये सब तो संभव है कम से कम। इसलिए कह रहे हैं कि हम तो बस उन भगवान के अवतार लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं, किंतु उनको यथार्थ में हम समझ नहीं सकते हैं, और ऐसे ही श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो इसलिए हम उनके अवतारों की बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अवतार लिया, कैसे अवतार लिया, और वहां उन्होंने क्या क्या लीला की, क्या क्या कर्म समूह किया, वो तुम श्रवण करो, है ना। क्योंकि भक्ति तो श्रवण से ही आएगी। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके अनंत अवतार हैं। अनंत अवतारों में अनंत लीलाएं

होते हैं, उन लीलाओं का हम गान कर सकते हैं। बस हमारे बस में यही है, क्योंकि उस गान को करके और उस गान को श्रवण करके, उन कथाओं को श्रवण करके ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो आद्य पुरुष अवतार भगवान प्रतिकल्प के आरंभ में अपने आप ही, अपने ही द्वारा अपना ही सृजन, पालन और संहार करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, सब उनकी वजह से है ना। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान पूर्णतम है, जन्मादि विकार शून्य है, इसीलिए वो अनादि है, अनंत है, सद्गुणों की राशि है, सद्गुणों की खान है। और जो सत्व आदि गुण हैं, उनका संसर्ग नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। सर्वकाल वो इसी रूप में अवस्थित रहते हैं, इसलिए वो नित्य हैं, नित्य हैं। और उनमें दूसरी किसी वस्तु का अभाव है, इसलिए वो अद्वय हैं, है ना। सब कुछ उनसे प्रकट है, वो किसी से प्रकट नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है, ना स्वजातीय भेद, न विजातीय भेद, न स्वगत भेद, सब कुछ उनसे है। इसलिए ऐसे भगवान का भजन करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य। तो बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी, और इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रख रखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए पिंक टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में आज भारत गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलेगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। दोस्तों, कल हम सब ने पूरे जोश के साथ अपनी आजादी का जश्न मनाया है ना। हाथों में तिरंगा और लबों पर जय हिंद का नारा था। अपने आप में जो कहानी बयां कर रहा था ना कि हम हिंदुस्तानी कितनी मोहब्बत करते हैं अपने देश से, अपनी मातृभूमि से। देश का जिक्र होते ही देशभक्ति रगों में उफान मारने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस के दिलों में देशभक्ति का जज्बा दिखाई देता था। तो आइए इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ। तो आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मैं हूं एसआर यानी संतोष राव।

0: से प्यार है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। दोस्तों आज है 16 अगस्त और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज का ये दिन इस साल का है 228वां दिन, मतलब 2026 में अभी बचे हुए सिर्फ और सिर्फ 137 दिन। दोस्तों गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम के इस पहले भाग में यानी इस घंटे में 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और 8 बजे से 9 बजे का दूसरा भाग जो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का होता है उसे आगे बढ़ाएंगे गीतांजलि। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं आज के दिन घटी उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। दोस्तों हमने बचपन से पढ़ा है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा जुलाई 1497 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से रवाना हुए थे और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर को पार करके 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट केरल पहुंचे थे। कालीकट को अभी कोझिकोड बंदर का नाम से जाना जाता है और वहां जब वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचते हैं तो वहां के स्थानीय शासक राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था उस वक्त। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे भारत देश और हमारी प्राचीन सभ्यता पहले से ही मौजूद थी और कई देशों के साथ व्यापार हुआ करता था, इसीलिए वास्को डी गामा को केवल यूरोप से भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोजकर्ता के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में स्थित ऐतिहासिक शहर यॉर्क टाउन की खोज वास्को डी गामा की तरह किसी व्यक्ति द्वारा इसकी खोज नहीं की गई थी, जी हाँ, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वर्जीनिया पोर्ट एक्ट के तहत इसे एक आधिकारिक बंदरगाह के रूप में बसाया गया था आज ही के दिन 1691 में। और अमेरिका के इस ऐतिहासिक शहर यॉर्क टाउन का नाम उत्तरी इंग्लैंड के ऐतिहासिक शहर यॉर्क के नाम पर रखा गया था।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी भेजने वाले देशों में से एक है और इसी के तहत भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने कांगो के अशांत और संघर्षग्रस्त इलाकों में स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोहियों से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज ही के दिन यानी 16 अगस्त 2008 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात 125 भारतीय सीमा सुरक्षा बल के मतलब बीएसएफ के पुलिस अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसे CAPF भी कहा जाता है और ये भारत की रक्षा की पहली पंक्ति में गिना जाता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। वैसे जब भी भारतीय सेना की बात होती है ना तो हमारे जहन में सबसे पहले बॉर्डर फिल्म के सनी देओल का चेहरा सामने आ जाता है ना। वैसे तो कई हिंदी फिल्में बनी हैं जिसमें हमारी भारतीय सेना की बहादुरी को दर्शाया गया है, जैसे 1964 की हकीकत, 1972 की ललकार, 1973 की हिंदुस्तान की कसम, 2003 की LOC करगिल, 2004 की लक्ष्य, 2018 की पलटन, 2019 की उरी और 2021 की शेरशाह। सैल्यूट है सभी जवानों को जो बॉर्डर में दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर बोले तो संतोष राव। और भी हमारे पास ढेर सारी जानकारियां हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बनाड़ी का। सैफ अली खान और रागेश्वरी पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत, जब भी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून आ जाता है। वैसे सैफ अली खान 1993 में जब परंपरा फिल्म से बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री मारी थी तो ऐसा लगने लगा था कि ये सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को जो देख रहे हैं फिल्में, उनके दिल में जरा जरा यानी हौले हौले जरूर अपना असर दिखाएंगे। और ऐसा ही हुआ जब 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म आई तो अक्षय कुमार के साथ इनकी भी किस्मत चमक गई। और 1993 से लेकर 2026 तक सैफ अली खान ने अपने करियर में 15 से ज्यादा सफल फिल्में दी हैं, हिट सुपर हिट या हम यूं कहें ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे ये दिल लगी अक्षय कुमार और काजोल के साथ आई थी और ये सैफ की करियर की पहली हिट फिल्म मानी जाती है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसा मैं जिक्र कर चुका हूं 1994 में अक्षय कुमार के साथ एक्शन कॉमेडी की जबरदस्त हिट फिल्म रही है। 2001 में दिल चाहता है फिल्म आई थी और इस फिल्म ने सैफ अली खान का करियर पूरी तरह बदल कर रख दिया था। 2004 में हम तुम फिल्म आई रानी मुखर्जी के साथ है और इस सोलो हिट फिल्म के लिए सैफ को नेशनल अवार्ड मिला था। सलाम नमस्ते 2005 में प्रीति जिंटा के साथ ऐसी फिल्म आई थी ये जो विदेशों में बम्पर कमाई करने वाली हिट फिल्मों में मानी जाती है। 2008 में रेस फिल्म थ्रिलर फिल्म थी जिसने सैफ को एक स्टाइलिश एक्शन स्टार के रूप में स्थापित भी किया था। लव आजकल 2009 में आई दीपिका पादुकोण के साथ सैफ के होम प्रोडक्शन की ये सबसे बड़ी सोलो हिट फिल्म है। जी हाँ, प्रोड्यूसर भी बन चुके थे तब ये। कॉकटेल 2012 में दीपिका के साथ फिर से आई, उसमें डायना पेंटी के साथ एक बड़ी कॉमर्शियल हिट फिल्म मानी गई थी। और इनके अलावा सैफ की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की, जैसे तानाजी दान संग वॉरियर 2020 में आई थी अजय देवगन के साथ और इसमें सैफ अली ने विलेन मतलब उदय भान का यादगार रोल निभाया था, जैसे कि ओमकारा में आपको याद होगा त्यागी का है ना वो किरदार निभाया था। देवरा फिल्म आई थी जिसका पार्ट वन है 2024 में और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म मानी गई थी। ये जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म थी जिसमें सैफ मुख्य विलेन भैरा बने हुए थे। हम साथ साथ हैं 1999 में आई थी सलमान खान के साथ और ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और रेस 2 2013 में आई थी, सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी ये। और 2003 में कल हो ना हो फिल्म शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ आई थी और ये भी ब्लॉकबस्टर स्तर की बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। 16 अगस्त 1970 में जन्मे बॉलीवुड के वर्सेटाइल और स्टाइलिश अभिनेताओं में से एक सैफ अली खान पिछले 3 दशकों में बार बार नए किरदारों में ढालकर इन्होंने ये साबित किया है कि चुलबुले चॉकलेट बॉय से लेकर आज के दौर के खूंखार विलेन सब में उनका कोई सानी नहीं है। सैफ अली खान ने 2004 की फिल्म हम तुम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीता तो वहीं सैफ अली खान ने अलग अलग कैटेगरी में 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 2010 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित सैफ अली खान को आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी एफएम रेनबो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी ये फिल्म लव आजकल का एक प्यारा सा गीत है, हम सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों आज एक और बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं और वो हैं मनीषा कोइराला। 16 अगस्त 1970 में नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में 1991 में फिल्म सौदागर से कदम रखा था, याद है इलू इलू इलू इलू, और फिर बॉम्बे, 1942 अ लव स्टोरी, खामोशी, दिल से और लज्जा जैसी सुपरहिट फिल्मों से बड़ी पहचान इन्हें मिली। गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों को पर्दे पर बखूबी निभाने वाली मनीषा कोइराला ने अपने जीवन में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। तो वहीं संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में मलिका जान के दमदार किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज का फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों मनीषा कोइराला के आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी एफएम रेनबो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्हीं की सुपरहिट फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आप बने रहिए और सुनते रहिए क्योंकि बहुत और भी ढेर सारी जानकारियां हैं हमारे पिटारे में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को

0: पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों अभी ये गीत सुना आपने, पा लिया है प्यार, और ये गीत था फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से। वैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो दिल और दिमाग पर सीधा अपना असर छोड़ देते हैं। वैसे गीतकार हो या कवि हो, उनकी लिखी कुछ पंक्तियां जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का काम जरूर करती हैं। बहुत ढेर सारे गीतकार ऐसे आए हैं, कवि आए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे ना, वो उन कवियों में से हैं, या कहना चाहिए कि ऐसी शख्सियत हैं जिनके जो सबके दिल अजीज बन चुके हैं। जी हाँ, एक पंक्ति है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोस्तों ये पंक्तियां इतनी इंस्पायर करने वाली हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अंजाम चाहे फेवर में हो या ना हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। आहा, जबरदस्त लाइन है। वैसे ये पंक्तियां लिखी थी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री, महान वक्ता, कवि और एक प्रखर राजनेता रहे थे। आपने 3 बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए, दूसरी बार 1998 से 1999 और फिर तीसरी बार 1999 से 2004 तक। आप अपने संसदीय जीवन में 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1977 में मुरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण देकर इन्होंने इतिहास रचा। 1998 में इनके ही कार्यकाल में ही भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया था और देश परमाणु संपन्न देश बना था। तो वहीं 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया और देश में सुशासन और सड़क विकास योजना को बढ़ावा दिया। देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और आज ही के दिन यानी 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, और उनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल, और ये समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है उनको शत शत नमन। और आइए आपको वो गीत सुनाते हैं जो हमेशा माननीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी की पहली पसंद रहा है, हम सबके दिल अजीज परम पूजने भारत रत्न श्री अटल वाजपेयी जी का ये फेवरेट गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम चल रहा है। और आज दोस्तों पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान की भी। 1981 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट में अपनी लाजवाब बैटिंग के दम पर कई बार भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों आज पुण्यतिथि है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह जी की भी। आज आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इनकी पुण्यतिथि पर करता है इनको शत शत नमन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ दोस्तों, रोजाना 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनते हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं लेकर हाजिर हूंगा 9 बजे आपके साथ, क्योंकि गीतांजलि अब इस कार्यक्रम को, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR को आगे बढ़ाएंगी अगले घंटे, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है 1 घंटे के लिए विराम। नमस्कार।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाईक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से

तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड के में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलेगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि और सुबह की इस खूबसूरत शुरुआत में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों कहते हैं ना, सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं, सुबह तो वो मौका है जब हम खुद से कहते हैं चलो आज कुछ अच्छा करते हैं, आज कुछ अच्छा सोचते हैं। तो अगर रात की कोई चिंता अभी भी आपके साथ चली आई है तो उसे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का दिन आपकी नई कहानी का, नई पहचान का पहला पन्ना हो सकता है। तो मुस्कुराइए, आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

बिल्कुल दोस्तों, संगीत जो है वो हमारी धरती के कण कण में है, हर जगह है, प्रकृति के हर रूप में संगीत बसा है। और अब प्रकृति की ही उसी एक नेमत की बात कर लेते हैं, ज़रा बात कर लें आज के मौसम की। दिल्ली एनसीआर की सुबह कैसी है? हवा में ठंडक है या उमस का एहसास है? और क्या आज आसमान बादलों के साथ कोई खूबसूरत सरप्राइज देने वाला है? चाहे मौसम जैसा भी हो दोस्तों, मूड अपना जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत दिन सिर्फ मौसम से नहीं हमारी सोच से भी बनता है। तो आज गर्मी तो होगी, परंतु मौसम कब अपना रंग बदल लेता है आजकल कहाँ पता लगता है हमें। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ रखना है या नहीं, इसका फैसला मौसम पर छोड़ देना, लेकिन खुद पर भी रखना, थोड़ा सा अपने पास अपनी जो केयर का सामान है वो रख लेना चाहिए। और मुस्कान ज़रूर अपने साथ रखना, क्योंकि ये तो हम अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं। फिलहाल आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और फिलहाल एक बहुत ही

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं? इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट।

0: यानी रोज एक अंडा,
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। दोस्तों, तिरंगा हाथ में हो, आंखों में गर्व हो, होठों पर वंदे मातरम हो और दिल में बस एक ही आवाज, मेरा भारत मेरी शान। कल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर हम में देशभक्ति का जज्बा हमेशा बना रहा, परंतु देशभक्ति का जज्बा दिलों से कहाँ कम होता है। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान में अभी भी बस 2 दिन शेष हैं, तो अगर अभी तक आपने तिरंगे के साथ अपनी वो खास सेल्फी नहीं ली है तो देर किस बात की। क्यों ना इस बार तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर ना हो बल्कि देश के नाम एक खूबसूरत सा एहसास हो हमारी तरफ से। बस जाइए harghartiranga.com पर, अपनी डिटेल्स भरिए, तिरंगे और वंदे मातरम के लिरिक्स के साथ सेल्फी क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए और अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। 2 दिन अभी बाकी हैं, एक तस्वीर बनाइए जो आज की सेल्फी नहीं कल की याद बन जाए। मैं हूं गीतांजलि और इस बार तस्वीर अपनी हो, तिरंगा अपना हो, जज्बा अपना हो, पूरे हिंदुस्तान जो है वो अपना हो। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा।

0: बेहद ही खूबसूरत गीत, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फूलों की खुशबू, हरियाली की खूबसूरती और प्रकृति के रंगों से सजा एक ऐसा उद्यान जहां पहुंचकर मन कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमृत उद्यान की। 16 अगस्त यानी आज से एक बार फिर अमृत उद्यान आम दर्शकों के लिए अपने खूबसूरत द्वार खोलने जा रहा है। इस खास अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कुमार समरेश जी, PRO म्यूजियम, प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट राष्ट्रपति भवन, जो हमें अमृत उद्यान की तैयारियों, इसकी खासियत और यहां आने वाले दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण के बारे में बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि 16 अगस्त से यानी आज से अमृत उद्यान एक बार फिर दर्शकों के लिए खुल रहा है, तो इस बार यहाँ क्या खास देखने को मिलेगा?
1: इस बार का समर एनुअल्स जो फ्लावर्स हैं वो हम आज से देख सकते हैं, और अमृत उद्यान समर एनुअल्स हम जिसको इसका नाम दिया है हमने, और ये एक महीने तक चलेगा 15 सितंबर तक। और टाइमिंग्स इस बार की रहेंगी सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और लास्ट एंट्री होगी 5 बजे। एक और चीज में जो बदलाव हमने लास्ट एडिशन में भी किया था कि अब ऑन स्पॉट बुकिंग अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 24 घंटा पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने स्लॉट चूज करके अमृत उद्यान आना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप सेंट्रल सेक्रेटरीट तक आ सकते हैं जहां से फ्री शटल सर्विस चल रही है, गेट नंबर 35 अमृत उद्यान की, वहां पर आप आ सकते हैं। और खास इस बार ये है कि हम मॉनसून फ्लावर्स जो हमारे देश में है होती हैं इतनी सारी, और राष्ट्रपति भवन में आपको ढेरों प्रकार के ये फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे, तो और साथ ही साथ जो गार्डन्स हैं और हरियाली है इस बार वो देखने का काफी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो आप सब परिवार के साथ जरूर आए, स्पेशली छुट्टी वाले दिन, लेकिन ध्यान रखें कि बुकिंग आप एक दिन पहले आपको कराना पड़ेगा।
0: सर, बुकिंग कराने के लिए कोई पोर्टल या कोई वेबसाइट जहां से?
1: राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट जो है visit.rashtrapatibhavan.gov.in, इस पर आप जाए और अपने स्लॉट चूज करें। 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये ओपन होगा, 5 बजे लास्ट एंट्री है, और आप एक साथ अपने और अपने परिवार का भी आप कर सकते हैं, और प्रवेश निशुल्क है, कोई फीस इस पे चार्ज नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर आप अमृत उद्यान आ रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय है वो भी आप देख सकते हैं, जो पेड होता है 50 रुपीज पर हेड।
0: बिल्कुल सर, आप लगातार इस परिसर और इसकी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, आपके अनुभव में अमृत उद्यान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो पहली बार आने वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है?
1: देखिए, सबसे तो बड़ी जो चीज है वो है कि हमारा राष्ट्रपति भवन आप इतने करीब से उसे देख सकते हैं, और उसके बैकड्रॉप पे जब फूल, हरियाली, गार्डन्स, फिर आप अपने साथ, क्योंकि मोबाइल्स अलाउड है, आप फ्लावर्स के साथ, आप बैकड्रॉप ऑफ राष्ट्रपति भवन, इन सब के साथ जब आप पिक्चर्स ले सकते हैं, पोस्ट कीजिए, दूसरे को भी मोटिवेट करें कि आप भी आइए, और हमारी एक इतनी बड़ी एक हेरिटेज है, हमारा इतना बड़ा एक अपना हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके साथ आप जुड़े। और क्योंकि ये साल में एक महीने गर्मी में और 2 महीने विंटर्स में ओपन रहता है, तो इससे अच्छा आपको मौका नहीं होगा राष्ट्रपति भवन कितने करीब से देखने का।
0: जी बिल्कुल, जैसे आज 16 अगस्त है, अगर आज कुछ लोग नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका, कि क्या कोई ऐसी कोई विशेष आकर्षण है आज जो उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, या सब कुछ?
1: नहीं, आज से शुरुआत है और पहला दिन हर समय, ऑलरेडी हमारे पास लगभग 10,000 से ऊपर की बुकिंग्स आई हुई हैं आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप आज किसी कारणवश नहीं आ सकते तो सोमवार अवकाश का दिन होगा, उस दिन को हम छोड़कर फिर मंगलवार

0: लेकर अगले संडे तक आप किसी भी दिन चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 अगस्त क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो उस दिन जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्कूल में बच्चे जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं या कोचेज हैं हमारे या खिलाड़ी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुके हैं या खेल रहे हैं, उनके लिए रिजर्व्ड ये एक स्पेशल डे होगा टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्समैनशिप। और साथ ही साथ 5 सितंबर को टीचर्स डे है, तो उस दिन हम टीचर्स के लिए भी एक्सक्लूसिव एंट्री रखेंगे राष्ट्रपति भवन में।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, आपकी जानकारी से मुझे तो बहुत प्रेरणा मिल रही है, मैं तो ज़रूर आऊँगी, हर बार आती हूँ और इस बार भी ज़रूर आने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद सर। कोई संदेश, कोई छोटा सा संदेश जो आप देना चाहें इस बार अमृत उद्यान ज़रूर आने के लिए लोगों को?
0: जैसे मैंने बताया कि अगेन ये हमारी राष्ट्रपति भवन हमारी पहचान है और ये मौका मिलता है लोगों को, तो गेट्स आर ओपन, आप अपना प्लानिंग करें और आप आए। डिफरेंट फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं, पिंक रोजेस हैं, जो आपके फेवरेट फ्लावर्स हैं, साथ साथ जो मॉनसून फ्लावर्स हैं, समर फ्लावर्स हैं, बहुत सारी बच्चों के लिए भी एक्टिविटी जोन्स हैं, तो इन सब चीज का आप आनंद लें और आप जरूर आए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने न सिर्फ अमृत उद्यान की खूबसूरती से हमारा परिचय कराया बल्कि उसके पीछे छिपी जो मेहनत और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है उसे भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, 16 अगस्त से अमृत उद्यान आपका इंतजार कर रहा है। आइए, फूलों को सिर्फ देखिए नहीं, उनकी खुशबू में प्रकृति को महसूस कीजिए, जुड़ जाइए उसके साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात।

0: थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर गीतांजलि के साथ। और दोस्तों, कभी कभी हमारी अलमारी में रखा कोई कपड़ा इसलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो पुराना हो जाता है, लेकिन किसी और के लिए वही कपड़ा एक नई उम्मीद बन सकता है। दिल्ली में शुरू हुई है खूबसूरत पहल अर्पण वस्त्र दान केंद्र। दिल्ली सरकार और DMRC की यह पहल हमें याद दिलाती है कि पुराने और अनुपयोगी कपड़ों को कूड़े में फेंकना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आपके घर में रखे वो कपड़े जो अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें अर्पण कीजिए ताकि वो किसी के काम आ सकें। शालीमार बाग, पंजाबी बाग, मयूर विहार, फेज 1, शाहदरा और रोहिणी वेस्ट, इन ऐसे ही कई मेट्रो स्टेशन पर ये अर्पण वस्त्र दान केंद्र जो हैं वो शुरू किए गए हैं। तो अगली बार अलमारी साफ करते हुए सिर्फ ये मत सोचिए कि ये मेरे काम का नहीं, एक बार ये भी सोचिए शायद किसी और के काम का होगा वो। क्योंकि कपड़े पुराने हो सकते हैं लेकिन किसी की मदद करने का जज्बा दोस्तों कभी भी पुराना नहीं होता, है ना। तो आइए चीज़ों को फेंके नहीं, उन्हें अर्पण करें। एक छोटा सा दान किसी के लिए बड़ी मुस्कान बन सकता है।

बेहद ही खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़ में हम अभी सुन रहे थे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम चल रहा है और दोस्तों आपको भी पहाड़ों की वो ठंडी हवा, लोकगीतों की मिठास और पहाड़ी स्वाद की खुशबू याद आती है क्या? अगर आती है तो तैयार हो जाइए क्योंकि उत्तराखंड लोक महोत्सव 2026 दिल्ली में लेकर आ रहा है उत्तराखंड की मिट्टी, संस्कृति और परंपराओं का रंगीन संसार। जी हाँ, 25 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक रोहिणी सेक्टर 16 के रामलीला मैदान में सजेगा ये 21 दिनों का भव्य महोत्सव। यहाँ आपको मिलेंगे पहाड़ी व्यंजन और हस्तशिल्प, फैशन और वहाँ की संस्कृति की झलक, यानी पहाड़ों की खूबसूरती एक ही जगह दिल्ली में। और अगर आप उत्तराखंड से हैं या उत्तराखंड की संस्कृति से प्यार करते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ एक मेला नहीं, अपनी जड़ों से मिलने का एक खूबसूरत बहाना है। और अगर आप फूड, हैंडीक्राफ्ट, फैशन, ट्रेड या किसी भी तरह के स्टॉल वहाँ लगाना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक शानदार मौका। दोस्तों स्टॉल बुकिंग शुरू हो चुकी है और स्टॉल सीमित हैं, तो देर बिल्कुल मत कीजिए, आज ही अपना स्टॉल बुक कीजिए और हज़ारों लोगों तक अपने उत्पाद, अपने हुनर, अपनी संस्कृति को पहुंचाइए। तो चाहे आप महोत्सव में घूमने आ रहे हों या अपना हुनर और कारोबार लोगों तक पहुंचाना चाहते हों, उत्तराखंड लोक महोत्सव 2026 आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों तारीख याद रखिए, 25 अगस्त से 14 सितंबर रामलीला मैदान रोहिणी। मैं हूं आपकी दोस्त गीतांजलि। तो आइए पहाड़ों को दिल्ली में महसूस कीजिए, लोक संस्कृति के रंगों में रंग जाइए और उत्तराखंड लोक महोत्सव का आप भी हिस्सा बन जाइए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप और मैं हूं गीतांजलि। फिलहाल श्रोताओं, एक नजर डालते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। सुबह 9 बजे समाचारों के बाद आपके लिए दिल के तराने, गाने नए पुराने यानी नए दौर के खूबसूरत बॉलीवुड गानों के साथ पुराने सदाबहार नगमों की सुरमई संगम। आपके साथ रहेंगे संतोष राव। 10 बजे अंग्रेजी में समाचारों के बाद मैशलेस म्यूजिक आर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 11 बजे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 मैदान से पोडियम तक, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और खेल जगत से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे हिंदी समाचारों के बाद आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। दोपहर 2 बजे बच्चों का खास कार्यक्रम आशियाना, छोटे उस्ताद के साथ बच्चों की दुनिया, उनकी प्रतिभा, संगीत से जुड़ा मनोरंजक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। दोपहर 3 बजे रेडियो डॉक्टर, आज का विषय रहेगा कॉमन फूड प्रॉब्लम्स, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार, श्रोताओं से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। शाम 4 बजे समाचारों के बाद शुरू होगा अल्फा जेन रेनबो जीनियस का लाइव डायल इन क्विज कार्यक्रम। इसी दौरान लम्हे का प्रायोजित कार्यक्रम भी प्रसारित होगा, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। शाम 5 बजे समाचारों के बाद सिटी लाइट्स कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। 6 बजे का समय रहेगा मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम का, जिसमें आपकी राय आपके संदेश कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 8 बजे हिंदी समाचारों के बाद संगीत की मस्ती लिए आएगा म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। 9 बजे आपकी याद आती रही कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और 11 बजे हिंदी समाचारों के बाद दिन का खूबसूरत समापन होगा रंगे महफिल के साथ, गजलों की मीठी और सुकून भरी दुनिया में ले जाता हुआ एक खास कार्यक्रम। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और दोस्तों, सुबह की इस खूबसूरत मुलाकात का अब वक्त है विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले बस एक छोटी सी बात कि हर दिन हमें कुछ नया नहीं देता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया करने का मौका ज़रूर देता है। तो आज किसी अपने को बिना वजह फ़ोन कीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। सुबह चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो दोस्तों, इसे खूबसूरत बनाना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। इसी उम्मीद, इसी मुस्कान और ढेर सारी अच्छी ऊर्जा के साथ मिलते हैं फिर एक नई सुबह में, नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ। अब तक के लिए गीतांजलि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की है। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर दौरे पर रहेंगे। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रख रखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हरा दिया है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा है। और अंत में पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलेगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुनते हैं रोजाना 9 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव, और अभी आप सुन रहे थे दिल के तराने गाने नए पुराने। बहरहाल ये प्रोग्राम 9 से 10 होता है, लेकिन अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खास प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, तो आप जरूर सुनिएगा। और उसके बाद 10 बजे से आपके साथ जुड़ जाएंगी तलेहा खान, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।
2: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है, तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता के जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की

0: जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए, तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू आर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं, दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड अगर वो आती हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो

ये कहती हूँ कि हमारी जो अब अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं, साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं। ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फुलैप करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिसे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है,
आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है।

0: उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपनी काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है। पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी लिख रहे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanjay Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hain FM Rainbow.

0: का अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on 102.6 megahertz. Dear listeners, it's time now for our first Hindi classic. From the 1961 film Hum Dono, the song brings together Sahir Rudhyanvi's lyrics, Jaydev's music, and the elegant voice of Mohammad Rafi. It has an upbeat rhythm, but also a quietly philosophical message about taking life as it comes. Here is Main Zindagi Ka Saath Nibhata Chala Gaya.

0: In the melodious voice of S.D. Burman, that was Sun Mere Bandure from the 1959 film Sujata. And it's time for us to take a short break.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. It's time now to keep the sunshine going, and we have the Afro pop band Aussie Bisa, and here they are with their 1976 track called Sunshine Day.

0: taken in from the album called Hysteria. That was Love and Affection by Def Leppard. And it's time for us to take a short break.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: Welcome back after the break. You're tuned into the Matchless Music Hour on 102.6 megahertz. And it's time now for our third and final Hindi classic. And this is from the 1970s. From the 1974 film Imtihan, the lyrics are by Majru Sultanpuri, the music by Lakshmikant Pyarelal, and the voice is that of Kishore Kumar. Here is Ruk Jana Nahin.

0: वाणी आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
6: धन्यवाद।
3: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
5: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
3: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो आएगा ही आएगा? 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
5: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती है, जिसको आपने भी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है, और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को, वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
0: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
3: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का

0: डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है. अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं.
1: जी तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे, लेकिन पोडियम तक पहुंचने बहुत मुश्किल होता था. इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी ना मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी. बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे. अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ. एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे. वजह यह थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था. खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है. तो यह तय किया गया कि हर जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे. खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा. कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का. हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे. तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे. तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला. तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे. दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए. तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया. भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था, उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था. इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे, भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी. तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया. भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया. तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ. अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए. तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ. यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, विंटर गेम. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले, जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम. नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी. और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में. तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की, वो भारत सरकार ने दिया. 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है. अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया. टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है. अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए. हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ. सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की. कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है? तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ. तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की, उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा. उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा. अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है. और ऑन टॉप ऑफ दैट, खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है. पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी. नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है. हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे. स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी, और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को. साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी

0: जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं। और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
1: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ। अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल ईरा से अभी अरिजीत सिंह के ईरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है, खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे, लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है। टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी?
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ, इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो तो वो लाजवाब है। मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है। उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया। तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंधु में अभी, मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है
0: जी। और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है, लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है। अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटी स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है, या तो फिर आप एशियन गेम जीत के दिखा दें या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे। तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलता रहना पड़ेगा उन्हें, और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी।
0: बैडमिंटन से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है?
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है। बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18, हालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजीशन में है। इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती है, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती है और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहाँ पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को। तो इनका फोकस देख कर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए।
1: मैं आपको बता दूं
0: जी,
1: उन्नति हुडा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
2: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
1: लक्ष्य सेन खेल ही रहा है,
2: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन स्टिल इन द फ्रे एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एशियन गेम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहाँ।
0: बिल्कुल, अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
1: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती।
0: वाह क्या बात है।
3: फोटो

और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान

0: आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है और देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
0: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला है और फिर सबको दे भी दिया है।
0: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसा ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, और हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
0: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं?
1: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना

0: है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है, तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है, फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है। इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था, KISC, OKIC, वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का, और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूं और देखा हूं, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधर।

0: आ रहा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा, और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते हैं, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है, और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम, और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं, और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाए, और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
1: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए?
2: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी। 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
0: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होके खेलने लगे हैं धर्मेंद्र, और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी,
0: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा ये मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे, तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मयंक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए, जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था, मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया, तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल उसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी,
2: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के
1: जी।
2: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक, यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है
1: जी। और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है, वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
0: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरियाज से हैं, बैकवर्ड एरियाज से हैं, उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया

0: के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था, उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं, वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैं जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
2: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी ही हैं। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स के सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है। और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
0: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी, 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
1: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
0: नहीं, गाता तो नहीं हूँ और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था भाग मिल्खा।

0: बाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे।
1: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
0: भाग मिल का भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर ट्यून्ड इनटू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज। The theme for today is your fond memories, particularly on Sunday. And sometimes the most amazing memories come from the simplest moments. A quiet chat with a parent, a walk with a friend, or simply relaxing at home. Those are often the moments that stay with us a little more deeply. That thought takes us to Binocular, which is an American pop rock project, and the song is called Deep.

0: That was Major Lazer and TJ Snake with the track called Lean On. And it's time now for us to take a short break.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: रोहन बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
11: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
10: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
12: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
13: इग्नोर नहीं, याद करो।
14: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: Welcome back after the break. You're tuned in to Play It Cool on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Before the break, we played the track Major Lazer and DJ Snake's Lean On. This particular weekend was filled with festivities, from our 80th Independence Day to Tej to the Parsi New Year. Today marks the first day of Onam, also called as Atham, which is the festival, 10-day festival in Kerala. From the entire family of Akashwani Rainbow, we wish you all a happy Onam. With so much to celebrate, the title of our next song almost chooses itself. Led Zeppelin is here with the track called Celebration.

0: That was Gigi Perez with the song called The Sailor Song. Perhaps this reminded you of a favorite journey or someone you enjoyed traveling with. Well, in case you have any fond memories to share with us, the number is 9868107070. We are waiting for your messages to come in, and right now we have a message from Dolly, and she sends in hi. Thank you so much, Dolly, for writing in. On that note, it's time for us to take a short break.
1: Namaskar, main Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta bol rahi hu. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: Welcome back after the break. You're tuned into Play It Cool on 102.6 megahertz FM Rainbow. Before the break, we were talking about taking a break and going to some journeys, some travel journeys. Now, every outing that we had, one moment when the plan finally received the green light was when it brought a lot of excitement. Once somebody said, "Let's go," the day suddenly felt as it's full of possibilities. That phrase brings us to the next song, which is by John Legend, and the track is called Green Light. Give me-

0: का चाय, गजब का स्वाद।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: Welcome back after the break. You're tuned into Played Cool on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. I am your presenter, Taliha Khan. Some of the memories are tied with the first crush, a film we watched together, or a song we played again when nobody was looking. There is a playful note which is written by English singer and songwriter Ollie Alexander, known for his work with Years and Years. Here is the track called Cupid.

0: you.
1: That was Ollie Alexander with the track called Somebody Like You, and we are just coming back after a short break.
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: Welcome back after the break. You are tuned into Play It Cool on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Now, across the hour, one song had led to another memory, from family meals to long drives to celebrations. Thank you so much for spending your afternoon with us. The music continues here on Akashwani Rainbow. Do join us for Live Wire at 7 p.m. and Sunday Request at 10 p.m. And right now, Komal is here with the next show called Mera Wala Gana. This is your host, Taliha Khan, signing off. Have a wonderful Sunday ahead. Namaskar.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। मंगलवार 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी। कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। विदेशी

संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम आज से लागू हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर के दौरे पर रहेंगे। सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतरिम उत्तर जारी कर दिए हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन परिसर का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट सुविधा को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ओडिशा की बेतरणी नदी में बाढ़ से उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रहा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे अगले कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग के लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी बिल्कुल, आपकी वाणी आकाशवाणी। और आकाशवाणी पर शुरू हो गया प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, और आज एक छोटा सा सवाल आप सभी से, अगर आज आपको सिर्फ एक गीत सिर्फ एक इंसान को डेडिकेट करना हो तो वो गीत कौन सा होगा और वो इंसान कौन होगा? आपके माँ पापा दोस्त भाई बहन कोई खास या फिर आप खुद? हमें व्हाट्सएप पर भेजिए नाम, गीत और किसके लिए है आपकी डेडिकेशन। कौन जाने अगली धुन आपके नाम की ही हो। मैं हूँ आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और प्रोग्राम शुरू करते हैं गीत जिसमें हम आप सभी की पसंद के बजाते हैं मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, इस प्रोग्राम का रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार, और आप सभी के इंतज़ार में जो आप मैसेजेस हमें भेजते हैं वो सभी मैसेजेस हम सभी को मिल चुके होते हैं, और बस अब आप सभी के मैसेजेस सुनने का जो पढ़ने का जो समय आ गया है और सभी के फेवरेट सॉन्ग्स सुनने का समय आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास मैसेज भेजा है वो भेजा है मनमोहन सिंह ने, इनके साथ है सोनम, काव्या और दक्ष। ये हमें मैसेज भेज रहे हैं यूपी के रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से। तो चलिए पहला सॉन्ग आप सभी की पसंद का।

नाम भी लिखिए और उस गाने का नाम भी लिखिए जो गाना आप सुनना चाहते हैं, और उसका नाम भी लिखिए जिसे आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आप सभी के मैसेजेस का सिलसिला, पढ़ना शुरू करते हैं फिर से। तो अब हमारे पास जो अगला मैसेज है वो है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और ये सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत जो कि हमने चला दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने कुछ और श्रोताओं का नाम भी लेना चाहेंगे, जैसे मलकपुर से अशोक कुमार आहूजा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉन्ग सुनने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जैसे अजय अहिरवार हमें मध्य प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूं, और वो सॉन्ग कोई भी हो सकता है जो आप अपनी पसंद से प्ले करें। तो मुझे लगता है कि जो होली चौक दिल्ली उत्तम नगर से जो हम सॉन्ग प्ले करने वाले हैं अपने श्रोता की पसंद का, वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी डेडिकेट कर दिया जाए तो कुछ सही रहेगा। तो चलिए सुनते हैं ये वाला सॉन्ग।

तो हमारे पास एक और मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि कोमल जी, मेरी पत्नी रेणु दीप होगी जिनको ये मैं गाना समर्पित करना चाहता हूँ। तो अमरदीप का ये मैसेज आया है हमारे पास कुप्पमपट्टी जलकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से। लेकिन आपने जो गाना सुनने के लिए कहा है हमसे, हमें माफ़ कीजिएगा, वो गाना हम आपके लिए प्ले नहीं कर सकते। लेकिन ये जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, जो आपने अभी पहले सुना, ये गाना अगर हम उनको समर्पित कर दें तो ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है।

और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070 भी आप सभी का हो गया, जिस पर आप सभी भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, किसके लिए सुनना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं, अगर बता दें तो मज़ा आ जाए। जी हाँ, गीत तो आप सभी के ऐसे होते हैं कि सुनने में बड़ा मज़ा आता है, फरमाइशें जब आप करते हैं और जब किसी को डेडिकेट करते हैं तो हमें भी लगता है कि वाकई यार हमारे ज़रिए आपके दिल की बात तक, किसी आपके दिल तक पहुंचने वाले बंदे तक पहुंच रही है, क्योंकि हम हैं ही दिल से दिल तक। तो चलिए अगला मैसेज लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने, जनकपुरी नई दिल्ली से, और वो सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत जो कि उन्होंने चुना है फिल्म जब वी मेट से। तो हम आपको ये गीत ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम एक दो लोगों का और भी नाम लेना चाहते हैं। हमारे पास मैसेज भेजा

0: मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
0: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
7: पता का चाय गजब का स्वाद।
8: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
9: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
10: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
12: और आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। 1 बजे से 2 बजे तक हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी के फेवरेट सॉन्ग्स, आप सभी के रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो अगला गीत जो हमने सुना है फिल्म 3 इडियट से, इसकी फरमाइश हमें भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वो जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा नाम बस आप शामिल कर लीजिए। और जैसे कि आनंद विहार से मुख्तार आलम ने हमें मैसेज भेजा है, और पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से हमें भेजा है मैसेज, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांग गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, और आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो। और आप सभी के लिए ये वाला सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने भी हमें मैसेज भेजा है, तो आप सभी के लिए ये वाला सॉन्ग।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए।

8681070700 है वो नंबर जिस पर आप हमें मैसेज करके अपनी पसंद के गीत के लिए फरमाइश कर सकते हैं और डेडिकेट कर सकते हैं। वो गीत आप किसे सुनाना चाहते हैं, किसके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई याद अगर उस बात से जुड़ी हुई है। तो चलिए अगला गीत हम जो हम आप सभी को सुनाने वाले हैं उसके लिए हम बता देते हैं कि फरमाइश किसकी आई है। ये हमें भेज रहे हैं कि प्रगति राज, मेरा नाम प्रगति राज है और मुझे कोई भी आप गीत सुना दीजिए। ये कह रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे पास मैसेज भेजा है, ये किसका नाम है, किशन विंजानी, नीलम, स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ हमारे साथ हमसे जुड़े हुए हैं, ये इनका नाम इन्होंने नहीं लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना नाम लिख करके जब हमें भेजेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पता चलता है ना कि कौन कौन है जो हमें सुन रहा है। तो चलिए अगला मैसेज जो हम ले रहे हैं वो है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। और इन सभी की पसंद पर हम ये गीत जो अगला प्ले कर रहे हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने फरमाइश की है उन्हें तो पसंद आएगा ही, और जिन्होंने नहीं की है, जो सिर्फ अपना नाम सुनना चाहते हैं, नाम शामिल करना चाहते हैं कार्यक्रम में, उन्हें भी ये गीत पसंद आएगा। साथ ही साथ हमें मैसेज भेजा है पूर्णिमा बालू ने जोधपुर राजस्थान से, तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?

0: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओए रोहन, ओए रोहन, बहुत दिनों से, ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
0: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये सॉन्ग है सुनीता जी की तरफ से, जिन्होंने हमें मैसेज किया है असम से, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका डेडिकेटेड सॉन्ग जो है वो सुनने के लिए अब मिल रहा है आकाशवाणी एफएम रेनबो। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज भेजा है अर्जुन पाल और आए जालुम उत्तर प्रदेश से, आप मैसेज हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। तो आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। या अब्बासी परिवार ने जो हमें मैसेज भेजा है अपरकोट बुलंद शहर से। अच्छा, इनके साथ अभी और भी हैं, इनके साथ है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने कोई नाम छोड़ा नहीं होगा, और अगर छोड़े होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और तो चलिए इंजॉय कीजिए अपनी पसंद का ये सॉन्ग।

ये फिल्म था सॉन्ग, ये सॉन्ग जो आपने सुना ये था फिल्म खामोशी से, और इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और आज मनीषा कोइराला के जन्मदिन पर जो है हमारे एक श्रोता हैं विजेंद्र घाटोल को अपना ये जो सॉन्ग है ये डेडिकेट करना चाहते हैं। इनका नाम है प्रमोद चिंचोलकर, उमरी अकोला से ये गाना जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। और श्रोताओं, आप सभी के इतने सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसी का नाम गलती से हमसे चूक जाए तो आप नाराज़ बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि हमारे लिए भी ना बड़े धर्म संकट वाली बात हो जाती है गाने सिलेक्ट करना, आप सभी के नाम पढ़ते रहना। क्योंकि नाम तो हम बेशक बहुत सारे लोगों के ले सकते हैं, लेकिन गाने जो है ना वो चुनिंदा ही चल पाते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता होती है ना। तो चलिए अगला मैसेज लेते हैं। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से हमें मैसेज भेज रही हैं, और इसके अलावा हमारे पास मैसेज भेजा है ये है सत्येंद्र मौर्य, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं दिल्ली से, करण विहार से इनका ये मैसेज हमारे पास आया है। और सुप्रेम नमस्कार, ये हमारे पास मैसेज भेजा है दतरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गीत की। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए अपनी पसंद का ये गीत। और आपकी पसंद का गीत जब हम आपको सुनाएंगे तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये गीत सुनकर। हम आप सभी के मैसेजेस का जो है वो इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है कि जब आप हम आप सभी के पसंद के गीत चलाते हैं तो आप उन्हें सुन करके, जैसे आप हमसे कभी कभी शिकायत करते हैं तो कभी कभी हमसे ये भी बताएं कि आपको वो गीत मैसेजेस प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद होती है आप सभी के मैसेजेस से और आप सभी के इन सभी रिक्वेस्ट से। और हो भी क्यों ना, हम रोज़ाना लेकर आते हैं आप सभी के लिए आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गीत है ना वो हम इसमें शामिल करें। तो चलिए अब आ रहा है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बेवफा से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
10: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग में आज हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है आप सभी की प्ले की, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। और माफ़ करेंगे हमारे वो सभी श्रोता हमें जिनका नाम हम किन्हीं वजह से, चाहे वो समय हो या कोई और हो, हम उनका नाम नहीं ले पाए या उनका सॉन्ग नहीं प्ले कर पाए, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बस ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हम आप सभी की पसंद का सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे। और अगर मेरा वाला सॉन्ग में भी नहीं किया तो आकाशवाणी FM रेनबो एक ऐसा चैनल है जहाँ 24 घंटे सातों दिन हम आप सभी के लिए ऐसे ऐसे सॉन्ग प्ले करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी श्रोता की पसंद बन ही जाते हैं। तो कार्यक्रम तो अब अपनी समाप्ति की ओर है ही, लेकिन हम जो है अपने श्रोताओं को बता दें कि आने वाले जो समय में वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो सुन सकते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। तो अब से थोड़ी ही देर में 2 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना, जिसे लेकर के आएंगे संजीव श्रीवास्तव आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जो कि एक हमारा रेडियो, जिसे आप रेडियो OPD भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत सारी जानकारी मिलती है जो कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं हेल्थ से जुड़े हुए। तो आज जो हमारा विषय रहेगा उसमें है कॉमन फुट प्रॉब्लम्स। इस विषय पर जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोपहर 3 बजे से। और शाम 4 बजे अल्फा जैन प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे प्रोग्राम रेनबो जीनियस। जी हाँ, ये वही प्रोग्राम है जो हर रविवार हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे कुछ सवालों का जवाब बनकर देकर बन जाते हैं रेनबो जीनियस जी। और सिटी की खबरें तो हम आप सभी के लिए लेकर के आते ही रहते हैं समय समय पर, लेकिन जो सिटी लाइट प्रोग्राम है ना, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए दिल्ली NCR की कुछ खास खबरें जो आपकी शाम को, आपकी इवनिंग ड्राइव को बना देती है बहुत ही स्मूथ। और इसके अलावा हम आजकल आप सभी के लिए लेकर आते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम भी हर संडे, फार्म टू की फार्म टू सिटी। और इस प्रोग्राम में हमारे सभी श्रोता, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों या वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, वो अगर बागवानी का शौक़ रखते हैं, गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ होती हैं। और फिर इसके बाद आएगी बारी मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम की, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम किसी एक विषय पर आप सभी से बात करते हैं, और जब हम आपसे बातें करते हैं, हम आप सभी उस पर जो रिप्लाई देते हैं, आप सभी उस पर जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो हमें प्रफुल्लित कर देती है। और इंतज़ार इन्हीं सब बातों का होता है कि आप बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़ें, और जब हम आपके लिए एक सब्जेक्ट लेकर के आएँ, उस पर अपनी राय दें, अपनी बातें करें, अपने कुछ इंसिडेंट्स जो आपके साथ हुए हैं वो आप हमारे साथ साझा करें। तो ये प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6 बजे रेखा चौधरी। और इसके अलावा फिर आप जुड़ेंगे वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम में शिवांगी वार्ष्णेय के साथ। रेखा चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगी म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में। और आज वीकेंड है, तो वीकेंड पर तो मस्ती बनती ही है, डीजे नाइट बनती ही है। तो ये प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी दिन भर की थकन उतर सके और आप थोड़ा सा पार्टी मूड में आ सकें। तो ये प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा शाम 8 बजे से, और रात 9 बजे खो जाइएगा कुछ पुरानी यादों में, कुछ पुराने गीतों में, कुछ पुराने सुकून भरे दिनों में। जी हाँ, प्रोग्राम रहेगा आप सभी के लिए, आपकी याद आती रही। और ये प्रोग्राम आज आप सभी के लिए प्रस्तुत करेंगी सीमा चौधरी। शिवांगी वार्ष्णेय एक बार फिर से आप सभी के साथ होंगी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर के, जिसमें आज होंगी संडे रिक्वेस्ट। और सीमा चौधरी का साथ आप सभी के साथ जुड़ेगा प्रोग्राम रंगे महफिल में, जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं बेहतरीन गज़लें। और ये गज़लें आपके दिन को एक सुकून भरी रात की गोद में लेकर के चली जाएंगी, और आपका दिन यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम हैं राउंड द क्लॉक 24/7 आप सभी के लिए हमेशा मौजूद। तो आप चाहे जहां पर भी हो, दिल्ली NCR में अगर आप हैं तो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इसके अलावा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म भी है आप सभी के लिए, और अगर आप घर पर ही हैं तो आप DTH के माध्यम से भी हम सभी से जुड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, आप सभी से जुड़ने का हम तो कोई भी मौका या कोई भी जरिया छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी खास कार्यक्रम में, कोई भी अगर आप हमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आता है बिंदास बोल, जो कि हर महीने के तीसरे शुक्रवार को हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आप सभी बिंद

दास तरीके से अपनी बातें कर सकते हैं। आप सभी की जो भी शिकायतें हैं, जो भी तारीफें हैं, आप हमें वहाँ पर भेज सकते हैं और हम वो सभी शामिल करेंगे। और हमारा नंबर 9868107070 तो है ही आप सभी के लिए, जिस पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या हमसे बातें कर सकते हैं। जैसे हम आपके लिए लेकर आते हैं मैसेज मसाला मिक्स, उस प्रोग्राम में आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत खास बात जो मुझे आप सभी से कहनी थी, जैसे कि आज है 16 अगस्त, कल ही हमारे पूरे देश ने, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों ने, चाहे वो देश में हैं चाहे वो विदेश में हैं, उन्होंने जो है देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत शान से मनाया, बहुत जश्न मनाया इसका। और पिछले कुछ सालों से हम हर घर तिरंगा अभियान भी मनाते आ रहे हैं। तो जब हर घर तिरंगा अभियान हम मनाते हैं तो हम अपने घरों में अपने आसपास अपने देश का तिरंगा शान से लहराता हुआ देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, फहराते हैं। और कुछ लोग अपने चेहरे पर भी तिरंगा बनाते हैं, कुछ लोग तिरंगा लेकर यात्राएं करते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज होती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और तिरंगा यात्रा करते हैं, अपने घरों पर ऑफिसेस में तिरंगा लहराते हैं, फहराते हैं, बहुत उमंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ना, ये 17 अगस्त यानी कल समाप्त हो जाएगा, और आज़ादी का जो हमारा जश्न था वो 15 अगस्त को समाप्त हुआ। हालांकि ये दोनों ही जश्न ऐसे होने चाहिए हम सभी भारतीयों के हृदय में, जिसके लिए कोई भी समय सीमा बाध्य नहीं होनी चाहिए। चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 17 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, हमारे देश में जो भी हमारे दिल में हमारे देश को लेकर जो भी भावनाएँ हैं वो सदैव एक जैसी रहनी चाहिए। पर ठीक है, कुछ समय की मांग होती है स्वतंत्रता दिवस पर, कुछ ज़्यादा ही हम लोग आज़ादी के जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ना, इसके समाप्त होने के बाद हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो है ये जो तिरंगा हमने बड़ी शान से लहराया है ना अपने घरों में, छतों में, बालकनी में, जो अपने चेहरे पर बनाया था, अपने ऑफिसेस में लगाया था, उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि तिरंगे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप देखते हैं अपने आसपास कि जब तिरंगा अभियान आपने मना लिया, आज़ादी का जश्न आपने मना लिया, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं हमें ये जो हमारे तिरंगे हैं ये हमें ऐसे ही पड़े हुए मिलते हैं, ख़राब हालत में मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ये जो तिरंगे हैं ना, ये कहीं पर भी इस तरीके से बर्बाद हालत में ना हो, इसका पूरा सम्मान कीजिए। अगर जो आपको कोई भी तिरंगा आसपास में कहीं पर भी ऐसे मिलता है, ऐसी हालत में मिलता है, तो आप सभी से बस इतनी ही गुजारिश है कि आप उस तिरंगे को उठाएं सम्मान पूर्वक और उसका उचित निदान करें। अगर आपके पास, आपके घर के आसपास जो तिरंगे आपने पहले लगाए थे वो अगर कट गए हैं, फट गए हैं, मैले हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो आप उन तिरंगों को उतार कर उनका सम्मान पूर्वक जो है वो निदान कीजिए, गुप्त रूप से उन्हें डिस्कार्ड कीजिए और तिरंगे का वो सम्मान बनाए रखिए। कटे फटे गंदे झंडे बिल्कुल भी मत लगाइए, और जो भी तिरंगे को लेकर के जितने भी हमारे नियम हैं उन सभी का पूरी तरह से पालन करें। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है कि हर घर तिरंगा अभियान चला और हम लोगों ने तिरंगे लगा लिए, उसके बाद की जिम्मेदारी जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है निभानी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सभी ये कोशिश करेंगे कि जो ये हर घर तिरंगा अभियान है, इसके ख़त्म होने के बाद भी अपने तिरंगे को उतना ही सम्मान देंगे, उतना ही प्यार देंगे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है वो ऐसे ही शान से, गौरव से लहराता रहेगा, हम सभी की जो भावनाएं हैं हमारे देश को, हमारे देश के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी भावनाएं हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप सभी से जुड़े रहें, कुछ ऐसी बातें आप सभी के साथ साझा करते रहें जो आप सभी के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपके नहीं तो आपके अपनों के काम आती रहे। तो दोस्तों, बस यही हमारी उम्मीद रहती है कि जब भी आप हमसे जुड़ें तो कुछ ऐसी जानकारियाँ हम आप सभी के लिए लेकर के आएँ
जो कि आपको आपके बहुत काम आए। और दोस्तों, ये जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, मॉनसून जो चल रहा है, इसमें भी आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है ना, ये ऑलमोस्ट सभी जगह जो है अपना रंग दिखा रहा है, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, पूरब हो या पश्चिम हो, जहाँ पर भी हो आप देखें झमाझम बारिश आजकल हो रही है। लेकिन इस बारिश में जो है ना, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेकर के घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे उसके टायर्स जो हैं वो ठीक हों, ब्रेक्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे हों, वाइपर्स चल रहे हों, और हेडलाइट्स जो है ना वो एक बार ज़रूर चेक करा लें। और बारिश में वाटर लॉगिंग रोड्स पर जो है ना, स्पीड से गाड़ी चलाने से बहुत ज़्यादा आपको बचना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब पानी भरा होता है कहीं कहीं सड़कों पर, तो हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर गड्ढा है या नहीं है, है तो कितना गहरा है। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दे करके चलें, और अगर सड़क पर पानी ज़्यादा है तो रिस्क लेने की बजाय थोड़ा सा वेट करना बेहतर है। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा मौजूद है कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। याद रखें, एक छोटी सी जो आपकी आज की केयर है ना, वो आपके कल को बचा सकती है। तो बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मानसून है ना, आप बहुत अच्छे से मनाएंगे। और मानसून में आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी गाड़ियों का ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो आपको ये भी देखना है कि मानसून अपने साथ साथ मस्ती तो लेकर के आता ही है, उसके साथ साथ लेकर के आता है कुछ बीमारियाँ भी। और क्योंकि बारिश की फुहारें, ठंडी हवाएं, चाय पकौड़े और वीकेंड, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बारिश होती है ना, ये अपने साथ सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी लेकर के आती है। और जब हम बात करते हैं बारिश की, तो बारिश में कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे घर के आसपास पानी जमा हो जाता है, और पानी जब जमा हो जाता है तो उसमें कुछ मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं, जिसमें डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी होते हैं। तो उन सभी से निपटने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी सी जो आदतें हैं ना, वो हमेशा अपना करके रखनी चाहिए। जैसे घर के आसपास कहीं पर भी, घर पे, छत पे, बालकनी में, कहीं पर भी आपको पानी नहीं जमा होने देना है। फिर चाहे वो गमले हों, टूटी फूटी बाल्टियाँ हों, टायर हो, कुछ भी हो, कूलर हो, आपको पानी नहीं जमा होने देना है। सिर्फ बारिश का ही नहीं, बल्कि आपको जो साफ पानी होता है ना, वो भी वहां पे जमा नहीं रहने देना है, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं ना, चाहे वो डेंगू के हों, मलेरिया के हों, ये साफ पानी में भी पनपते हैं। तो इसलिए आपको ये जो पानी है बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है, या अगर पॉसिबल है तो वो पानी आप बदलते रहें बार बार, जैसे टंकी का पानी है बार बार बदलते रहें, बाल्टी का पानी है बार बार बदलते रहें। और सुबह शाम कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहनें, और ज़रूरत हो तो मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, साफ और सुरक्षित पानी ही आपको पीना है। अगर पानी की शुद्धता को लेकर के आपको कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, तो आपके पास जो पानी है उसे उबाल लें, बहुत अच्छे से उबालें। करीब 15 से 20 मिनट आप उस पानी को उबाल लें, या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यही आपके लिए सेफ है। कहते हैं ना कि मॉनसून के मौसम में, बारिश के मौसम में जो बीमारियां हैं ना, बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती हैं। और अगर ऐसे में आपको तेज़ बुखार हो जाता है, बदन दर्द हो जाता है, या लगातार कमज़ोरी आपको महसूस होती है, तो खुद से दवाइयाँ बिल्कुल भी ना लें, बल्कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ। और याद रखिए, बारिश का मज़ा तभी है जब सेहत भी साथ निभाए। और ये जो खुद से जो दवाइयाँ लेने की जो प्रोसेस होता है ना, हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी तो हमें यही दवाइयाँ लिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि वो डॉक्टर ऑथराइज है उन दवाइयों को लिखने के लिए, आप ऑथराइज नहीं हैं वो दवाइयाँ स्वयं से लेने के लिए। तो अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़
मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी जो है ना वो पूरे परिवार की मुस्कुराहट

तो हम तो यही कहेंगे कि बारिश का मज़ा लीजिए, लेकिन अपनी सेहत को सबसे पहले रखिए। और दोस्तों, सुनने में एक स्लोगन लगता है कि क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली, लेकिन इसकी शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं, बल्कि आपकी मेरी एक छोटी सी आदत से होती है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस किसी भी माहौल में हैं, आपने आसपास, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप दफ्तर में हैं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं, अपने आसपास सफाई बना करके रखिए। कूड़ा गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे से सिविक सेंसेस हैं जो कि हम सभी को अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ किसी दूसरे पर नहीं छोड़ सकते। हमारी खुद की जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारे खुद के कुछ अपने खुद के कुछ नियम होने चाहिए कि नहीं, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, या हमें अपने आसपास का माहौल कैसा रखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आसपास साफ सफाई होती है तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है, और जब आपका मन प्रसन्न होता है तो आप बहुत सकारात्मक सोचते हैं, और जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ सब सकारात्मक होता है। तो पॉजिटिव आपके साथ हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उसकी जो नींव है, अपने आसपास जो साफ सफाई है, उससे शुरुआत कीजिए। है ना कितनी मज़ेदार सी बात, कि देखिए कहाँ से कहाँ कड़ियाँ जुड़ती हैं। कभी हम इतना ध्यान भी नहीं देते कि सफाई से हमारे जीवन पर इतना बड़ा असर भी पड़ सकता है। हाँ, हम अक्सर सफाई को लेकर सिर्फ अपनी हेल्थ तक ही जोड़ लेते हैं सफाई को, लेकिन ये हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उनसे भी जुड़ी हुई होती है। और साथियों, आजकल हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, या हम अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों पर जो है ना, वो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। फिर चाहे वो फ़ोन हो, या मैसेजिंग ऐप्स हो, या कोई और सोशल मीडिया ऐप्स हो, हम बहुत ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ जो हैं उन पर कई बार हम ऐसे साझा कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें साझा करते वक्त सतर्कता रखनी चाहिए। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। फिर चाहे वो हमारी ज़िंदगी के छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम से लेकर के कोई भी बड़े बड़े काम हो, वो हम डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम डिजिटली जो है सेफ़ रहें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें हमें एक पैनी निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल भी हमें अपनी जानकारियां साझा करते वक्त बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसे कि डिजिटल सेफ के मामले में हम ये देखते हैं अक्सर कि बहुत सारी धोखाधड़ी हो जाती है, कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी बात पर, किसी भी फ़ोटो, किसी भी वीडियो, किसी भी मैसेज पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर लेना है कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे। और इसके लिए सिर्फ आप ही को जागरूक नहीं होना है, बल्कि आपको अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग हैं, उन सभी को भी जागरूक करना है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि हम खुद तो जागरूक हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि घर वालों को नहीं भी बताएंगे तो वो इतने डिजिटली नहीं फंस सकते हैं, वो बच जाएंगे, या उनको और चीज़ें इतनी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखने वाले बड़े बड़े मुनाफे होते हैं ना, कई बार उसमें क्या होता है कि उस पर हम लोग आंख बंद करके वो विश्वास कर लेते हैं। किसी भी अनजान लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। बच्चों के हाथ में आजकल फ़ोन होते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो आपको अपने फ़ोन में अपने जो भी आप गैजेट्स यूज़ करते हैं उन पर कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे कि कोई भी अनजान लिंक जो है वो एकदम से ओपन ना हो जाए। और सबसे अहम बात जो होती है वो है OTP, बैंक खाते की जानकारी, अपनी UPI पिन या CVV या कोई भी पासवर्ड जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। क्योंकि कोई भी आपको संदिग्ध मैसेज, वेबसाइट

0: हुए होते हैं, डीटीएच के माध्यम से हमसे जुड़े हुए होते हैं, और इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये भी आप सभी के लिए मौजूद है जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, भरोसेमंद जानकारी, सकारात्मक सोच और आपके अपनेपन की आवाज। और हाँ श्रोताओं, एक चीज़ और आप सभी से कहना चाहूँगी कि जैसे अभी 15 अगस्त का समय चल रहा है और हमारे बहुत सारी जगहों पर ऐसी रिवाज होते हैं या ऐसे कुछ खेल होते हैं जो हम इन दिनों खेलते हैं। जैसे 15 अगस्त पर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं और सब लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, त्योहारों का मौसम और छतों पर फिर से शुरू होने वाला वो फैमिलियर कॉम्पिटिशन बोकाटा। लेकिन दोस्तों, पतंग की डोर अगर बैन मांझे की हो तो ये खेल खेल नहीं, किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। दिल्ली में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ पुलिस ने अभियान जो है अपना तेज तो किया हुआ ही है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये धारदार मांझा खासतौर पर बाइक और स्कूटर पर सवार जो लोग होते हैं उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। गर्दन या शरीर के दूसरे हिस्सों में फंसने से गंभीर चोट लग जाती है, जैसा कि हम कई बार ऐसा पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप पतंग उड़ाएं, पतंगबाजी का आनंद लें, तो ऐसे मांझों का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके लिए इतने खतरनाक साबित हों, दूसरों के लिए इतने खतरनाक साबित हों। और हाँ, जो टू व्हीलर पर सफ़र करते हैं उनके लिए ख़ास तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप पतंग उड़ाए जाने वाले इलाकों से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, हेलमेट ज़रूर पहने, स्पीड को कंट्रोल में रखें और आसपास की डोर पर नज़र रखें। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत तेज़ स्पीड में होते हैं तो आसपास जो पतंग के जो मांझे हैं वो हमारी नज़र नहीं पड़ते हैं, और अपनी गर्दन के आसपास कोई दुपट्टा, कोई स्कार्फ ऐसा बांध करके चलें जिससे कि आपको चोट लगने से बच सकें आप। और पतंगबाजों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि पतंग उड़ाइए, आसमान रंगिए, लेकिन ऐसी डोर नहीं जो किसी और की राह को रोक दे। कांच, धातु या नायलॉन से बनी हुई प्रतिबंधित डोर का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को भी सेफ और वैकल्पिक मांझे का इस्तेमाल करने की सलाह दें, उन्हें समझाएं कि कौन सा मांझा उनके लिए और दूसरों के लिए सुरक्षित है। और हाँ, अगर आपको कहीं पर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या इस्तेमाल दिखाई दे तो आप पुलिस को तुरंत सूचित कर दें, क्योंकि अगर आप मांझा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको अगर उससे चोट लगने का डर नहीं है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाएं। याद रखिए, पतंग की उड़ान ऊंची हो लेकिन इंसान की जिंदगी उससे भी ज़्यादा कीमती है। और फ्लाई द काइट नॉट द रिस्क। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए हमारे प्रोग्राम में, हमारी महफिल में। और ये है छोटे उस्ताद की महफिल, बिल्कुल छोटे बच्चों की महफिल और उन बच्चों की महफिल जिन्होंने बहुत कुछ किया जीवन में, बहुत कुछ किया अपनी इस छोटी सी उम्र में और बहुत नाम कमाया। ऐसे ही देश के होनहार बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान, नवाचार, बहादुरी और खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए हैं। मुख्य धारा से अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई जानता नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनके पीछे कोई सुविधा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ बच्चों की बात आज हम करेंगे छोटे उस्ताद में। बिल्कुल जी, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे एक नगमा और उसके बाद करेंगे हमारे उस छोटे उस्ताद की बात जो जिसका नंबर इस सॉन्ग के बाद आने वाला है। बिल्कुल जी, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे एक नगमा जो अपने देश के नाम, क्योंकि ये बच्चे देश के लिए समर्पित हैं, ये बच्चे राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और देश की उन्नति, प्रगति और तरक्की के लिए लगातार निरंतर एक मन में भाव रखते हैं, इच्छा रखते हैं और उसी आकांक्षा को लेकर, उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

0: अम्मा
1: जी हाँ बिल्कुल आ जाइए। और यह है छोटे उस्ताद की कहानी। और छोटे उस्तादों की बात अगर हम करें तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक छोटे उस्ताद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ जिन्होंने साइंस और इनोवेशन में बहुत कुछ किया है। बिल्कुल बात कर रहा हूँ मैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि की, जो महाराज से हैं और आपने जीता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बहुत बड़ी बात है। अर्णव ने ये सब जीता कैसे, इसकी एक बहुत प्यारी सी बहुत ही कहानी है जिसके पीछे उनकी मेहनत है, लगन है। अर्णव शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और अपनी शारीरिक सीमाओं और दैनिक जीवन के कड़े संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कंप्यूटर विज्ञान और तकनीक में महारत भी हासिल की। और इनकी सफलता की जो कहानी है वो बहुत ही निराली है। अर्णव के हाथ के पैरालिसिस से

अर्नब ने हाथ के पैरालिसिस से पीड़ित मरीज होते हैं उनकी सहायता के लिए एआई आधारित रिहैबिलिटेशन टूल एआई, आप देखिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस उड़ान को पंख दिए कि उन्होंने एआई आधारित रिहैबिलिटेशन टूल और एक विशेष एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड का आविष्कार किया और उनका यह वैज्ञानिक नवाचार चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा वरदान भी साबित हो रहा है। तो बिल्कुल साहब, मैं अर्नब अनुप्रिया महर्षि को ज़रूर सल्यूट करना चाहूँगा। और देखिए ना आप, कितनी बड़ी बात है कि जहाँ हम अपने जीवन की जद्दोजहद से, अपने जीवन की परेशानियों से नहीं निकल पाते, वहाँ ऐसे में ऐसा व्यक्ति वो दूसरे लोगों को आगे बढ़कर एक नया मुकाम, एक नया रास्ता दिखाने की मदद कर रहा है। तो सल्यूट है बॉस आपको, और ये बहुत ही प्यारा सा नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद और वक्त हो गया है 3:02 और ये 47 मिनट 48वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई दौड़ रही है। मेरे दो छोटे उस्ताद की बात मैं आपसे करूंगा एक साथ। ये दो छोटे उस्ताद हैं लखनऊ से और बिल्कुल इनका नाम है अनन्या अग्रवाल और आर्या सिंह। बिल्कुल ये अनन्या अग्रवाल और आर्या सिंह दोनों 11th की स्टूडेंट्स हैं और लखनऊ में रहती हैं। अब इन्होंने क्या इनोवेशन किया मैं आपको बताता हूँ। दोनों ने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जो मॉडल हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल निकाय हैं हमारे, उनकी सफाई। उनका मानना ये था कि जितना हमारे इस प्लेनेट पे पीने का जो जल है, पेयजल है, बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत निश्चित रूप से हम ये सब जानते हैं कि पानी दुनिया में भले ही 70% से करीब जल है, लेकिन पीने का पानी बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो वो पीने का पानी नदियों के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से हमें आता है, लेकिन जिस तरह से लोग इन पानी की, इन पीने के पानी की में अनदेखी करते हैं, गंदगी डालते हैं, उसमें तरह तरह का कचरा, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें फेंकते हैं, उससे वो जो पानी का जो सरफेस है, ख़ासतौर पर नदियों के सरफेस में कचरा जमा हो जाता है। हालांकि सरकार की जो मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें उसके लिए काम कर रही हैं, निरंतर यमुना की सफाई हो रही है, गंगा जी की सफाई हो रही है और देश की प्रमुख नदियों की बहुत ही जैसे कहते युद्ध स्तर पर इस कार्य को एजेंसीज कर रही हैं, सरकार की तरफ से काम चल रहा है, उसको सल्यूट है। लेकिन इन बच्चों ने अपना एक अभिनव तरीका, उसमें एक नई टेक्निक जोड़ने की कोशिश की, छोटा सा मॉडल बनाया अपने कॉलेज में, जिसमें ये जो मशीनें एट प्रेजेंट काम कर रही हैं उनका और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस मॉडल को जब इन्होंने अपने स्कूल में पेश किया तो बिल्कुल ये तालियों की पात्र बनी और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने उस मॉडल को आगे भी ले जाने का और आगे उस मॉडल को बिल्कुल रिफाइंड तरीके से बनाने की जो इनका संकल्प है उसको लेकर ही आगे बढ़ रही हैं। तो 11th की छात्रा अनन्या अग्रवाल और आर्या सिंह को, जो लखनऊ में इस वक्त हैं, दोनों के ना सिर्फ मदर फादर को, उनके टीचर्स को, उनको सबको, उनके स्कूल को और उनके फ्रेंड्स को हमारी शुभकामनाएं कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। सरकार बिल्कुल आपके साथ थी, है और रहेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि बच्चे जो भी इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसको सरकार पूरी तरह से अपना सहयोग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। ये संकल्प है देश का कि हमें 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाना है और ऐसे बच्चे आगे बढ़कर देश को नई दिशा में लेके जाएंगे। और फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम छोटे उस्ताद, मैं हूँ आकाशवाणी रेनबो पर, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। सो इधर पापा बच्चों के क्या कहते हैं, पापा से बच्चों से क्या कहते हैं और बच्चे बहुत से क्या सोचते हैं, इस सॉन्ग में आपको सुना देते हैं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

बिल्कुल जी, पापा क्या कहते हैं और बच्चे ने मान लिया। जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं और सही बात को मानते हैं, हालांकि देखिए जरूर है कि आपके बच्चे जो हैं जब आप बड़े हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, वो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बातें सिर्फ उनको कहेंगे, हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा एक्टिव मोड में आगे बढ़ रही है और बहुत कुछ जानती है। हम उनकी बात अगर सुनेंगे तो बहुत नॉलेज उनसे मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमें। ऐसी ही एक और, मैं जिसे कहते हैं कि बाल, जिसे कहते हैं अपने छोटे उस्ताद की मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं पूजा पाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से आने वाली पूजा पाल ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अर्जित किया और संघर्ष और मेहनत की जो उनकी गाथा है वो बहुत अनोखी है। बाराबंकी के एक ग्रामीण इलाके से आने वाली 17 वर्षीय पूजा ने देखा कि थ्रेसिंग यानी फसल की जो मड़ाई की जाती है उस समय खेत में धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, और धूल और भूसे के कारण किसानों को सांस की गंभीर बीमारियों के कारण ना सिर्फ बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। पूजा ने क्या किया, पूजा ने अपने स्तर पर कड़ा वैज्ञानिक प्रयास किया और डस्ट रिडक्शन थ्रेशर मशीन विकसित की जो मड़ाई के समय उड़ने वाली धूल को सोख लेती है। और उनका ये प्रयास जो पर्यावरण अनुकूल इनोवेशन कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने में बेहद ही मददगार साबित हुआ है। तो देखा आपने, अगर बच्चे चाहें तो क्या नहीं कर सकते। पूजा पाल, उत्तर प्रदेश की इस छोटे उस्ताद को हमारा सल्यूट, और हम चाहते हैं कि हमारा आकाशवाणी रेनबो आप यूं ही सुनते रहिए। और एक से बढ़कर एक नगमे हम आपको सुना रहे हैं, और एक और प्यारा नगमा अगर आप आरंभ करते हैं तो आरंभ आपका कहीं ना कहीं एक मुकाम पर ज़रूर पहुँचेगा।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो

सर्व शक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्व शक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है,

0: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
4: कहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन क्या हो जब हर कदम दर्द देने लगे। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। जरा सोचिए, सुबह बिस्तर से पहला कदम रखने से लेकर दिन भर की भागदौड़ तक हमारे पैर लगातार हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन क्या हम भी उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। अक्सर पैरों की छोटी मोटी तकलीफ को हम नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से शुरू हो सकती है बड़ी परेशानी। एड़ी में दर्द, पैरों में सूजन, तलवों में जलन, कॉर्न, फटी एड़िया या नाखूनों की समस्या, सुनने में ये परेशानियां आम लग सकती हैं, लेकिन कई बार ये हमारी सेहत से जुड़े दूसरे संकेत भी दे सकती हैं। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, कॉमन फुट प्रॉब्लम्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: आपका मैम बहुत बहुत

0: शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कॉमन फूड प्रॉब्लम्स पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर पैर दर्द करे तो हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हर दर्द आम है? पैरों से जुड़ी आम समस्याएं आखिर कौन कौन सी हैं?
0: जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि अगर पैरों में दर्द हो तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये अक्सर सब लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा कुछ केसेस में तो ठीक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 50 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं या 60 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं तो उनमें ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनकी मसल्स एज के हिसाब से वीक हो जाती हैं, उनकी बॉडी का भार उतना नहीं ले पाती हैं, तो वॉकिंग के टाइम पे, स्टैंडिंग के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन उससे ब्लो एज के ईयर्स, जैसे कि कोई 30 साल का है या 40 साल का है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और पर्सन इनको अवॉइड करते हैं रेस्ट करके। जब पर्सन रेस्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं तो उनका बॉडी का वेट गेन होने लगता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ने लगती हैं।
1: लेकिन कई बार हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि एडी में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई वजह होती है या?
0: हाँ, एडी में दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं और वो आते भी हैं, मतलब ज्यादा स्टैंडिंग या ज्यादा वॉकिंग की वजह से आ जाते हैं। तो अक्सर जो एड़ी में दर्द होते हैं वो जैसे हील स्पर हो गया, प्लांटर फेसाइटिस हो गया, एक्लियस टेंडन हो गया, तो कई सारे टाइप के होते हैं। वो अक्सर रेस्ट के हिसाब से चले भी जाते हैं और कभी कभी वो बहुत सीवियर बढ़ भी जाते हैं।
1: तो जैसे कि अभी आपने कहा प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
0: प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर में काफी डिफरेंस है और लोग ये मुझसे पूछते भी हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि हमें प्लांटर फेसाइटिस है हील स्पर है, वो कंफ्यूज रहते हैं ऐसे केसेस में। तो मैं बता दूं कि प्लांटर फेसाइटिस एक ऐसा प्लांटर फेसिया है जो हमारे हील की तरफ से ओरिजिनेट होता है, वहां से स्टार्ट होता है और फिंगर की तरफ वो रन करता है। तो प्लांटर फेसिया के केस में होता है कि जो फेसिया होता है हमारा थिक हो जाता है और जिसकी वजह से कि हमें जब भी हम पैर वजन डालते हैं एड़ी पे तो हमें पेनफुल होता है। और इसी के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा हील स्पर का। हील स्पर के केस में क्या होता है, जो हमारी एड़ी की बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो कैल्केनियल बोन होती है, तो उसका बढ़ जाना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अक्सर हील स्पर के केस में पर्सन जब सुबह सोके उठते हैं तो उस टाइम पे वो पेन फील करते हैं। इनिशियल के 5-6 स्टेप या 10 स्टेप उनके पेनफुल होते हैं, आफ्टर 10 स्टेप वो फिर पेन उनका अवॉइड हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, मुझे पेन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो फिर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे के लिए, वो फिर पेन वैसे ही आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लांटर फेसाइटिस में पूरा दिन आप पेन फील करेंगे, हील स्पर के केस में सिर्फ मॉर्निंग में, तो उसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं।
1: तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है मैम। इसका ट्रीटमेंट पहले तो हमारे यहाँ इंडिया में सब लोग होम रेमेडी लेते हैं ज्यादातर, है ना। तो जब होम रेमेडी से काम नहीं बनता है तब वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पास में कोई भी अच्छा डॉक्टर, जो पोडाइट्रिस्ट हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, उनके पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे कितने टाइम से पेन आ रहा है और ये किस चीज का पेन हो सकता है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जनरली तो सबसे पहले हमें अपनी फुटवेयर वगैरह ही चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेशर की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और उससे ही हम इनको रिजोल्व कर सकते हैं।
1: कई बार होता है जो डायबिटिक होते हैं उनको भी पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है या पैर सुन हो जाते हैं, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
0: डायबिटिक के केसों में तो ये बहुत आम है, बहुत कॉमन चीजें हैं कि भाई हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें थोड़ा भी पेन लग रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने पास में किसी भी, और हमें खासतौर से ध्यान देना चाहिए कहीं हमारे पैरों में स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, या हमारे नेल्स ब्लैक या ब्लू तो नहीं पड़ रहे हैं, या हमारी जो फुट की स्किन है वो ब्लू तो नहीं हो रही है, ब्लैक तो नहीं हो रही है, और कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर हमारे पैर में अगर है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी स्कार या अल्सर अगर 24 से 48 घंटे में उसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है तो हमें इमिडिएटली किसी भी अपने पास के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के केस में बहुत जरूरी हो जाता है कंसल्ट करना।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं पैरों की आम समस्याओं पर। इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: चार कदम बस चल दो ना साथ मेरे। ये गाना सुनकर वैसे ही चलने का मन हो गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है हम अपने पैरों का ध्यान रखें। हम बात कर रहे थे कि हम डायबिटीज में कैसे अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज का पैरों पर क्या असर पड़ता है और उनके लिए एक छोटी सी फुट इंजरी भी इतनी डेंजरस क्यों हो जाती है डायबिटिक में।
1: डायबिटिक के केस में मैम ऐसा होता है कि कोई भी अगर फुट इंजरी हुई है तो इसको हील होने में काफी टाइम लग जाता है ना, उसी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसीलिए हमें अपने जब भी अगर किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसको काफी ध्यान से पैरों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एंटायर बॉडी वेट हमारे फुट पे होता है। और जैसे ही डायबिटिक के केस में अगर वॉकिंग भी थोड़ी हम रोकते हैं या अगर पर्सन रेस्ट ले लेता है तो उस केस में उनके लिए काफी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर छोटा सा भी कोई अल्सर या कोई ब्लिस्टर या कोई चोट भी लगी है तो उसका बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना होता है कि यह हमारा हीलिंग स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। 24 से 48 घंटे का टाइम हम मानते हैं कि अगर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है उस पीरियड में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें वो डॉक्टर के पास में अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर के पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डेली रूटीन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए डेली रूटीन में?
1: जी बिल्कुल, ऐसा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने पैरों को डेली की दिन में 2 से 3 बार अगर पॉसिबल है तो वॉश करना चाहिए और कॉटन टॉवल से उनको क्लीन करना चाहिए। और स्पेशली ध्यान रखें कि कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर वहां पे नहीं है होना चाहिए, और एक नरम फुटवेयर पहनना चाहिए ना कि हार्ड फुटवेयर, टाइट तो बिल्कुल ना हो उनके लिए, और उनकी वॉकिंग एक लिमिटेड होनी चाहिए अगर किसी को सीवियर डायबिटीज है तो। जी
0: अच्छा, कई बार कहते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं तो उनको बेयरफुट चलने में भी प्रॉब्लम होती है।
1: हाँ ऐसा होता है, क्योंकि डायबिटिक के केस में इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहता है पैरों में और इंजरी के काफी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सकता है कवर शूज या सॉफ्ट फुटवेयर पहन के वॉक करो, ना कि वेयर फुट। अगर वेयर फुट वो मतलब वॉक करते हैं तो इंजरी होने के रिस्क काफी हो जाते हैं।
0: या फिर सॉक्स भी अगर घर में या कहीं मंदिर

0: वगैरह में जा रहे हैं तो सॉक्स भी पहन सकते
1: सॉक्स
0: हैं।
1: पहन सकते हैं, उन्हें कॉटन सॉक्स होते हैं और डायबिटिक सॉक्स भी आते हैं, वो भी पहन सकते
0: वो
1: हैं।
0: डिफरेंट होते हैं,
1: वो डिफरेंट होते हैं।
0: क्या डिफरेंस होता है?
1: डायबिटिक सॉक्स में क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, उनके अंदर थोड़ा कंप्रेशन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से टूवर्ड्स हार्ट्स इजिली फ्लो हो पाए।
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं उमेश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब को नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार सर
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में जलन रहती है
1: जी,
2: और तेल की मालिश करने से थोड़ा आराम लग जाता था पहले, अब नहीं लगता। ये किस जलन होती है, इसका क्या इलाज है, कृपया प्लीज बताइए।
1: देखिए, पैरों में जलन एक आम समस्या है और काफी लोग इस समस्या से परेशान हैं, और ये इसमें जनरली जो 30 से 35 साल के ऊपर के लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। ये जनरली इसलिए हो जाती है कि जो पर्सन के लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग वॉकिंग होता है, तो उन लोगों में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस केसेस में जैसे सर ने बताया कि सरसों के तेल की मालिश करते हैं, तो मालिश तो ठीक है, लेकिन उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उनको अपने पास में, नजदीकी पास में एक पोडाइट्रिस्ट के पास जाके अपनी पूरी हिस्ट्री बताने की जरूरत है, सो देट कि वो उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सके, तब उनको रिलीफ मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी मालिश से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ये इसका प्रॉपर इलाज नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि जलन की उन्होंने बात करी, तो एक मैसेज भी हमारे पास, ये भी यही पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, आई एम अमर रमेश कुमार खत्री चाने सर गोद कराची से। इनका क्वेश्चन है, मेरे फुट में गर्मी के मौसम में जलन रहती है, इसका क्या रीजन है और क्या ट्रीटमेंट है, बता दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। इनके भी यही है, लेकिन कह रहे हैं गर्मी के मौसम में।
1: इनका भी सेम, गर्मी के मौसम में क्या होता है, स्वेटनिंग ज्यादा होती है, और जो पर्सन होते हैं वो शूज ज्यादा कैरी करते हैं, तो जब हमने बताया अभी के ओवर यूज ऑफ मसल्स, अगर हम ज्यादा टाइम तक स्टैंड कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तक वॉक कर रहे हैं, तो स्वेटनिंग होती है, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि हम मालिश करा लें या हम रेस्ट कर लें। बर्निंग सेंसेशन इसको बोलते हैं जनरली, जो प्लांटर सब हमारे फुट के नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले तो इसका इलाज यही है कि आप अपने पोडाइट्रिस्ट को जाके ये प्रॉब्लम बताएं, वो आपके फुट के अकॉर्डिंग एक इंसॉल बना के देंगे, जिसे हम कस्टमाइज इंसॉल ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। तो शूज के अंदर डाल के पहने, जिससे कि जो मसल्स की हीट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके अंदर मेडिकेटेड मटेरियल्स होते हैं, जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको फुट में जलन है, उनके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है ट्रीटमेंट लेना, और बड़े आराम से वो ठीक हो सकते हैं। पर मसाज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है इस टाइप के पेशेंट्स के लिए, अपने पैर के हिसाब से अपना एक इंसॉल बनाए, उसको शूज के अंदर डाल के पहने, वो स्वेटनिंग भी ऑब्जर्व करेगा और बर्निंग को भी कम करेगा।
0: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मेरा नाम अब्दुल मुख्तियार है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, खजूरी से।
0: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी मेरा सवाल यही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जी मेरी मम्मी के ना जोड़ों में और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हमेशा रहता है, सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन इनका दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसका क्या, आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तब ये डायबिटीज हो सकती है क्या?
1: नहीं, ये जो आपकी समस्या है वो डायबिटीज की समस्या नहीं है, ये समस्या है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसे हम गठिया बा बोलते हैं, जो हमारे हाथ के पैरों की उंगलियों में दर्द होता है या हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि हमारे मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, हमारी मूवमेंट कम हो जाती है। सर्दियों में हम वॉक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, हम अक्सर गर्माहट में रहना पसंद करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, तो मूवमेंट भी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये पेन आना, दर्द होना, ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा आएगा। तो ऐसे एक चीज को ठीक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, आपके आसपास में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, आप उनसे जाके कंसल्ट करें, तो वो आपके इस बारे में जरूर मदद कर सकते हैं। थैंक यू।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपने बोला था न्यूरोपैथी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है और पैरों को कैसे प्रभावित करती है?
1: हमने अभी इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि ये डायबिटीज से रिलेटेड है, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है डायबिटिक पेशेंट्स को, कि भाई पैरों में ज्यादा सूजन नहीं आनी चाहिए, सेंसेशन का ध्यान रखना होता है। इस केसेस में क्या होता है, अक्सर पेशेंट का सेंसेशन कम हो जाता है, उनको फील होना, टचिंग फील होना कम हो जाता है, या ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सभी डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए, कि वो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें, अगर सूजन आ रही है या आपको कुछ भी ऐसा ठंडे या गर्म का एहसास नहीं हो रहा है या आपका सुन्नपन बढ़ रहा है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इस चीज में, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डायबिटीज के डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनको प्रॉपर जाके अपनी हिस्ट्री बताएं।

0: ऑपरेट कराया है या हम तीन चार बार इसको ऑपरेट करा चुके हैं, पर ये कौन बार बार आ जाता है? तो वो बार बार आ जाएगा, वो स्वाभाविक है आना, क्योंकि वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा प्रेशर नहीं हटा है। जब तक वो प्रेशर उस एरिया से नहीं हटेगा तो कौन ठीक नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो उसके लिए उस प्रेशर को हटाना बहुत जरूरी है, और वो हट सकता है तभी तब आप एक प्रॉपर ऑर्थोटिक्स अपने शूज के अंदर पहने, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें, वो चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे कितना प्रेशर आ रहा है और हमें कितना प्रेशर वहां से शिफ्ट करने की जरूरत है। जी, तब वो हमारा कौन बड़े आसानी से ठीक हो जाएगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरे फुट में थंब के नीचे बोन बाहर की साइड आ गई है जिसे ब्यूनियन बोलते हैं। 1 मंथ बहुत दर्द रहा। इससे पहले विंटर में मैंने पूरे टाइम बंद शूज पहने थे, क्या ये उस वजह से हुआ? अब आराम है, हड्डी बाहर आ गई है, मुझे कैसे फुटवेयर यूज करने चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन इनका यह है, मेरी सिस्टर 72 साल की है, पैर की फिंगर सुन हो जाती है, क्या करें? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ।
0: जी, ये उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बुनियन का। अक्सर ऐसे ओल्डर एज के केस में ऐसा होता है, या यंग एज में भी बुनियन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बुनियन की प्रॉब्लम आने का कारण है कि हमारे जो अंगूठा है आगे वाला, उस पे ओवर प्रेशर आता है। जैसे अंगूठे पे वजन ज्यादा आएगा तो हमारा अंगूठा डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा या बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अक्सर बुनियन के केस में मुड़ता है और हमारी हड्डी बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे जो पैर है वो सीधे न होकर अंदर की तरफ फॉल करते हैं, जो हमारा आर्च है वो लो हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, समटाइम फ्लैट भी हो सकता है, जिसे हम पट्ट पैर बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में वो बुनियन की प्रॉब्लम बन जाती है, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप एक तो कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स जितना हो सकता है अपने इंसोल पहने, और शूज किस टाइप का पहनना है, शूज आपने आगे से जो टो बॉक्स एरिया, जो आगे का पंजे वाला एरिया होता है, वो टो बॉक्स एरिया होता है, उसको ब्रॉड होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो अपर होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो देट की उस जो बोन उनकी प्रोट्रूड हो गई है उस पर ओवर प्रेशर ना आए। तो नॉर्मल प्रेशर आएगा तो वो पेन फ्री वॉक कर सकते हैं, इस चीज का उनको खासतौर से ध्यान रखना है। और उनको लेसेस वाले शूज पहनने हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज कर सकें।
1: तो लेसेस विदाउट लेसेस शूज में भी डिफरेंस रहता है?
0: काफी डिफरेंस होता है। विदाउट लेसेस शूज आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, है ना, लेसेस
1: इजी टू वियर रहते हैं,
0: इजी टू वियर होते हैं, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने पहनने के बाद काफी लूज हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रिप नहीं रहती है। हमारे पैर को तो ग्रिप होना बहुत जरूरी है, अगर ग्रिप नहीं होगी तो हमारा पैर अंदर की तरफ भी गिर सकता है और बाहर की तरफ भी गिरता है। तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारा पैर अंदर ही फॉल करता है, और उसी की वजह से हमारा फ्लैटनेस बढ़ती है पैरों में, उसी की वजह से हमारे बुनियन बनते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो यही होता है कि आप जितना हो सकता है कि आप फीते वाले शूज पहने, कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक चीज और है, आजकल फैशन के अकॉर्डिंग हम शूज में भी है ना, उसमें एक तो आते हैं सॉफ्ट फोम के, एक आते हैं कैनवस, तो हमें उसमें भी किस तरह की सोल लेनी चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जनरली लोग सोचते हैं कि हम बहुत सॉफ्ट कुशन वाला शूज लें ताकि आराम रहेगा चलने में, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि आराम तो मिलता है जब स्टार्टिंग में लेते हैं और वॉक भी काफी करते हैं, जहां जैसे ही 2-3 महीने 4 महीने निकलते हैं तो उनको और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्ट वाला शूज लिया है वो ओवर प्रेशर की वजह से वो दबने लगता है। जब सॉफ्ट है तो दबेगा, उसकी टेंडेंसी है, तो जब दबेगा तो नी पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमारे नी पेन काफी कॉमन होता है ऐसे केसेस में, तो जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट वाले शूज आते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप सॉफ्ट भी मत पहनिए, आप हार्ड भी मत पहनिए, आप सेमी रिजिड शूज पहनिए, ना सॉफ्ट हो ना हार्ड हो। और एक चीज का और ध्यान रखें कि जो हमारे आर्च के पास जो पोर्शन होता है ना, वो वाइड होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि फुट का जो सरफेस एरिया है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफी अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्च सपोर्ट के चक्कर में, अच्छा शूज के चक्कर में, फैशन वो एरिया ही नैरो कर देते हैं, तो ये काफी बड़ा एक इश्यूज है। और मेरे हिसाब से लोगों को इस चीज के थोड़ा ध्यान रख के शूज परचेज करना चाहिए,
1: मतलब हमें सब चीजें देखकर फिर अपना शूज सेलेक्ट करना चाहिए।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आपके आसपास में पोडियाट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर
1: जी,
0: आप उनको जाके प्रॉपर अपना पैर दिखा के कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें किस टाइप का शूज हमारे फुट के लिए सही रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे।
1: उन्होंने जिनका हमारे पास मैसेज था, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी सिस्टर है 72 साल की, उसकी पैर की फिंगर सुन हो जाती है, वो क्या करें?
0: हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि पैरों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, उंगलियों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, तो जो एज के अकॉर्डिंग हमारी मसल्स वीक होती हैं, तो ये नमनेस हमारी फिंगर से नहीं स्टार्ट होती है, हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं उनकी कमर में कोई ना कोई नर्व उनकी सप्रेस हो रखी है, जिसकी वजह से वो वहां पे नमनेस फील करती है, तो उनको न्यूरो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। पैरों के लिए इतना वो परेशान ना हो, वो वहां से ठीक हो जाएगी।
1: जैसे कि हम डायबिटीज पे अभी बात कर रहे थे तो एक मैसेज भी आया हमारे पास, वो लिखते हैं,

0: कसगंज से मास्टर राधे श्याम साखिया, वो लिखते हैं, नमस्कार जी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरी तलवों में सुनपन और जलन है। घर से स्कूल जाकर वापस आने में पैरों में सूजन आ जाती है और रेस्ट करने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए?
1: ये पैरों की सूजन की समस्या बड़ी कॉमन है और हम ये सोचते हैं कि हमारे पैरों में कोई प्रॉब्लम है। ये जरूरी नहीं कि आपके पैरों में ही प्रॉब्लम हो। आपने कहा कि आप जब रेस्ट करते हैं तो आपकी वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर इनटेक कम हो रहा है, हम पानी कम पी रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाता है और एंटी ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाता है। हमारा जो रक्त है, जो खून है, वो पैरों से हमारे हृदय की तरफ वापस आता है और वैसे ही नीचे जाता है, तो थिक होने की वजह से उतना ब्लड वेसल से वो पास नहीं हो पाता है। जैसे कि थोड़े टाइम स्टैंडिंग में, थोड़ी वॉकिंग में लोगों के पैर सूज जाते हैं, तो वो अपना वाटर इनटेक अच्छा करें। और इसके साथ में उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये किडनी की भी प्रॉब्लम, लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी,
0: बातें हम और भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: ये रात

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की। तो हमारे पास एक मैसेज है डॉक्टर साहब, वो लिख रहे हैं, हेलो माय नेम इज ज्योति, माय एज इज 40। मुझे 2 साल से अर्थराइटिस बताया, नी में इंजरी बताई और 2 साल से दवाई खा रही हूँ, कोई रिलीफ नहीं है। अब मैं फिजियो

0: थेरेपी ले रही हूँ 2 महीने से। अब 19-20% आराम मिला है। फिजियोथेरेपी से 100% रिजल्ट आएगा, प्लीज बताएं। कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ।
1: हाँ, ये इनका अच्छा क्वेश्चन है। लोग बाग काफ़ी परेशान है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से। नी में पेन बहुत कॉमन है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर आजकल तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 30 या 35 साल से ही लोगों में मैं काफ़ी देखता हूँ नी पेन की समस्या आ रही है। पर ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें ग्रेड होता है। अगर ग्रेड सेकेंड या ग्रेड थर्ड है तो मेडिसिन का इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। जो अगर कोई भी पेशेंट नी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उनको दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक, अपना एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे रखना है उनको, और दूसरा पॉइंट कि अपने फुटवेयर में चेंजेस करने हैं। अपने फुटवेयर में अपने पैरों के लिए एक इंसोल बनवाएं, उसमें लेटरल वेज लगवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जहां से गैप रिड्यूस होता है वो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और हमें वॉकिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन तो हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, यही इसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपको पता है कि नी रिप्लेसमेंट आजकल तो बहुत ही अच्छा और रोबोटिक तरीके से होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आसानी से करा सकते हैं।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है अनीता, ये लिखती है, माई एज इज 47, आई एम ए हेल्दी फीमेल, आई एम अ रेगुलर हाइकर ट्रैकर। वॉट इज द आइडियल वेट एंड सोल टाइप ऑफ शूज दैट शुड बी वोर्न एज ट्रैकिंग शूज आर वेरी हैवी एंड हार्ड।
1: हाँ, ट्रैकिंग वालों को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको हाई एंकल शूज कैरी करना होता है और वो काफी हैवी हो जाता है। तो अक्सर इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि ट्रैकिंग में हैवी शूज ही चाहिए होता है, लाइट वेट शूज इतना कंफर्टेबल रहेगा नहीं, ना ही इतना वो प्रेशर टॉलरेट कर पाता है। तो इन लोगों को एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पैर के हिसाब से एक इंसोल बनवाना चाहिए, तो कि हम प्रेशर को शिफ्ट कर सकें। और ऐसे केसेस में इनको ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा हल्का, अगर लाइट वेट शूज अगर ये कैरी कर सकते हैं, कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो लाइट वेट शूज करते हैं, तो वो इनको परचेज करना चाहिए मेरे हिसाब से।
0: तो जो ट्रैकिंग करते हैं कुछ स्पेशल फुटकेयर है इनके लिए, क्योंकि इतने ट्रैकिंग करने के बाद आई थिंक
1: ट्रैकिंग में एंकल इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनको हाई एंकल शूज दिया जाता है। तो लिटिल बिट थोड़ा हैवियर होता है, पर ऐसे केसेस में इनको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छी करनी चाहिए सो देट कि वो उतना वेट लिफ्ट कर सकें। और उसके अंदर एक जो मैंने बताया ऑर्थोसिस, कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स ये पहनेंगे तो काफी काफी बेहतर रहेगा इनके लिए।
0: अगर जैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं कभी एकदम मेजर कुछ फुट में प्रॉब्लम हो जाए या एंकल ट्विस्ट हो जाए तो इमिडिएटली कुछ कर सकते हैं?
1: हाँ, सभी ट्रैकर्स जो भी ट्रैकिंग करने जाते हैं वो अपना साथ में रेमेडी जरूर रखते हैं, क्रैप बैंडेज या अदर टाइप ऑफ मेडिसिन भी रखते हैं वो, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जो छोटा सा आता है हम अपने साथ कैरी करते हैं ट्रैकिंग में। तो वो सब लोग नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए,
0: जो रेगुलर बेसिस पर जाते हैं वो तो रखते
1: वो
0: होंगे,
1: रखते
0: लेकिन
1: जो
0: फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो नहीं रखते, उन्हें रखना चाहिए।
1: हाँ, उन्हें रखना चाहिए। लास्ट टाइम मैं भी गया था तो मैंने भी ये चीज रखी थी, वो जरूरी हो जाती है। जी,
0: एक और मैसेज है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं शाम तक बंद करिए।
0: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: ये तो ऐसे है, 7-8 साल से पार्किंसन की बीमारी है ते, और शुगर मेरी 60-65 ऐसे आती है ते, ये डॉक्टर साहब से।
1: इनका क्वेश्चन है कि पार्किंसन की इनको प्रॉब्लम आ रही है। हमें आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो समझ में आए हैं वो पार्किंसन से रिलेटेड हैं। तो पार्किंसन के केस में ऐसा होता है, ये वो बीमारी ही ऐसी है कि जनरली एक पर्टिकुलर एज आफ्टर 50-60 के बाद ही ये होती है, और मसल्स को धीरे धीरे धीरे धीरे वीक कर देती है, जिसमें कि वॉकिंग बहुत ही डिफिकल्ट होने लगती है, हमारे हाथ पैर चलते हुए कांपने लगते हैं। तो उसके लिए तो एक ही रेमेडी होती है कि जितना हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करें, खुद से करें या अपने आसपास में किसी कोई फिजियो डॉक्टर है तो आप उनसे एक्सरसाइज करवाएं, पर एक्सरसाइज ही उसकी एक रेमेडी है। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो हम मसल्स को वीक होने से रोक सकते हैं।
0: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब शूज कौन से पहनने चाहिए, कम लेस वाले या बिगर लेस वाले, कैसे फुट होने चाहिए और नंबर से बड़ा शूज होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? अमर रमेश कुमार खत्री।
1: ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने बताया भी कि हमें शूज लेसेस वाले पहनने चाहिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि हमें अपने पैर के साइज से एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए, ये सेम साइज का पहनना चाहिए जी। अगर आपको फुट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टोज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सेम साइज में या टाइट शूज नहीं पहनना चाहिए, उस केस में हमें एक नंबर बड़ा शूज पहनना चाहिए। कुछ पर्सन हाईली एक्टिव होते हैं या कुछ एथलीट होते हैं तो उनको सेम साइज का शूज पहनना चाहिए। तो फुट की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है कि पैर में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमें उस पे डिसीजन लेना होता है कि हमें एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए या सेम साइज का पहनना चाहिए।
0: लेकिन कई बार होता है कुछ फुट के साइजेस ऐसे होते हैं कि वो एग्जैक्ट साइज मिलता होता नहीं है, तो उसके लिए कई बार सोल लगा के या पीछे लगा के तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता है।
1: ये गलती हम बहुत करते हैं कि

0: अच्छा थोड़ा सा लूज शूज ले लेंगे और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सॉल पतावा डाल देंगे, तो जो कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक्स्ट्रा पतावा डालने से क्या होता है कि हमें हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है, जो हमारी हील पे प्रेशर आना चाहिए था वो हमारी टूज की तरफ आ जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं नी पे इम्पैक्ट काफ़ी ढीलने को मिलता है या लोअर बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हमें टॉलरेट करनी पड़ती है। तो ऐसा ना करें, तो जितना कोशिश हो सकता है कि अपने ही साइज का, या अगर आपको फुट में आगे पंजे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर बड़ा शूज ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो अपने साइज का कोई भी मोची से फुटवेयर डिजाइन करवा सकते हैं सेम साइज में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर के हिसाब से शूज नहीं मिल पाता है। जी
1: तब की होगा कि हम शूज अगर हम पहन रहे हैं तो हम ये सोचेंगे नहीं कि शूज की वजह से हमारी नी में पेन आ रहा है।
0: हाँ, ये नहीं सोच पाते हैं हम,
1: हम सोचेंगे अगर शूज में प्रॉब्लम है तो नीचे फुट में प्रॉब्लम आएगी, नी तक तो हम सोचेंगे भी
0: नहीं
1: नहीं।
0: सोचते हैं बिल्कुल। अगर ऐसा हो भी रहा है कि अगर हमारे साइज का शूज नहीं मिल रहा है, या तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ ऐसा डिजाइन करो, हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इससे भी हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। वो लिखते हैं डॉक्टर साहब, पैरों के दर्द का व्यक्ति के बॉडी वेट से क्या संबंध है? क्या ज्यादा वेट वालों को पैरों की समस्या ज्यादा होती है? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: ये हाँ, गुड आफ्टरनून सर, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ये आके पूछते भी हैं। जी कुछ केसेस में जी बिल्कुल, वजन बहुत मैटर करता है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी का वेट ज्यादा है तो हमारे पैरों पे दबाव उतना ही ज्यादा आएगा, उतना हमारे घुटने और कमर पे भी आएगा, जिससे कि हमारी वॉकिंग कम हो जाती है। जितना वॉक हम कम करते हैं हमारी मांसपेशियां भी वीक होने लगती हैं, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट हमारे पैर पे पड़ता है। तो हमें अपने बॉडी के वेट का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सकता है कम से कम हम अपना बॉडी का वेट, और जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर होता।
1: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। ये लिखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये लिखते हैं मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा यहाँ नीदरलैंड में ट्रीटमेंट चला लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इंडिया जाकर ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ली, एक साल बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा फिर स्किन ड्राई होकर जख्म हो गए हैं। पेन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम दोबारा हो गई है? प्लीज बताने का कष्ट करें। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: जी मैम, जो उन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ इंडिया में आके कराया, वैसे तो हम इंडिया वाले मेडिकल फैसिलिटीज में काफी हाई है, लेकिन ये अच्छी बात है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों का फिर से ध्यान नहीं रख रही हैं। अब उनको वही पैरों का ध्यान रखने की जरूरत है, जो ड्राई स्किन हो रही है उसको प्रॉपरली वो वॉश करें, उस पर लोशन लगाएं, और लोशन भी कई सारे टाइप के आते हैं, फिर उसको प्रॉपर वॉश करके कॉटन टॉवल से उसको ड्राई करें, तो उस चीज का वो ध्यान रखें तो प्रॉब्लम वो दोबारा नहीं होगी। अदरवाइज अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
1: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं मनीषा रांची से। ये लिखते हैं पैरों में जलन रहती है, क्या विटामिन B12 से फायदा होगा?
0: हाँ बिल्कुल, विटामिन B12 और विटामिन B6 से पैरों की जलन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना विटामिन B12 और विटामिन B6 का इतना रोल नहीं होगा पैरों की जलन में। आपको एक चीज करनी चाहिए, अपने पोडाइट्रिस्ट होते हैं फुट एंड एंकल के डॉक्टर जो स्पेशली फुट को देखते हैं, तो आप उनको कंसल्ट कीजिए और इस जलन के हिसाब से अपने आपको एक ऑर्थोसिस बनवाना चाहिए, जिसके शूज के अंदर डाल के आप वॉक करें तो पैरों की जलन उससे काफी हद तक कम हो जाएगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा।
1: नेक्स्ट मैसेज हमें लिखते हैं शैलेंद्र कुमार सुमन फ्रॉम बिहार। ये लिखते हैं हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज लिखते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी माँ को लेफ्ट लेग हील पेन होता है, अब राइट लेग में भी हील पेन होने लगा है, प्लीज एडवाइस। हील पेन की प्रॉब्लम है।
0: हाँ, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि हील पेन कई सारे टाइप के होते हैं, तो इनको हील पेन किस टाइप का है, और पहले एक में होता था फिर दूसरे लेग में होने लगा। तो वो पहले एक लेग में जब पेन आ रहा था तो उन्होंने अपने बॉडी का वेट दूसरे वाले लेग पे शिफ्ट कर लिया। अब एक लेग अपने लिमिटेड ही बॉडी वेट केयर कर सकता है, जब जो कैरी कर सकता है, अब जरूरत से ज्यादा दूसरे पैर पे बॉडी वेट आएगा तो ऑब्वियसली वो प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको जो हील में पेन आ रहा है वो प्लांटर फेसाइटिस का पेन आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली आप हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जितना हो सकता है, पैरों की अपनी काफ की स्ट्रेचिंग करें, एक्लिस टेंडन की स्ट्रेचिंग करें, और गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें, और एक कंफर्टेबल सॉफ्ट फुटवेयर पहने जो कि हम जिसमें पहन के हमें पेन कम हो, तो इसको हम इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हील पेन के केस में बहुत ज्यादा मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती है। जी
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें कॉमन फूड प्रॉब्लम्स पे। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा

0: मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा गाना हमेशा बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग महसूस होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की, तो एक मैसेज है हमारे पास, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ कॉलर भी है, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार सर
1: जी, मैं अमीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी टोनी की लगा।
0: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
1: मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्दियों में तो आप पैर फट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी पैरों में दरारें आ जाती हैं, फट जाते हैं, इसका क्या कारण है?
2: हाँ, ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। ऐसा होता है कि सर्दियों के टाइम में अक्सर हमारी एड़ियों में दरारें आ जाती हैं, एड़ियां फट जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर सर्दियों में ठंडे पानी से अपने हाथ पैर ना धोके गर्म पानी से धोना पसंद करते हैं। तो हम ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो भी हमारी हील के लिए ठीक नहीं है, पैरों के लिए ठीक नहीं है, और हमारी वॉकिंग काफ़ी कम हो जाती है, हम चलना कम पसंद करते हैं सर्दियों में। इसके अलावा हमारा वाटर इनटेक जो सबसे ज़रूरी है वो हमारा कम हो जाता है। हम गर्म पानी से भी अपने पैर धोएं तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी पानी की कमी होगी तो फिर क्या है, बॉडी हमारी मसल्स से वाटर यूटिलाइज करने लगती है। तो सबसे पहले हमारी हील पे ही उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सारा बॉडी का वेट हमारी हील पे आया। अब हील पे बॉडी वेट आएगा तो वहीं से क्रैक स्टार्ट होना। अगर वो बॉडी वेट हमारा हाथ पे आया होता तो हमारे हाथ से वो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती। तो ऐसा इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें, पानी पिएं और गर्म पानी से अपना हील को या पैरों को वॉश ना करें, नॉर्मल पानी से वॉश करें। इसके अलावा आप उसको ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर्स का यूज कर सकते हो। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उनका यूज करें।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि पैरों को वॉश करें, क्लीन रखें, और अगर हम बात करें फुट मसाज की, तो फुट मसाज कराना कितना ठीक है और कितनी देर कराना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसका?
2: हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग जनरली फुट मसाज कराते हैं और अच्छा भी लगता है, फुट मसाज कराने से काफी आराम भी मिलता है, पर सब लोगों को फुट मसाज नहीं करानी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको फुट मसाज करानी चाहिए, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और उस फुट मसाज में भी ये चेक किया जाता है कि प्रेशर कितना रखना है हमें। हमें सुपरफिशियल प्रेशर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पैरों पे, वरना अदर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं या हमारी मसल्स थोड़ा वीक होने लगती हैं। तो हमें सुपर

0: मसाल्स की जरूरत होती है। ज्यादा दबाव की जरूरत तब होती है जब आप 60 साल से ऊपर के हैं या 70 साल के पेशेंट्स हैं, तो आपके पैरों की मसल्स वीक हो गई हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा हाई कंप्रेशन चाहिए होता है पैरों की मसाज के लिए। जी
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, वेरिकोस वेन्स के लिए क्या करना चाहिए, सर्जरी से प्रॉफिट होगा क्या? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
0: जी, वेरिकोज वेंस आजकल बहुत बड़ा एक इशूज़ है। लोग काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं और कम उम्र में सफ़र कर रहे हैं। पहले हम देखते थे या पढ़ते थे कि 60 साल या 50 साल के ऊपर के पर्सन को ही वेरिकोज वेंस होती थी, लेकिन आजकल मैं 30 साल में, इवन 25 साल में भी काफ़ी काफ़ी सीवियर वेरिकोज वेंस देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि आप सर्जरी कराओगे तो दोबारा फिर हो सकती है, या फिर आप अगर आपके डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये दोबारा नहीं होगी, तो आप करा सकते हो। अदरवाइज के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज कर सकते हो टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, जो हमारे पैरों से ब्लड इंक्रीज होकर हार्ट की तरफ तेजी से जाएगा, इन्फ्लाम जो सूजन होती है पैरों में वो काफी हद तक कम हो जाएगी, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे हील्स की, तो कई बार होता है कि हम हाई हील्स पहन रहे हैं, आजकल फैशन भी है, लड़कियां कैरी भी करती हैं, और उसमें अगर लंबा चलना पड़ जाता है तो कई बार होता है फुट बिल्कुल अकड़ जाता है।
0: जी,
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: हाँ, हील्स पहनने से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, पैरों में अकड़न भी फील होती है। तो हील्स में क्या होता है, जैसे हम अगर 2 इंच या 3 इंच की हील्स पहनते हैं, तो हमारी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे घुटने के आगे आ जाती है, हमारे नी के, तो जिससे कि सारा प्रेशर हमारी टोज पे आ जाता है, हील से प्रेशर हट जाता है। तो उस केस में जो हमारे पैरों के पीछे काफ मसल है और हमारा पीछे टेंडन है, इसे हम एक्लियस टेंडन बोलते हैं, जो घुटने के पीछे है, तो वो मसल्स क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होकर वो टाइट हो जाते हैं। अब आपने लंबे समय तक हील्स पहनेगी तो मसल्स टाइट हो जाएंगे, तो पैरों में अकड़नपन रहती है। फिर हमें पंजे में आगे दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अब हमारे पंजे पे आ रहा है। तो इसलिए हमारा सबसे सजेशन यही रहता है कि हमें हील्स को जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। अगर हील्स आपको पहननी हुई है तो 1 इंच की हील्स सफिशियंट है, और वो आइडियली भी है कि 19 मिलीमीटर या हम 2 सेंटीमीटर तक का पीछे से हील हाइट वाला शूज या सैंडल पहन सकते हैं। ये हमारी बॉडी के बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये लिखित में है।
1: अच्छा, जैसे कि आपने अभी टोज की भी बात करी, तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है इनग्रोइंग टोनेल।
0: जी,
1: तो ये क्या है? और
0: ये प्रॉब्लम तो मैं ये कह सकता हूँ कि 70% गर्ल्स इस प्रॉब्लम से सफर करती हैं, नॉट बॉयज।
1: तो क्या वजह है इसकी?
0: तो उसकी वजह हमारे फुटवेयर्स हैं। गर्ल्स क्या करती हैं, फ्लैट बेलीज या पॉइंटेड बेलीज ज्यादा पहनती हैं, जिसकी वजह से हमारे नेल इनग्रो होते हैं और वो हमारी स्किन में ही अंदर की तरफ ग्रो होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से वो काफी पेनफुल हो जाते हैं। या कुछ केसेस में क्या होता है कि पैरों की शेप नेल को अच्छा दिखाने के लिए गर्ल्स उनको डीप कट कर लेती हैं, है ना, ताकि आपको पता है कि गोलाई में अच्छा लगे, सारा कॉस्मेटिक अपीरियंस होता है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं
1: जी।
0: तो जब वो ज्यादा डेप्थ कट हो जाता है तो फिर से वो ग्रो होगा, नेक्स्ट टाइम वो उतना डेप्थ उसको कट नहीं कर पाते हैं, तो वो स्किन में ग्रो कर जाता है, क्योंकि एक बार हमने कहीं से नेल को कट किया वहां से उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो इसीलिए इनग्रोइंग टोनेल के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर किसी को इनग्रोइंग टोनेल की प्रॉब्लम है तो वो अपने पोडाइट्रिस्ट या अपने स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट करें उसको निकलवाने के लिए, ना कि खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करने में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये मेरा इन पेशेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी पहले बोला था, अभी बात करते करते एक्लियस टेंडन, तो ये समस्या क्या है?
0: एक्लियस टेंडन भी एक ये काफी ऐसा पेन है कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, और ये पेन के सिम्टम्स ही हमें ऑब्जर्व कराते हैं कि ये पेन जो है वो एक्लियस टेंडन का है या किसी और चीज का है।
1: क्या सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
0: इस में एक्लियस टेंडन में हमेशा जो पेन आएगा वो वॉकिंग में आएगा, और एड़ी के पीछे दर्द आता है, जो हमारे एड़ी के पीछे वाला जो टेंडन होता है वहां पेन आएगा। जब भी हम चलेंगे हमें पेन महसूस होगा, सिटिंग बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, हमें कोई दर्द नहीं आएगा। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि जितना ऐसे केसेस में, बिल्कुल ऐसे केसेस में हम हील वाला शूज हमें पहनना चाहिए, तो हमें टेंडन का फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं, उसका खिंचाव कम कर सकते हैं, उसको ठीक होने के लिए हमें टाइम मिल जाता है, तो आराम से हम ठीक कर सकते हैं उसको। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हील पेन की, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग कई कई साल से इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं।
1: इसलिए हमें अपना शूज हो गए चाहे हील्स हो गए बहुत देख के चूज करना चाहिए और कैरी करना चाहिए।
0: जी जी जी, पर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी परचेज करो और चलो
1: फैशन
0: फैशन। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि एड़ी की हम बात कर रहे थे, तो एड़ियां जैसे विंटर्स आती हैं या मौसम बदलते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? फिर हम क्रीम लगाते रहते, नहीं होती कई बार हील।
0: अभी हमने वही बताया जो अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारी एड़ियां फट जाती हैं।
1: जी,
0: तो मैंने उनको बताया था कि हमारा

0: तो इसलिए होता है कि जितना हो सकता है पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, पर हमारी बॉडी को तो वाटर चाहिए, तो हमारी मसल से इनटेक लेने लगते हैं, और जब मसल से पानी जाएगा और हमारी हील पे ज्यादा प्रेशर आता है तो वहां से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में विटामिन B12, विटामिन B6 लें और पानी का भरपूर मात्रा में। और ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गर्म पानी का यूज़ ना करें उसको वॉश करने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी का यूज़ करते हैं कि हम एड़ियों को साफ कर लें,
1: सॉफ्ट रहेंगी,
0: बिल्कुल, तो वो गलती ना करें। आप नॉर्मल वाटर लें, उससे क्लीन करें, और जो कॉटन टॉवल होती है उससे उसका ध्यान रखें, फिर उस पर लोशन अप्लाई कर सकते हैं आप।
1: तो कई बार कहते हैं फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है पैरों में, तो क्या उसके लिए भी सेम केयर है या डिफरेंट है?
0: नहीं नहीं मैम, उसके लिए डिफरेंट केयर है। फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस अलग होते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन तब
1: वो किस वजह से हो जाता है?
0: फंगल इन्फेक्शन तब हो जाता है कि हम अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा है, बहुत ज्यादा स्वेटनिंग होती है जिन लोगों को, और वो ध्यान नहीं रखते हैं, या हम किसी के फैमिली मेंबर में किसी और का हमने शूज या सॉक्स पहन लेते हैं, है ना, हमारी बहुत वॉकिंग होती है या हमारा बहुत टाइट फुटवेयर है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं अक्सर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना ही शूज या सॉक्स पहनने चाहिए, और वो भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन। इसके अलावा हमें अपने, अगर किसी को ये स्वेटनिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उसको डेली बेसिस पे सॉक्स चेंज करने चाहिए, और बीच बीच में निकाल के अपने पैरों को हवा लगानी चाहिए, सो दैट कि वो स्वेटनिंग जो होती है उसको प्रॉपर वो ड्राई कर सके।
1: कई बार होता है जो लोग वर्किंग है, या तो उनका काफी देर तक बैठने का काम है या फिर काफी लंबा चलने का काम है
0: जी,
1: तो वो अपनी फुट केयर कैसे करें?
0: हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है।
1: जो बैठे हैं तो उनका वॉकिंग नहीं हो पा रही, और जो चल रहे हैं उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा।
0: हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक है आपने। जिन लोगों की लॉन्ग सेटिंग होती है उन लोगों को अक्सर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और या पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे केसेस में लॉन्ग सेटिंग को अवॉइड करें। बीच में अगर जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप पहले ही 2 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करके दोबारा आके बैठ जाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे पैरों के लिए। या आपकी लॉन्ग सेटिंग है, आप नहीं उठ सकते हैं, तो सामने कोई भी छोटा स्टूल रख के उसके ऊपर अपने पैर रख के बैठ सकते हैं, सो दैट कि आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रह सके। सेम थिंग वॉकिंग वालों के लिए, वॉकिंग वालों के लिए थोड़ा बल्कि इजी हो जाता है, क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं। सिर्फ वो वॉकिंग में क्या उनकी मसल्स यूज हो रही है, पर मसल्स तो एक्टिव है, वो वीक नहीं होगी। सिटिंग में हमारी मसल्स बैठे बैठे वीक हो जाती है, तो इसलिए वॉकिंग वालों को बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और वॉकिंग के केस में मसाज कराना, अभी आपने पूछा था मसाज कराना चाहिए, वो 10 से 15 मिनट की मसाज ले सकते हैं, हेल्दी मसाज, जिसे हम अपना मस्टर्ड ऑयल जो सरसों के तेल के से मसाज करा सकते हैं जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो अगर किसी के अगर पैरों में दर्द है और वो कहीं बाहर है या कुछ है, तो उसके लिए केयर कैसे करें अगर पैर अकड़ जाते हैं, कई बार क्रैम्प आ जाता है?
0: हाँ, मसल्स क्रैम एक आम समस्या है, आप कभी भी देखेंगे, तब होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से, या हमारी बॉडी में काफी वीकनेस होगी उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि नस में नस चढ़ गई है, है ना। ये बहुत कॉमन है, और ये अक्सर होता है सोते हुए, या हम बैठे हैं तो एकदम बैठ के उठते हैं, वो तब होता है। तो ये पानी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, जितना हम हो सकता है पानी पिए और उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, और सॉल्टेड वाटर पीने की जरूरत है जी।
1: इसी से रिलेटेड एक मैसेज भी है हमारे पास, शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। ये लिखते हैं, आई एम 73 years ओल्ड एंड डायबिटिक विद गुड कंट्रोल, आई हैव क्रैम्प ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू, स्मिता नागर। हाँ, जवाब इनको मिल गया होगा,
0: इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
1: डॉक्टर साहब, ये तो हमने कॉमन फूड प्रॉब्लम्स के बारे में, की कैसी कैसी प्रॉब्लम हो जाती है और क्या क्या सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, क्या कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं कि जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई बार चलते चलते हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, वॉक करते रहते हैं, तो उस केसेस में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। कई बार हमारे प्रेशर ओवर प्रेशर हमारी टोज पे आ जाता है, तो हमारे नेल्स ब्लूइश होने लगते हैं, तो भी हम उन केसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हील में पेन, एक्यूट पेन आ गया है, आप वेट नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी नी में पेन आ गया है, या आपके फोरफुट में पेन आ गया है, तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। आप इन सब सिम्टम्स को अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके शेयर करें, कंसल्ट करें, और इनको जितना हो सकता है जल्दी अवॉइड करें, क्योंकि फुट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, जितना आप इग्नोर करोगे उतनी ही बड़ी होती जाती है, और उसको बाद में ट्रीट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है।
1: कुछ ऐसी फुट एक्सरसाइज या फुट केयर डेली रूटीन है जो मैं अपने पैरों को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि उसी पे हमारा पूरा शरीर का वेट रहता है, हमें डेली में करनी चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, हमें डेली में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो कि हमारे पोस्चर को काफ़ी हद तक बेहतर रखती है। अगर हमारा पोस्चर ठीक है, फुट की मसल की स्ट्रेंथ ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमारा बॉडी बैलेंस ठीक हो जाता है। तो बेसिकली हमें योगा भी करना चाहिए, लेकिन योगा करें या ना करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें जो कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा स्वस्थ पैरों के लिए फुट केयर फॉर्मूला है क्या?
0: नहीं मैम, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सब लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, पहले लोग इतना केयर नहीं करते थे पैरों की, लेकिन अब करते हैं। तो लेकिन यही है कि आप ज़रूर अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा वॉक करें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वॉकिंग ही हमारी मसल्स को एक्टिवेट रखती है।
1: पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं पानी पीना हमारे फेस पे ग्लो लाएगा, लेकिन हम पैरों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हम नहीं सोचेंगे।
0: जी जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, पैरों की छोटी सी तकलीफ को छोटा समझकर टालिए मत, क्योंकि हमारे हर सफर की शुरुआत इन्हीं कदमों से होती है। इसलिए पैरों में होने वाले दर्द, सूजन या किसी भी बदलाव को मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें। सही जूते चुनें, साफ सफाई का ध्यान रखें और परेशानी लगातार बनी रहे तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, क्योंकि कदम स्वस्थ होंगे तभी जिंदगी का सफर भी सहज और खूबसूरत होगा। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत आभार मैम।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अपने पैरों का रखें थोड़ा ध्यान, थोड़ी देखभाल और बढ़ते रहिए बेफिक्र अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
9: पता का चाय, गजब का स्वाद।
10: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
11: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
10: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
12: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
13: इग्नोर नहीं, याद करो।
14: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
15: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता।

0: सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार, लीजिए सुनिए शाम 4 बजे के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। मंगलवार 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी। कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम आज से लागू हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावूर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन परिसर का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए खुला रहेगा। उद्यान में अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित पिंक टिकट सुविधा को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ओडिशा की बैतरणी नदी में बाढ़ से उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में

शुरू हो रही है, प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। तो ये थे शाम 4 बजे तक के मुख्य समाचार, और अब बारी है प्रोग्राम रेनबो जीनियस की। जी हाँ,

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपकी वाणी आकाशवाणी में मैं संजीव श्रीवास्तव, संजू अल्फा जैन प्रोग्राम के तहत रेनबो जीनियस प्रोग्राम में आपके साथ रहूंगा। लेकिन फिलहाल पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। डिप्रेशन क्या है, जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलित होना, गर्भावस्था और अनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है, दैट मीन्स हेरिडिटरी। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहना तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियां धीमी होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो DSM-5 यानी परीक्षण तकनीक के अनुसार इसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द एक्सेट्रा। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोगी चिकित्सा से मिल सकती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध है। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिक्स ट्रीटमेंट। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचय या आपको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस व्यक्ति

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। इस समस्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। सुबह शाम टहलने जाएं। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने न सुने। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बात किसी विशेषज्ञ या फिर साइकोलॉजिस्ट से करें या फिर काउंसलर से करें। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्ते से गुजरें। अगर आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत खुश हो। सिर्फ एक्टिंग करने में क्या जा रहा दोस्तों, थोड़ी सी एक्टिंग आपके लिए, खुद के लिए भी करिए। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता। हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाएं। हो सके तो कुछ कोर्स ज्वाइन करें। योग का सहारा लें और प्राणायाम रोज करें। राइट ब्रीथिंग विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। रात में सोने के एक घंटे पहले टीवी बंद कर दे और अपना मोबाइल भी बंद करे। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचे। Have a deep and nice sleep. Depression एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। Depression पागलपन नहीं होता है और depression के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। Depression के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यूं तो डिप्रेशन की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें और जितना हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन कुछ बिंदु है जो बहुत महत्व रखते हैं। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनती है, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना। ऐसे फैसले अकेले न करें। हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थे डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी हाँ, इस प्यारी सी धुन के साथ वेलकम है आपका। शाम के 4:14 हो गए हैं, 15वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है। प्रोग्राम है अल्फा जेन और इसके में रेनबो जीनियस के साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। तो कौन कौन आज जीनियस बनना चाहता है, कौन कौन हमारे पूछे गए सवालों का सही जवाब देना चाहता है, इसके लिए आप इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। जो सवाल हम पूछें उसके लिए तुरंत फ़ोन लाइन मिलाइए, सही जवाब दीजिए और बन जाइए रेनबो जीनियस। अगर लगातार आप 5 सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस। और अगर फिर भी आपको नहीं लगता कि आपने कहीं गलती की है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने से कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारे से बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस। और अब बारी है सवालों के पूछने की, यानी हम पूछेंगे प्रश्न, हम पूछेंगे सवाल, हम पूछेंगे क्वेश्चंस, और आपके उत्तर कितने सही होते हैं इसकी बिल्कुल जानकारी आपसे हम लेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि किस भारतीय शहर को झीलों का शहर यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और एक और बात की अपने शानदार लेक पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका, बताइए।
2: कमरान रशीद, डिस्ट्रिक्ट सिवान।
1: हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से आप बोल रहे हैं, कामरान रशीद साहब
2: जी।
1: तो अब मैं सवाल पूछूंगा, आप तैयार हैं? बिल्कुल
2: जी।
1: जी, तो मैंने पहला सवाल पूछा है कि किस भारतीय शहर को झीलों का शहर यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है।
2: ऑप्शन दे सकते हैं?
1: पहला नहीं, ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर देना होगा। जल्दी बताइए, आपके पास 4-5 सेकंड। गलत जवाब। ये मैंने पहला सवाल पूछा और इन्होंने गलत जवाब दिया। चलिए अब अगला कॉलर ले लेते हैं, कौन है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए प्लीज। कहाँ से बोल?
3: मेरा नाम डॉली है।
1: डॉली कहाँ से बोल रही हो आप?
3: सर मैं दिल्ली
1: से बोल रही हूँ। डॉली पढ़ती हैं अभी आप? अच्छा डॉली, अब प्रोग्राम का आपको फॉर्मेट पता है, हम सवाल पूछ रहे हैं, आपको आंसर देना है 5 सेकंड के अंदर में, ठीक है। किस भारतीय शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, बताइए, जल्दी बताइए 5 सेकंड।
3: क्या सर?
1: किस भारतीय शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, जल्दी बताइए। हाँ जी, किसको बताइए?
3: आगरा।
1: गलत जवाब डॉली, आगरा को नहीं कहा जाता। चलो कोई बात ना, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। तो अभी दो लोग हमारे पास आए और दोनों ने बिल्कुल जो सवाल अपने बहुत बड़ा आसान सा एक सवाल पूछा है मैंने, तो भाई रेनबो जीनियस बनना है तो उसको लो, आपके लिए बहुत ही आपको थोड़ा सा जो जीके है, जो आपका जनरल अफेयर्स के जो सवाल हैं उसमें आपको, करंट अफेयर्स के सवाल में भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल का कि आप हमें कॉल करिए और हम आपसे पूछते हैं सवाल। लेकिन फिलहाल एक और प्यारा सा नगमा प्रोग्राम रेनबो जीनियस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और यह है प्रोग्राम जी रेनबो जीनियस। और अभी हमने सवाल पूछा कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। अभी तक दो लोगों ने हमसे बात की लेकिन सही जवाब नहीं दे पाए। अब देखते हैं अगला जो जवाब देने के लिए हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, नाम बताइए।
1: नमस्कार जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से।
0: अच्छा जी, हाँ तो रामधारी अवाना जी, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मैंने पहला सवाल पूछा कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं।
1: जी उदयपुर को कहा जाता है।
0: बिल्कुल जी, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है।
1: साथ शायद आपने एक प्रश्न उम्मीद पैलेस के संदर्भ में पूछे, यहाँ पर काफी फेमस है ये।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है। इसको लेक कहते हैं ना, मतलब लेक पैलेस सिटी कहते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर महल है यहाँ। अच्छा दूसरा सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं
1: जी,
0: भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या था, बताइए। भारत के चंद्रयान 3 का जो मिशन के लैंडर मॉड्यूल का नाम,
1: लैंडर का,
0: हाँ लैंडर,
1: विक्रम,
0: लैंडर मॉड्यूल का नाम बताइए।
1: लैंडर का नाम तो विक्रम है सर।
0: हाँ नहीं, मैंने लैंडर मॉड्यूल का नाम पूछा। अच्छा एक और अगला सवाल बताइएगा मुझे कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी।
1: पीटी उषा।
0: बिल्कुल राइट सर। अगला सवाल, हमें किस नदी को बंगाल का शोक यानी सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है।
1: दामोदर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है।
1: सोलर मिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट।
0: नो, यहाँ पर आप चूक गए। सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, बताइए।
1: आदित्य L1 है सर।
0: हाँ आदित्य L1, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ठीक है। हालांकि आपने पहला देखिए सवाल
1: वो मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा था,
0: रिकॉल कर रहे, लेकिन देखिए जब कभी इस तरह का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कॉल होती है, आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ चीजें जो हैं एक नंबर से ही
1: जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे सोलर मिशन, मैं ऐसे ही रिकॉल कर रहा था, सोलर मिशन ऑफ इंडिया।
0: अच्छा एक बार अपना नाम बताइए, एक बार अपना नाम बताइए।
1: रामधारी अवाना बात कर रहा
0: हूं। रामधारी अवाना, अवाना क्या करते हैं आप।
1: मैं हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगे यार। क्योंकि
1: सर बस साथ के साथ टाइम लगता
0: है, तैयारी
1: जी करते हैं। हाँ सर,
0: तो हम बिल्कुल यही कोशिश करते हैं, जो हमारे जो जीनियस हैं, हमारे जो जीनियस लोग हैं, जो हमारे यूथ हमसे जुड़े हैं, वो इसी तरह तैयारी करते रहे। आपको को बहुत बहुत तालियां मेरी तरफ से कि आपने बहुत अच्छे सवालों के एकदम से जवाब दिए हैं, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष भी आपको कि आप इस अपने फील्ड में, क्योंकि आप देश की सेवा में जुटे हैं, बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, उसको मैं समझ सकता हूँ। यहाँ बैठ के उसमें लगे रहिए और साथ में तैयारी करते रहिए, ताकि मैं आपको अगली बार जब सुनूं तो आप नेक्स्ट प्रमोशन के साथ मुझे मिलें।
1: धन्यवाद।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ अवाना साहब हरियाणा पुलिस से। तो गाना हम, जैसा कि हम हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, तो एक और प्यारा सा गाना हम आपको सुनवा देते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और आप प्रोग्राम है रेनबो जीनियस। मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, और देखते हैं कि अब लाइन पर कौन है। हेलो।
3: हेलो
2: जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
3: सर मेरा नाम प्रिंस है और मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा, आपका नाम प्रिंस है, नाम बहुत प्यारा है भाई। प्रिंस राजकुमार हैं आप और अमरोहा उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। अच्छा प्रिंस, सवाल पूछ रहे हैं रेनबो जीनियस में, जीके के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के, तो तैयार हैं आप?
3: जी सर, कोशिश करते हैं।
2: कोशिश करते हैं तो ठीक है। पहला सवाल आपसे ये है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, बताइए। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते?
3: सर आई थिंक 22।
2: गलत जवाब है प्रिंस। तैयारी मजबूती के साथ करो, क्योंकि अगर इस तरह की तैयारी करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, है ना। चलो बाय, मैं देखता हूँ कि अब अगला कॉलर हमारे पास में कौन है, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला कॉलर कौन है हम देखते हैं। हेलो।
4: हेलो नमस्कार सर।
2: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
4: जी मैं संजय बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
2: संजय दिल्ली से कहाँ से बोल रहे हैं
4: सर? आजादपुर।
2: आजादपुर से। संजय क्या करते हैं, पढ़ते हैं?
4: नहीं सर, इस टाइम में तो कुछ भी नहीं करता, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत पहले हो चुकी है।
2: अच्छा, तो सवाल स्ट्रगल कर रहे हो, तो कम से कम जीके की जानकारी आपको है कि नहीं?
4: बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं तो आपके यहाँ लगातार खेलता रहता हूँ, 2 अगस्त को मैं जीनियस भी बनाता
2: बने हैं। तो एक सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं, चलिए बताइए, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते?
4: 2020 में सब स्वर्ण पदक तो नीरज चोपड़ा ने जीता था एक, उसके अलावा तो किसी ने नहीं जीता था, वो भी 2020 में हुआ था, कोरोना की वजह से एक साल डिले हो गया था।
2: मतलब कितना जीते, एक जीते, दो जीते, कितना जीते बताइए?
4: नहीं नहीं एक ही जीता।
2: एक जीता, सही सही सही आंसर है आपका। दूसरा सवाल बिल्कुल। अच्छा, मध्यकाल में बनी ग्रांड टंक रोड यानी का निर्माण किसने करवाया था?
4: जी सर जीटी रोड आप जिसकी बात,
2: हाँ जी जीटी रोड,
4: शेरशाह सूरी जी ने ये कलकत्ता से लाहौर तक बनवाया।
2: क्या बात है, क्या बात है। तीसरा सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, माफ कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
4: 35 से 35।
2: बहुत बढ़िया। अच्छा, आधुनिक तकनीक के संदर्भ में AI का पूरा नाम क्या है?
4: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम
2: बुद्धिमत्ता। अरे वाह वाह वाह। और एक लास्ट सवाल, फिर आप बन जाएंगे रेडियो जीनियस। 5 सवाल का आपने सही अगर जवाब दिया तो 4 आप दे चुके हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2024 का प्रतिष्ठित FIDE यानी फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता?
4: कैंडिडेट की सर वर्ल्ड चैंपियनशिप।

0: वैसे तो दोनों एक ही एक कैंडिडेट जीत कर ही वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं
1: जी।
0: तो ये दोनों में डी बुकेश है 18 साल के, अब तो 19 साल हो गए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है साहब, आपने तो बिल्कुल ऐसे जवाब दिए हैं और आप कहते हैं कि मैं तलाश कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तलाश जल्दी ही पूरी होने वाली है और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपको बनाते हैं हम अपना रेनबो जीनियस, आप को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा प्रोग्राम यूं ही सुनते रहिए।
0: ओके सर, ओके,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब ये थे हमारे पास में एक और रेनबो जीनियस जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने देखा कितना कहते हैं कि एक्टिवनेस के साथ उन्होंने सही जवाब दिया और साथ ही उसके से जुड़ी जानकारी उनको भी थी। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे इन सवालों के जवाब को ऐसे ही प्रॉम्प्ट होके दीजिए, क्योंकि आपको जो कंपटीशन की तैयारी करनी है उस तैयारी के लिए आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा। फिलहाल एक और नगमा आपके लिए हम सुना देते हैं अपने आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: जी हाँ, वेलकम बैक। प्रोग्राम है रेनबो जीनियस और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, सो अगला कॉलर हमारे पास कौन है, कौन है रेनबो जीनियस बनने के लिए तैयार, बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम श्रवण कुमार प्रजापति है। मैं राजस्थान के टोंक जिले से बोल रहा हूँ और अभी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, अभी एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आप।
1: जी,
0: देश
1: जी,
0: हमारा है भाई, आप कहीं से भी बोल सकते हैं।
1: जी, जी, जी,
0: अच्छा प्रजापति जी, श्रवण कुमार जी, हम सवाल पूछ रहे हैं जीके के, है ना, करंट अफेयर्स के।
1: बिल्कुल सर।
0: तो अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछने जा रहा हूँ, अगर बिल्कुल तैयार हैं आप।
1: जी बिल्कुल तैयार है सर।
0: ओके, कथकली नृत्य, ये किस भारत का शास्त्रीय नृत्य है, किस भारतीय राज्य का?
1: जी केरल राज्य का।
0: बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल
1: जी,
0: मानव शरीर के में रक्त को छानने यानी फिल्टर करने के लिए और जो आपका इसके अलावा जो आपका मूत्र बनाने का जो कार्य है, मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है?
1: लीहा।
0: जी
1: लीहा, यकृत, यकृत।
0: जी नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया।
1: किडनी होगी सर, किडनी।
0: अब तो गलत जवाब हो गया। चलिए चलिए, फिर कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर से आपको लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये थे हमारे पास प्रजापति जी। और आप अगला जो हमारे पास देखते हैं कॉलर कौन है साहब, हम उनको देख लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, बोलिए।
2: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर मेरा नाम जिया।
0: जिया
2: जी सर।
0: जिया कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: दिल्ली से।
0: दिल्ली से जिया, हमारा प्रोग्राम सुनती हैं आप?
2: हाँ जी, मैं सुनती हूँ सर।
0: अच्छा जिया, हम सवाल पूछ रहे हैं जीके के, आपको इंटरेस्ट है उसमें, पढ़ाई कर रही हैं?
2: सर कर रही
0: हूँ। सवाल पूछता हूँ, सबसे पहला सवाल आपसे, तैयार हैं? बिल्कुल
2: जी सर।
0: भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, बताइए। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा बॉर्डर लाइन का नाम क्या है?
2: पर नहीं
0: है। भारत और चीन को अलग करने वाली बॉर्डर होता है ना, उस बॉर्डर को अलग करने वाली जो बॉर्डर लाइन होती है, सीमा रेखा, उसका नाम क्या है?
2: मैकमोहन लाइन।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
2: न्यूयॉर्क में।
0: जी एक बार फिर से बताइए।
2: न्यूयॉर्क में।
0: अगला सवाल आपसे हम पूछते हैं, ठीक है? क्या नाम आपने बताया? जिया।
2: जिया,
0: ओके। जिया, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था?
2: लखनऊ में वो नवाब
0: के नाम याद नहीं आ रहा। हाँ जल्दी बताओ, बस 2 सेकंड तुम्हारे पास है। जी नहीं, गलत गलत जवाब हो गया। 2 सवाल का आपने जवाब दिया, और मेहनत करो और कोशिश करो कि आप अगली बार रेनबो जीनियस बन जाओ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और ये अगला देखते हैं हमारे पास कौन है कॉलर, जिनसे हम अगले सवाल पूछ लेते हैं। जी हेलो।
3: जी नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
3: जी मैं उमेश बात कर रहा हूं, हरियाणा से।
0: अच्छा उमेश जी हरियाणा से बोल रहे हैं। उमेश जी क्या करते हैं?
3: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी।
0: गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप हमारे रेनबो जीनियस बनना चाहते हैं?
3: हाँ कोशिश करेंगे।
0: हम सवाल पूछ रहे हैं और पहला सवाल का आपको जवाब देने के लिए आप तैयार हैं?
3: जी। तो
0: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी जो हमारे फ्रीडम फाइट हुई, उसका लखनऊ में किसने नेतृत्व किया?
3: लखनऊ से बेगम हजरत महल।
0: क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था?
3: 1942 में।
0: और किसने किया था?
3: महात्मा गांधी इसका प्रमुख नेतृत्व कर।
0: जी जी जी जी, अगला, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है?
3: ये रावी नदी के तट।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अगला सवाल, मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या है?

0: चंद्रगुप्त मौर्य।
1: क्या बात है। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आपने वो सही जवाब दे दिया तो आप हमारे बन जाएंगे रेनबो जीनियस। ठीक है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
0: ये 8 राज्यों से होके गुजरती
1: कौन कौन से राज्य हैं ये?
0: मैं गिनवाता हूँ आपको, लिखते रहिए। सबसे पहले राजस्थान, फिर
1: जी
0: गुजरात, फिर थोड़ा सा मध्य प्रदेश,
1: जी
0: फिर छत्तीसगढ़,
1: जी
0: झारखंड, पश्चिम बंगाल, और लास्ट के हैं ये त्रिपुरा और एक मिजोरम।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। ये हमारे सवाल में शामिल नहीं था, लेकिन हमने आपकी इस जीनियस जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसे देख के सवाल आपसे ये भी पूछा, जिसके लिए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। जी
0: आपने मिलान तो किया होगा ना जो
1: हाँ बिल्कुल, मैं
0: मैं
1: मिलान मिला मिलान के मैं आपको कैसे तालियां क्लैपिंग दूंगा। बहुत
0: जी
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारी तैयारी आपकी है, तभी आप एक जगह हैं। आप मेरी को मेरी एक रिकमेंडेशन है या एक सलाह भी है आपको कि अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जब आप समय निकालकर उनकी तैयारी जरूर करवाइए।
0: जी कोशिश करते हैं,
1: हाँ, अपने
0: कोई
1: घर में भी
0: अगर
1: बच्चे हैं
0: आसक्ति
1: उनकी,
0: होना चाहे जरूर सिखाते
1: और
0: हैं।
1: ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है उनको भी सिखाइए और उनकी भी तैयारी करवाइए।
0: जी धन्यवाद।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और शानदार जवाब देने के लिए। तो चलिए, आप देखा आपने अभी कितना खूबसूरती से ये जवाब दिया हमारे दोस्त ने। अब एक बहुत प्यारा नगमा हमारे आकाशवाणी के रेनबो के मुताबिक, जो हमारी परंपरा है कि हम आपको एक से एक बढ़कर नगमे भी सुनाते हैं।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम है रेनबो जीनियस, और 6 मिनट मेरे पास रह गए हैं। तो चलिए, इस 6 मिनट में हमसे कौन बात करके सही हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, ये क्विज हम उनसे पूछ लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, बताइए, नाम बताइए।
1: सर, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, अरविंद कुमार जी।
1: हाँ सर।
0: अरविंद जी, कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम, उसका सही अगर आपने जवाब दिया 5 सवालों के, तो हम आपको बना देंगे रेनबो जीनियस। ओके,
1: ठीक है सर
0: जी। पहला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है?
1: नर्मदा नदी का उद्गम स्थल
0: जहां से नर्मदा नदी निकली है, उद्गम स्थल, वो जगह का नाम क्या है, जल्दी बताइए।
1: अहमदाबाद में निकलती है।
0: जी नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। चलिए, आप अगले टाइम कोशिश कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको लेने। और अब देखते हैं कि अगला कॉलर हमारे पास कौन है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
2: से बात कर,
0: ये फोन लाइन इनकी कट गई हमारे पास, हमने कोशिश की कि ये हमसे मुलाकात कर लें, बात कर लें, लेकिन फिलहाल ये लाइन कट गई। खैर, अब वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा। अभी मैंने एक सवाल और पूछा था जिसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की हम बात करें तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें खास तौर पर बात यह है कि हम जीके के जो क्वेश्चंस हैं, जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स की जो बातें हम वो करते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं बच्चे, और प्रॉम्प्ट अगर आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ एक के बाद एक वन बाई वन अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप कितनी तेज़ी से उनका सही और सटीक जवाब दे पाते हैं, इसकी भी एक तैयारी है, थोड़ा सा एक कोशिश हमारी तरफ से रहती है आकाशवाणी रेनबो की तरफ से। सो आपसे मुलाकात होती रहेगी, हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाजत अगली मुलाकात के लिए, तब तक के लिए इस प्यारे से गाने के साथ नमस्कार।

एफएम रेनबो पर शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्राओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन परिसर का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। मंगलवार 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक होगी। कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम आज से लागू हो रहे हैं। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 27 अगस्त तक चलेगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ सिटी लाइट से, यानी कि शहर की हलचल से करवाऊंगी आपको रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की अरिजीत सिंह की आवाज में इस खूबसूरत से गाने के साथ। बना रहेगा आपका और मेरा ये साथ। फिलहाल शुरुआत में एक खूबसूरत सा गाना।

दिल्ली एनसीआर की खबर, दिल्ली एनसीआर की हलचल, शहर की ये जो हलचल है इससे आपको रूबरू करवाते हैं हम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और जो आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर, आपके साथ मैं हूं दीपिका। आज दिल्ली सरकार ने 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। अटल कैंटीन जहां पे 5 रुपए में गरीब मजदूर जरूरतमंद लोगों को खाना परोसा जाता है। पहले भी कई अटल कैंटीन रन कर रही हैं और अब 25 नई अटल कैंटीन का जो है उद्घाटन किया गया है। एम्स, LNJP हॉस्पिटल के बाहर, जनकपुरी, विकासपुरी की झुग्गी बस्ती और शहर के अन्य हिस्सों में इन कैंटीन की शुरुआत की गई है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि अटल कैंटीन में मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाना दिया जाता है 5 रुपए में। इसीलिए नई कुछ कैंटीन की भी शुरुआत हुई है। ये जो योजना है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पिछले साल दिल्ली सरकार ने शुरू की थी और अब कम आय वर्ग के लोगों के लिए और 25 नई कैंटीन का खुलना एक राहत माना जा रहा है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: ही गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, प्रोग्राम है सिटी लाइट्स और आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका। दिल्ली NCR में मौसम जो है वो पिछले कुछ वक्त से लगातार करवट ले रहा है। कभी उमस भरी गर्मी तो कभी तेज बारिश और कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कुछ ऐसा ही मौसम का हाल चल रहा है। अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि इससे पहले तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन कल यानी कि सोमवार और परसों मंगलवार को दिल्ली NCR में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बताई जा रही है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं और यहाँ पर आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। जी हाँ, सिटी लाइट्स अब यहाँ पर सुन रहे हैं आप। और एक और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास बात जो आपको भी बताना है मुझे, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र देने वाली पिंक टिकट सुविधा जो है 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले 16 अगस्त से पिंक साथी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने की योजना थी, लेकिन अब पेपर टिकट की योजना जारी रहेगी। इसकी तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। परिवहन विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पेपर आधारित पिंक टिकट जारी करने की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना बिल्कुल आपके लिए प्ले करूंगी यहाँ पर मैं, और यही होगा आज के इस प्रोग्राम का आखिरी गाना, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। लेकिन जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि कौन से प्रोग्राम सभी आप सुनने वाले हैं। तो 5:30 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम फॉर्म टू सिटी, 6 बजे से रेखा आपके साथ जुड़ेंगी, लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स, यानी कि आपके मैसेजेस उन तक पहुँचेंगे, वो आपके मैसेजेस पढ़ेंगी और आपसे करेंगी ढेर सारी बातें। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको देनी होगी दीपिका को इजाजत इस प्रोग्राम में, यानी कि सिटी लाइट्स में। जल्दी ही होगी आपसे मुलाकात, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे प्यारे किसानों, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं ओम। ओम प्रकाश राठौर का नमस्ते पायलागू, ओपी राठौर भी कह सकते हैं मुझे। प्रोग्राम का नाम सिटी टू फार्म, आई मीन टू से फार्म टू सिटी। एक्चुअली मात्राएं मिलानी होती है ना कविता लिखते समय, लेकिन अब फार्म टू सिटी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई फॉर्म भरना है, ठीक है। हमें आपको इन्फॉर्म करना है कि ये प्रोग्राम हमने बनाया है उन सब लोगों के लिए जिनको पौधों से प्यार है, प्लांटों से प्यार है, गार्डनिंग से प्यार है। आज इतवार है। ये प्रोग्राम में दो चीजें बड़ी खास हैं। पहला, ये आकाशवाणी का प्रोग्राम। दूसरा, इसमें धरती की बातें होती हैं। इसीलिए हमने एक ऐसी आरजे को ढूंढा जिसके नाम में ये सब चीजें हो। तो हमने ढूंढा अवनी को, क्योंकि आकाशवाणी का अ और वनी का वनी। तो हमने ये भी देखा, फिर हमने कहा भाई धरती तो है नहीं इसमें, फिर कहा अवनी का मतलब ही धरती होता है। तो हमने कहा चलो अवनी के पास चलते हैं, क्योंकि वही है आकाशवाणी, वही है अवनी। नमस्ते अवनी जी, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा कर दी। अब आप बतावे आप कैसी हैं, किस फॉर्म में खड़ी हैं, अब मतलब किस फॉर्म में हैं, ठीक है ना?
4: हम ठीक हैं। आपने तो ओपी जी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन ही कर दिया। दोस्तों ये बताइए कि आप सब कैसे हैं? ओपी जी ने तो आपकी खबर पूछ ही ली है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आप होंगे एकदम फिट एंड फाइन। वैसे भी खुद ही की बालकनी में उगाई हुई सब्जियों को कंज्यूम करके आप मस्त सी ऑर्गेनिक सब्जियों का लुत्फ उठा ही रहे होंगे, ठीक है ना?
3: ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसी खेती जिसमें हाइड्रो का मतलब है पानी यानी वाटर, एंड पोनोस का मतलब है लेबर। समझे? नहीं समझे, लेकिन तुम ना समझे। तो इसमें खेती होती है बिना मिट्टी के, और पानी में न्यूट्रिशन डाला जाता है। इससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, यही हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो हाइड्रोपोनिक्स को जानने के लिए हम आपसे बात कराने जा रहे हैं हमारे खास एक्सपर्ट डॉक्टर मुर्तजा हसन साहब से, जो कि IARI पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर मुर्तजा हसन, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्म टू सिटी में।
5: जी नमस्कार।
3: पहला तो सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स आखिर है क्या?
5: हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक आधुनिक तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के खेती की जाती है। इस तरह की खेती में सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मिट्टी के बाद क्या होता है, तो हाइड्रो का अर्थ होता है पानी और पोनिक्स मतलब ग्रो करना। तो प्योर वाटर में कैसे ग्रो करे कोई फसल, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इसी तकनीक के अंतर्गत में वैसी तकनीक भी लिया जाता है जो कि मिट्टी रहित खेती हो। जैसे कि अगर कोई आदमी अगर वर्मी कंपोस्ट में खेती करना चाहे, अगर कोई कोकोपीट में करना चाहे, तो ये भी एक तरह का माध्यम है और भी हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत ही आती है।
3: क्या लोग इसे किचन गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं?
5: बिल्कुल, आजकल बहुत सारे किचन गार्डन में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किचन गार्डन के अंदर में छोटे छोटे हाइड्रोपोनिक्स के मॉडल होते हैं और इस तरह का कंटेनर या इस तरह का गमला रखा जाता है जिसमें कि मिट्टी के बिना क्या हो सकता है, उसमें नारियल का भूसा और उसमें कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट मिला दिया जाता है। इसका एक और फायदा यह होता है कि अगर किचन गार्डन में आप मल्टीपल लेयर खेती कर रहे हैं, 3 लेयर 4 लेयर का कुछ ऐसा कुछ बना लें और उसमें हर लेयर एक गमला रखा हो, तो वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहां पर भी इस्तेमाल होता है इस तरह का। और जो प्योर हाइड्रोपोनिक्स होता है मॉडल जिसमें कि जल का प्रवाह होता है, 1 लेयर में 2 लेयर में 3 लेयर में आजकल किचन गार्डन के चारों तरफ इस तरह का कॉम्पैक्ट मॉडल बनाया जाता है और उसमें लगा करके सारी जो अपने किचन की आवश्यकता के अनुसार सब्जियां हैं फल है उसका उत्पादन किया जाता है।
3: जी, शुरुआत में कौन सी सब्जियां इत्यादि हम लगा सकते हैं आसानी से?
5: हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में लगभग सभी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अगर सब्जी वर्ग में आपने पूछा है तो खास करके जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो खास करके इसमें जितने भी ऐसे आजकल चुलाई लग रहा है, पालक का साग है, उसके अलावा धनिया है, पुदीना है, आने वाले समय में अभी एक दो महीने के बाद में तरह तरह का सलाद का पत्ता का इस्तेमाल होता है, जैसे हम लेट्यूस बोलते हैं, पोकचोई है, बहुत तरह से आजकल ग्रीन्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इन सभी का उत्पादन खास करके हाइड्रोपोनिक्स में बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा हमारे घर में आम इस्तेमाल होने वाले बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब का भी हम लोगों ने पाया है। खास करके जो कद्दू वर्गीय जितने भी सब्जियां हैं, वो भी आप लगा करके हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं।
3: अगर मिट्टी नहीं है तो इन पौधों को पोषण कैसे मिलता है?
5: जी, इसमें कहीं मिट्टी का प्रयोग नहीं। अगर प्योर हाइड्रोपोनिक्स होगा तो पाइपों के द्वारा इसमें जल का प्रवाह किया जाता है, एक छोटे से पंप के द्वारा, और उसी पाइप में जगह जगह पर पौधों को एंकर कर दिया जाता है। ये प्योर हाइड्रोपोनिक्स होती है। अगर हम मिट्टी रहित माध्यम को किसी गमले या पॉट में रखते हैं, वहां पर भी हम कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ग्रोवर्स के पास चॉइस है। किसान भाई, आपने जो आम आदमी है, वो आजकल नारियल का भूसा हर जगह पर बड़े आराम से नर्सरी में मिल जाता है, उसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट मिला दें और उसके साथ वो खेती कर सकते हैं।
3: क्या मिट्टी में उगाई गई सब्जियों के मुकाबले हाइड्रोपोनिक्स की सब्जियों का स्वाद और पोषण अलग होता है?
5: स्वाद एक अलग चीज है, लेकिन जो उससे भी जो बड़ा वर्ड है वो न्यूट्रिशन वर्ड है कि क्या दोनों के न्यूट्रिशन में फर्क हो रहा है। तो हम लोगों ने ये पाया है, खास करके जब आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में कोई चीज लेते हैं, जैसे टमाटर ले रहे हैं, तो जब उसका विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इसमें जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहां पर आप सभी न्यूट्रिशन की एक नियंत्रित मात्रा डाल रहे हैं और वो मात्रा सीधे पौधे में पहुंच रहा है, वहां पर ये अच्छा काम कर रहा है। और इसमें जैसे विटामिन सी कंटेंट है और भी जो हेल्थ के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो अच्छी चीज पाया जाता है, वो पाया गया कि हाइड्रोपोनिक्स में वो ज्यादा रहता है खुले खेत की अपेक्षा में।
3: ये बहुत एक लंबा चौड़ा विषय है। हमारे श्रोताओं के सवालों के हिसाब से हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे और हाइड्रोपोनिक्स पर आपकी जानकारी को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर मुर्तजा हसन साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ें और सुनते हैं ये देशभक्ति।

0: भैया, हमने ये देखा है कि जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर एक छोटा सा किसान तो होता ही है। तो ऐसा छोटा किसान, मिनी किसान कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई राह चलता राहगीर भी हो सकता है, कोई वीआईपी भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो भाई, हम में से कईयों के अंदर गार्डनर होता है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान नौकरीशुदा हो और वो गार्डनिंग नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं और अपने इस शौक को भी अच्छे से फॉलो करते हैं। इसी बात की एक मिसाल है हमारे आज के मेहमान जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर जोशी। अब जोशी जी ही बताएंगे अपने बारे में, अपना पूरा नाम और क्या करते हैं। वेलकम जोशी जी, प्लीज बताएं अपने बारे में।
1: जी, मेरा नाम हरीश चंद्र जोशी है, मैं एक गेस्ट हेड ऑफिसर हूँ। बागवानी में पिछले 25 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को बागवानी करते हुए, और बागवानी मैं अपने घर की छत पर ही करता हूँ। थर्ड फ्लोर पर मेरा घर जो है उसके छत पर मैंने अपनी बागवानी की हुई है, तो मेरे को बागवानी का बहुत ज्यादा शौक है।
0: वेरी नाइस। जोशी जी, ये बागवानी का इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ और आज आपके बगीचे में कौन कौन से पौधे मुस्कुरा रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: ये शौक मेरे को बहुत पहले से हो गया था, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने किसी के वहाँ फूल के पौधे देखे तो वो मेरे को बहुत आकर्षित हुआ उनकी तरफ में, और वहां से मैं एक गुलदाउदी की कटिंग लेके आया था और वो गुलदाउदी की कटिंग मैंने अपने घर पर लगाई थी और उसके रिजल्ट में मेरे को बहुत सारे फ्लावर मिले थे। बस उस दिन के बाद फिर मेरा ये शौक धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर मैं एक सरकारी मकान में रहता था पहले, तो वहां पर भी मुझे छत मिली और छत मिली तो उसके साथ मेरे को बहुत अच्छी धूप मिली, और धूप का अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो फिर

0: आपका शौक बढ़ता जाता है। फिर मेरी गार्डनिंग दिन पर दिन बढ़ती ही गई और बहुत कुछ मैंने गार्डनिंग में सीखा भी और गलतियां भी की हैं।
1: तो छत पर जो ये आपने बागवानी करी है, इसमें पानी का कैसे करते हैं, क्योंकि पानी भी एक समस्या होती है। कई बार कुछ पौधे अधिक पानी या कम पानी के कारण जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं?
0: शहरी बागवानी यानी कि अगर हम अर्बन गार्डनिंग में करें, जहां हम गमलों और कंटेनरों में अपनी गार्डनिंग को करते हैं, तो वहां पानी देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे कंटेनर में पानी अगर रह जाएगा तो हमारे पौधे बहुत जल्दी मर जाएंगे, और अगर नहीं देंगे तो मिट्टी जल्दी सूख सकती है, तब भी पौधों को नुकसान हो सकता है। तो पानी देने का एक सरल नियम है कि मिट्टी को न बहुत सूखने दें और न ही हमेशा गीली रखें। बहुत अधिक पानी देना नुकसानदायक हो सकता है, इससे जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी 1-2 इंच की परत को अच्छी तरह से जांच लें। अगर हमें मिट्टी सूखी लगे तभी हमें पानी देना है। गमलों में पानी की निकासी के लिए छेद जरूर होना चाहिए। अगर आप जो भी गमले या कंटेनर बना रहे हैं तो उसमें नीचे से छेद होने चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी गार्डनिंग करते हैं कि आपको अपने गमले में मिट्टी डालते समय करीब 1 इंच की परत यानी कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसमें कंकड़ या टूटे हुए गमले के टुकड़े भर देंगे। उससे क्या होगा कि जब ऊपर का पानी रिसते हुए नीचे आएगा, नीचे से एयर सिस्टम भी बना रहेगा और आपका कभी भी पौधा खराब नहीं होगा।
1: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू मिस्टर जोशी हमसे बात करने के लिए। आपके बगीचे में ऐसी खुशियां खिलती रहें, पलती रहें, झूमती रहें, गाती रहें, इसी मनोकामना के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जोशी जी के लिए और आपके तमाम पौधों, गमलों, गार्डन्स के लिए भी डेडिकेट कर रहे हैं ये सॉन्ग।

0: अगर आपको भी लगता है कि आप भी हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, बागवानी करते हैं, बालकनी में आपने कुछ उत्तम कार्य किया हुआ है, छत पे या आंगन में आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं उसकी चर्चा यहाँ हो, कोई खर्चा नहीं करना आपको, सिर्फ चर्चा करना है, तो आप अपना आवेदन निवेदन हमें farm2citydelhi@gmail पर कृपा करके प्रेषित करें, भेजें। हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके साथ बात करेंगे आपके अपने कार्यक्रम फार्म टू सिटी में, जिसके प्रायोजक हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्रोताओं, हम में से कई ऐसे भी हैं जो मधुमक्खी पालन में भी काफी रुचि रखते हैं। उनके लिए बता दें कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग काम करता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी नेशनल बी बोर्ड, और उसके अंतर्गत द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM भी चल रहा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का मुख्य उद्देश्य है देश में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, मधुमक्खी से जुड़े उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों की कमाई बढ़ाना और रोजगार के नए साधन देना। अब सवाल ये उठता है कि मदद किस तरह दी जाती है। शहद जांच की प्रयोगशाला यानी लैब्स और बीमारियां पहचानने वाले केंद्र बनाने के लिए मदद दी जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाली रानी मधुमक्खी तैयार करने और मधुमक्खी के छत्तों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सहयोग देते हैं। उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और रिसर्च में भी सहायता। अब तक आखिर इस मिशन में क्या क्या हासिल किया जा चुका है। अब तक 7 बड़ी विश्व स्तरीय और 66 छोटी मिनी शहद जांच लैब बनाई गई हैं ताकि मिलावट रोकी जा सके। 83 शहद प्रोसेसिंग, सफाई और तैयारी और 90 पैकेजिंग व ब्रांडिंग सेंटर बनाए गए हैं। 81 न्यूक्लियर स्टॉक सेंटर बनाए गए जिससे अच्छी नस्ल की रानी मधुमक्खियां तैयार की जा सकती हैं। इन सभी प्रयासों से उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। देश में शहद का उत्पादन 2014-15 में 80,530 मेट्रिक टन था, जो 2025-26 में बढ़कर 151,690 मेट्रिक टन पहुंच गया, यानी लगभग दुगना। अगर आपके अंदर भी मधुमक्खी पालन या इस उद्योग से जुड़कर कुछ काम करने की मन में योजना बन रही है तो आज ही nbb.gov.in वेबसाइट पर जाएं और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। जब हम आपको हाइड्रोपोनिक समझा रहे थे तब हमें लगा कि कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। अरे, हम अवनी से बात करना भूल रहे हैं। अवनी, कहाँ हो? आज क्या है विशेष आपके पास जिससे हम ना हो सकें उदास?
1: खेती करने में कीटों का भी हमारे साथ बहुत एक प्यारा सा मित्र दोस्ताना है, और मैं यहाँ ओपी थोड़ा सा मधुमक्खियों से बच के डॉज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं और मधुमक्खियों को पालन करने वाली प्रवीण गोला जी भी हैं। प्रवीण जी, आपका हमारे शो में स्वागत है, और ये बताइए कि आपने ये मधुमक्खी पालन कैसे शुरू किया?
2: मधुमक्खी पालन का शौक मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं अर्बन में रहती थी, और अर्बन में यहाँ क्या है, हम लोग पूरे बंद कमरों में रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है। एक तो हम नेचर को बचा रहे हैं और साथ में हम खुली हवा में घूमते हैं अपनी मधुमक्खियों को लेके, क्योंकि एक माइग्रेटरी बिजनेस है, इसी कारण मैंने इस बिजनेस शुरू किया।
1: जी, एक्चुअली ये बात से बहुत लोग सहमत होंगे क्योंकि शहरों में हकीकत में जगह की बहुत कमी है, और फार्म टू सिटी का ही हमारा मकसद ये है कि छोटी जगह में लोगों को होम गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप ये बताइए कि बी फार्मिंग आपको क्यों इम्पोर्टेंट लगा?
2: बी फार्मिंग मैम, देखिए, मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेव नेचर, सेव बीज, सेव अर्थ, ये तीन चीजें हैं जो हमें सभी को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। और अगर आपके पास एक छोटा गार्डन है तो उस मधुमक्खी का बॉक्स जरूर रखिए।
1: आपकी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और अब आप कहाँ तक पहुँच गई हैं, आप हमारे लिसनर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए।
2: मैंने KVICC से ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से चलते चलते चलते चलते 3 साल के अंदर आज मेरे पास 250 बॉक्सेज हैं, और मैं एक सफल उद्यमी के रूप में अपना शहद ग्राहकों तक पहुँचाती हूँ।
1: वेरी नाइस। ये बिजनेस कैसे शुरू किया जाए?
2: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ही कम लागत लगती है, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्सेस दिए जाते हैं, और हम उसको लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम लागत में। तो आप सब्सिडाइज्ड रेट पर बॉक्सेस मिलेंगे और आप 10-10 बॉक्सेस से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और आगे आगे जैसे जैसे आपको लगता है आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते जाइए।
1: तो आपने बी फार्मिंग के बहुत ही अहम मुद्दे को हमारे श्रोताओं के साथ जो अभी साझा किया उसके लिए आपका प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में एक डायरेक्ट लिंक बनी और वो लिंक क्या है, ICAR के विद्यार्थियों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए DBT सुविधा शुरू की गई, जिसमें 6,000 से अधिक छात्रों के बैंक अकाउंट्स में एक सिंगल क्लिक के जरिए स्कॉलरशिप्स ट्रांसफर की गई हैं। यानी कि वो लंबी चेन जिसमें पहले यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स तक पहुंचने वाली स्कॉलरशिप को अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया ताकि उन्हें

0: सही समय पर इसका लाभ मिले। आइए इस बारे में हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को ही सुनते हैं।
1: 27 अक्टूबर 2025 को हमने एक राष्ट्रीय कृषि विद्यार्थी सम्मेलन किया था। एक कमेटी हमने बनाई थी, हमारे 24 स्टूडेंट्स की एक कमेटी थी जो 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिए गए थे और उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए हमें। फेलोशिप को समान स्तर पर करने की बात थी, राबे प्रोग्राम को सबके लिए आवश्यक बनाने की चर्चा थी, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिए, उसकी कोई वर्किंग प्लान बनना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई और अगले कुलपति सम्मेलन तक उसको फाइनल कर दिया जाएगा। कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षा वरीक्षाएं सब निपट गई। सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई की, सिंगल क्लिक से हर महीने समय पर बच्चों को स्कॉलरशिप पहुंचेगी और सच में तभी उसका बेहतर उपयोग होगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी रणनीति है कृषि को लेके, उसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासी है। दूसरी है पोषण आहार, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तीसरा किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना। लेकिन आज हम कई बार कई चीज इतनी उगा लेते हैं कि जरूरत ही नहीं होती देश को। अब मैपिंग करेंगे हम, हमें कितना चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, कितना चाहिए और दुनिया को क्या चाहिए, वहां भी हमारी नजर रहेगी, ताकि आगे हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का अन्न और फल सब्जियां उत्पादित करके दुनिया के देशों में भी बेच सकें।
0: फार्म टू सिटी के अंतिम चरण पर हम आ पहुंचे हैं आपके साथ इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बागबानी से रिलेटेड जानकारी शेयर करते करते। आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा हमें। आप ईमेल कर सकते हैं हमें farmtocitydelhi@gmail.com, farm2citydelhi@gmail.com। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से।
2: भाई अब कृषि मंत्रालय की एक प्यारी सी टिप सुन लीजिए। पीला चिपचिपा कार्ड लगाएं, कीट नियंत्रण करें। पीले गत्ते पे गोंद लगाकर खेत में टांगने से कीट आकर्षित होकर उसमें चिपक जाते हैं। ये बिना किसी जहर के कीट नियंत्रण का काम करता है। ये बहुत आसान और सस्ता तरीका है कीट नियंत्रण का। पीला चिपचिपा कार्ड लगाएं, कीटों पर नियंत्रण करें। तो भाई अब चलने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना है, मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग आप चाहें तो ट्विटर पर #farmtocity लिख के अपनी कोई बात या अपने क्यारी का फोटो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी तरह जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपके काम को देख के एंजॉय तो कर सकेंगे। और फार्म टू सिटी का मिशन हर घर में हो खेती, हर घर में हो गार्डनिंग, वो लक्ष्य देकर हम आगे बढ़ सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे दी एंड का बोर्ड लगाए, यानी कि अब हमें जाना होगा। फार्म टू सिटी का आज का ये एपिसोड समाप्त करने की आप इजाजत दीजिए, क्योंकि समय जो समाप्त हो गया है, अर्थात चलते हैं, क्योंकि घर की क्यारी में, घर की बालकनी में, घर के छत पर कुछ फल फूल उगाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी एक बार और सुन लीजिए, farmtocitydelhi@gmail.com। फिर मिलेंगे, नमस्ते।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम आज से लागू। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जाएगा। यह दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया है। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। तो ये थे रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए रेनबो इंडिया।
1: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आपकी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वतंत्रता दिवस को आपने खूब खूब एंजॉय किया होगा, है ना। आपको पता है कि हमारे भारत में कोई भी दिवस हो, त्योहार हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसको भूल नहीं सकता। जी हाँ, जब लोग भूलने देंगे तभी तो जी हाँ, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अगर किसी को याद ना रहे तो वो भी पूछ ही लेता है कि आज या कौन सा दिन है, क्या आने वाला है, तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुशियों की टैबलेट कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और उसको आप कब ले सकते हैं। फिलहाल बताना चाहूँगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है मैसेज मसाला मिक्स और इस सफ़र में आप हैं इस वक्त अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी के साथ। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग के साथ।

ये दोस्तों, जानती हूँ जानती हूँ जानती हूँ कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप सभी के मैसेजेस लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हमारा टॉपिक है खुशियों की टैबलेट। जी हाँ, जो हमें खुद तो खानी ही चाहिए, दूसरों को भी खिलानी चाहिए। तो आपकी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, चार गुना। क्योंकि ये सोच सोच कर ही ना हम गदगद हो जाते हैं कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। और जब दूसरे या आपके सामने वाले खुश होते हैं ना, वो तो उन्हें देखकर और भी दिल खिलखिला उठता है। तो देखिए कितनी अच्छी टैबलेट है ना ये। और ये टैबलेट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, अब भाई ये तो राज की बात है। लेकिन राज से पर्दा ज़रूर उठाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये खुशियों की टैबलेट कब, कहाँ, कैसे ले सकते हैं आप। फिलहाल एक और सॉन्ग आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल इस वक्त हो चुका है दिल का आलम वाह वाह कहने वाला।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी दोस्तों, ये सब आपका प्यार ही तो है। अभी देखिए ना, कुछ समय पहले तक मुझ तक आपके मैसेजेस नहीं आ पा रहे थे और मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि आप सबके मैसेजेस मुझे दिखाई देने लगी जल्दी से जल्दी और मैं ऑन एयर कर सकूं। तो सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आया है वो आया है हाय सिर्फ लिखा है उन्होंने, तो ये तो गलत बात है। पूरा मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए। एक और मेरे पास मैसेज है MMM यानी कि मैसेज मसाला मिक्स। गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक सौरभ बनेजा लिखते हैं। एक और मैसेज, नमस्ते मैम, सौरभ तिवारी प्रगति नगर हरदोई से। अभी मैं भोले बाबा के दर्शन करके आ रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ और घर में कोई नहीं है, लेकिन किंतु परंतु आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। रेखा चौधरी, मेरे लिए खुशियों की टैबलेट वरिष्ठ उम्र में व्यस्त रहने से मिलती है, जिस

खाली रहने रहना बेकार की बातें सोचना नहीं पड़ता है। मेरा लंबा तजुर्बा वरिष्ठ उम्र के कोई भी शौक जिससे व्यस्त रह सकें, इससे अच्छा बुढ़ापे में कोई तोहफा नहीं हो सकता। अनिल शर्मा लिखते हैं सरिता विहार से। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, और जहां पर आपको खुशी मिले ना, वहां पर वो काम जरूर करना चाहिए। मैसेज मसाला मिक्स में आपका स्वागत है। सिर्फ किसी ने ये लिखा है तो भाई अपना नाम लिखें। एक और मेरे पास मैसेज आया है कि वो लिखते हैं सावन के महीने में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये लिखा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने बहुत अच्छी इमोजीज भी भेजी हैं। सावन के महीने में लड़कियां महिलाएं झूला झूल रही हैं, हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सड़कों पर जल लाने वालों की भी भीड़ उमड़ चुकी है। पानी में कागज की नाव बनाकर छोड़ना बहुत अच्छा लगता है। खूब मस्ती करना इस महीने में होती है, बड़ी ही खूबसूरत बातें, और चारों तरफ सावन में जो हरियाली नजर आती है, झूले और खुशी नजर आती है सबके चेहरे पर, ये उनको बहुत अच्छी लगती है। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैंने पहले भी कहा कि जब हम अपने सामने वाले को देखते हैं ना खुश, तो हमें अपने आप ही अंदर से खुशी होने लगती है, और ये बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे पूछ रही थी कि ये अगर टैबलेट आपको कहीं मिले तो कहाँ मिल सकती है, तो मैं चलिए मैं ही बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको बाजार में ये खुशियों की टैबलेट मिलती, और लेकिन वो बहुत बहुत बहुत महंगी होती, तो आप क्या करते? क्या आप उसे खरीदते या अपने किसी दोस्त को बोलते कि भाई वो आपको खरीद के दे दे, और अगर उसके पास भी उतना पैसा नहीं है तो आप किसी और को बोलते या पैसे इकट्ठा करते? क्या करते उस टैबलेट को लेने के लिए, ये मुझे ज़रूर बताइए अपने मैसेजेस के जरिए। तो चलिए आपके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं एक और प्यारा सा सॉन्ग आपको सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी खुशियों की टैबलेट ना हमारे आसपास ही पड़ी होती है, और हम ढूंढ रहे होते हैं उसे किसी और जगह पर, और जब आपको ये पता चलता है कि ये तो आसपास ही मिलने वाली है या आपके पास ही है, तब तब आपके दिल का हाल कैसा होता होगा ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

बिल्कुल यही बात किसी ने अपने एक मैसेज में मुझ तक भेजी है। तो भाई ऐसी बात क्यों आप कर रहे हैं और अपना नाम भी नहीं लिख रहे हैं, आप किस वजह से परेशान हैं? तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी को मस्ती में बदलने के लिए, मुस्कुराहट में बदलने के लिए हम हैं यहाँ पर। आप सिर्फ बताइए परेशान क्यों हैं।

जी हाँ दोस्तों, मैसेजेस लगातार आपके आ रहे हैं। एक मेरे पास मैसेज आया, प्रिय आरजे रेखा चौधरी जी, मैसेज मसाला मिक्स, मेरा खुशियों का टैबलेट, मेरा रेडियो व छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, और देखिए ना, आप ही के साथ है और आपके पास है, कितनी अच्छी बात है ना। टैबलेट कहीं ढूंढनी भी नहीं पड़ती। और एक और मेरे पास मैसेज आया, पहले ये बता देती हूँ कि इन्होंने कहाँ से लिखा है। हीरामणि वर्मा तदरेगी भाटापार छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपना मैसेज लिखा है। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे रेखा जी, वेलकम जी, आप जी कैसे हो जी, 90 सॉन्ग्स एवर ग्रीन होते हैं जी, और आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी होती है जी, और उनको पता है कि मैंने कब, यानी कि परसों मैंने जो 90s के सॉन्ग सुनाए थे, उनको वो भी बहुत पसंद आए थे, और हम तो हमेशा सदैव दिल से याद करते रहते हैं आपको जी। तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये भी ले लेते हैं। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शाद्रा मोरी गेट से हम ये सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, तो थैंक यू सो मच। ये लिखा है, कई लोग शामिल हैं इसमें, तो बहुत बड़ा मैसेज है लेकिन मैं छोटा करके पढ़ लेती हूँ। रीता देवी, शिल्पा रानी, अक्षय कुमार जो और खुशी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं। अब देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहूँगी यही कि जितना हो सके ना, आप अपना मैसेज को छोटा करके भेजेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आदरणीय आरजे आरसी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम मैसेज मसाला मिक्स। जब आप खुश होते हैं तो केवल आप खुश होते हैं, जबकि कारण कोई दूसरा होता है। ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने, और आपका वर्तमान और भविष्य बहुत ही मंगलमय हो, ये उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भी लिखा है, तो भाई मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास ले लेते हैं, वरना ये भी नाराज हो जाएंगे। आरजे सिस्टर जी, साहिबा जी, कैसी हैं आप? आवाज सुनकर दिल खुश हो गया जी। ये चांद दिन में कैसे निकल आया, किंतु परंतु आप तो 9 बजे वाले शो में आती हो। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा लिखते हैं, क्यों भाई आपको जल्दी आने पर खुशी नहीं हुई क्या? वैसे तो आप इतना हंगामा करते हैं कि आप बहुत टाइम के बाद आती हैं, बहुत ब्रेक लेती हैं। मजाक कर रही हूँ, वैसे तो जानती हूँ आपके मैसेजेस के जरिए पता चल रहा है कि आप कितने खुश हैं। तो भाई कभी कभी ना चांद को दिन में भी निकलना चाहिए और दिल में भी निकलना चाहिए, क्या कहते हैं आप? एक और मैसेज मेरे पास है, ओहो आपने ये तो बताया ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी आने वाली हो। हाँ, ये कहा था कि आप आज के दिन, यानी कि परसों आपने कहा था कि आप आज के दिन आने वाली हो, लेकिन ये नहीं बताया कि किस टाइम आने वाली हो। तो भाई ये तो सरप्राइज था, मैंने पहले भी कहा था। और ये खुशियों की टैबलेट आकाशवाणी के बहाने हमें मिल जाती है, उन्होंने ये भी लिखा है। और ये लिखा है शर्मा जी ने। एक और मैसेज ले लेते हैं। नमस्ते जी, मेरी टैबलेट मेरे हेडसेट में है। और उन्होंने ये भी, इनका नाम जो है वो लिखा है, सन्नी कपूर लिखते हैं जर्मनी से। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, एक और मैसेज मेरे पास है, लेकिन किंतु परंतु हम मैसेजेस ही पढ़ते जाएंगे तो आगे हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे कैसे बढ़ेगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, फिर मैसेजेस आपके लिए जाएंगे। और जितने लोग, जितने मेरे लिसनर्स शिकायत करते हैं ना उस टाइम पे कि भाई हमारा मैसेज नहीं लिया या मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, दिल खोल के मैसेज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही मैसेज मसाला मिक्स है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल्ली और एनसीआर में और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और अब ऐप के जरिए भी आप हमें कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।

0: वैसे दोस्तों, आपके मैसेजेस के जरिए पता चल रहा है कि आप समझ चुके हैं कि ये खुशियों की टैबलेट क्या है, कैसे है, क्यों है। और मैं भी अपनी तरफ से आपको ये बता देती हूँ कि जब खुशियों की टैबलेट की बात चलती है तो भाई उसका एक ही जवाब होता है कि ये आपको किस लेवल पे चाहिए, क्योंकि खुशियों की टैबलेट के बिना अलग लेवल होते हैं। जैसे कोई 50 रुपए की गोलगप्पे खाकर ही अपनी खुशी को जाहिर कर देता है और उसमें ही बहुत बहुत बहुत खुश हो जाता है, और कोई पिज़्ज़ा बर्गर खाकर भी, यानी कि महंगी महंगी डिशेस उसको खिला दी जाए तो भी उसके चेहरे पर खुशी झलकती नहीं है, छलकती नहीं है। कोई साइकिल और स्कूटर के चलाने पर ही बहुत खुश नजर आता है, उसके चेहरे का नूर बढ़ जाता है। और कोई लग्जरी गाड़ियों में भी सफर कर खुश नहीं दिख पाता है। इसका कारण क्या है? जी हाँ, खुशियों के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनको ना डिस्कस किया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ये सोचा जाए कि ये खुशियां हमें मिलेंगी कहाँ से, कैसे मिलेंगी। खुशियों के कमरे की चाबी हमारे पास ही होती है, उसको बस कैसे और किस तरीके से खोलना है वो हमें पता करना होता है। और ये तो आपको पता ही है कि आपके पास जो चाबी है और उसका ताला है, उसको किस तरह से, कब, किस वक्त खोलना है, बस वो समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो जो आपका सबसे सबसे करीबी दोस्त हो या आपका भला चाहने वाला हो, बस उसके पास जाइए, उससे डिस्कस कीजिए और उससे पूछिए कि ये ताला खुलेगा कैसे, चाबी तो मेरे पास है, इसको कब, कैसे घुमानी है। बस आपकी समस्या हो जानी है बिल्कुल हल। एक और मैसेज मेरे पास आया है। अब देखिए ना, उनको भी यही शिकायत है कि मैंने परसों बताया नहीं था कि मैं कब आने वाली हूं, तो भाई सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। एक और मेरे पास मैसेज है, मुझे टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की हेल्प कर देता हूं जितना अपने से हो सके उस तक मैं लोगों की हेल्प करता हूं। तो भाई यहां पे ठीक है हेल्प करने की बात, तो दोस्त मेरा नाम आपने आधा गलत और आधा सही क्यों लिखा है? मैं पहले ही कह चुकी हूं कि प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और इस सफर में मैं हूं आपकी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। और प्रदीप सलूजा जी, जरा नाम तो पूरा लिख कर भेजिए, सही से लिख कर भेजिए। एक और मेरे पास मैसेज है, पहली बार तो खुशियों की टैबलेट बाजार में नहीं, खुद के भीतर ही मिलती है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही लिखा है आपने, पर दोस्त अपना नाम क्यों नहीं लिखा है आपने। एक और मेरे पास आया है मैसेज, मेरा वाला सॉन्ग गाने के बोल है। देखिए उन्होंने फरमाइश कर दी है एक सॉन्ग की। चलिए दोस्त, मैं आपकी इस खुशी को पूरा करने की कोशिश करूंगी, ये सॉन्ग चलाने की कोशिश करूंगी। एक और मेरे पास मैसेज है, खुशी आंतरिक अनुभूति होती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो, नींद प्रॉपर हो और जिस काम में मन लगे वही काम किया जाए तो अच्छी फीलिंग्स होती है, मूड भी खुशनुमा बना रहता है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से लिखते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, दानिश खतौली से लिखते हैं, रेखा चौधरी जी वेलकम टू द शो, विषय बता दो, आप बहुत अच्छी आरजे हैं, आवाज़ अच्छी है, गाने अच्छे हैं, खुशी टैबलेट। भाई अब आप ये बताइए मैं आपको क्या बताऊं, टॉपिक बताऊं या अपना नाम बताऊं? और नाम ठीक है, आपने ठीक से लिखने की कोशिश की है। खैर मैं टॉपिक बता देती हूँ भाई, ये है टॉपिक मेरा, खुशियों की टैबलेट। शायद आपने देर से सुनना हमें शुरू किया है, पर कोई बात नहीं, जिन्होंने देर से सुनना भी शुरू किया है ना, तो 8 बजे भी हम और आप साथ साथ रहने वाले हैं, और नॉन स्टॉप सॉन्ग अगर आपको सुनने हैं तो ठीक 8 बजे आप हमारे साथ रहिएगा रेनबो इंडिया पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द ही लौटने की कोशिश करते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने

0: वाली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: वेलकम बैक दोस्तों। कहा था ना छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर बहुत ही जल्द लौटेंगे आपके साथ आपके पास। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए ये मैसेज भी ले लेते हैं। मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही मधुर गीत सुनाए जा रहे हैं, हमें तो रेडियो सुनकर ही खुशी मिलती है। भेरू लाल वाक तरिया धाकड़ लिखते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं भी यही कह रही हूँ कि खुशियों की जो चाबी होती है ना, ये चाबी हो टैबलेट हो कुछ भी हो, जब हम ये पता लगा लेते हैं या हमें ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं। तो बस जहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो सीधी सी बात है, आपको खुद ब खुद बहुत अच्छा लगेगा। एक और मेरे पास मैसेज आया है, आदाब मैसेज मसाला मिक्स, आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, गीत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत सुंदर है। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम बहन हमारी भी हमारा भी मैसेज शामिल कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। तो भाई देखिए, ये इतना सब लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप जो भी मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं, जितने भी भेज रहे हैं, मैं सभी मैसेजेस को ले पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मेरी वजह से आपको खुशी मिलती है। और मैंने पहले भी कहा कि जब हमारी वजह से कोई भी थोड़ी सी भी खुशी ले पाता है तो उसमें हम लोगों को बहुत बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब आपका मैसेज मुझ तक पहुंचता है तो मैं यही चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी ऑन एयर कर दूं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, मैं तो दूसरों के चेहरे पर खुशी देख कर ही खुश हो जाता हूँ और यही मेरी खुशियों की टैबलेट है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से लिखते हैं। और भी मेरे पास मैसेजेस हैं, खुशियों की टैबलेट मेरे पास बहुत पहले से है, लेकिन समझ में मुझे बाद में आया कि छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। तो ये तो बिल्कुल दोस्त सही कहा आपने, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ हमारी छिपी होती हैं। अब देखिए ना, जब हम अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, ये मायने नहीं रखता कि वो कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, और उस चीज़ को लेने में आपकी मदद आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन या कोई भी करता है तो आपको कितनी कितनी खुशी होती है ना। जी हाँ, उसके रेट को यानी उसके प्राइस को आप एक तरफा रख दीजिए और उसको पाकर जो आपको खुशी मिली है ना, बस आप उसको महसूस कीजिए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। और आपको जब ऐसा लगेगा तो आपको देखने वाला कितना कितना कितना खुश होता है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और एक और सॉन्ग अभी तो चल ही सकता है।

जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। अब मुलाकात होगी ठीक 8 बजे, तो अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत। टाटा बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यस, दिस इज 102.6 एफएम रेनबो, आपकी वाणी आकाशवाणी। एंड द शो दैट यू ट्यून इनटू इज कॉल्ड लाइव वायर, वेयर एंड आई विल बी प्लेइंग इंग्लिश म्यूजिक फॉर यू, इंश्योरिंग दैट यू स्टे एंटरटेन्ड फॉर द आवर। एंड यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस टू द व्हाट्सएप नंबर 9868107070, स्टार्टिंग द आवर विद वन लेटेस्ट रिलीज बाय अरियाना ग्रांडे कमिंग अप फॉर यू, नोवेयर नोबडी। लिसन टू दिस वन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।

0: dientes. Enséñamelos.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूसीजी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं।

झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से नेपाल की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। इस दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती, और म्यूजिक मस्ती के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी वही पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। तो ढिंचक सॉन्ग्स चलेंगी, तो तैयार हो जाइए, अपने अपने स्टेप्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि डांस तो बनता है ना। तो सुन रही आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती।

0: यहाँ आपने वॉल्यूम को एकदम से ऐसे ही हाई लेवल पे रखिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम चलने वाला है पूरे 1 घंटे और फिलहाल आप थक गए होंगे क्योंकि हाई वॉल्यूम्स के जो सॉन्ग चलते हैं तो डांस करते करते थक भी जाते हैं। फिलहाल आपको बता दूं, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ। आपके पास बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। उन्होंने पहले तो मेरा नाम गलत कर दिया था और उसके बाद वो लिख रहे हैं कि सॉरी, नाम गलत इसलिए हो गया क्योंकि मुझे फीवर हो रखा है और इस चक्कर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम आपने नाम ही उल्टा पुल्टा करा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इतने फीवर में भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये लिखा है प्रदीप सलूजा जी ने जनकपुरी से, बहुत से दोस्त हमारे हैं वो फरमाइश कर रहे हैं। तो दोस्त, इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था मैसेज मसाला मिक्स, उसमें आपकी सभी मैंने मैसेजेस लिए थे। तो अब तो आपको पता ही है, ये है नॉन स्टॉप म्यूजिक, अब तो ये यूं ही चलेगा। और एंजॉय करिए, डांस करिए, मस्ती करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ही मस्ती भरा है। और जो मस्ती दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मस्ती को महसूस कीजिए। और आज तो संडे है, वैसे भी आराम बहुत किया होगा, तो थोड़ा सा डांस तो बनता ही है। आप अकेले कीजिए या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। और इस सफर में, जी हाँ, म्यूजिक मस्ती में, यानी कि इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा चौधरी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM।

रेनबो। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, म्यूजिक मस्ती में फिर से आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम अभी और भी चलने वाला है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज बहुत आराम किया होगा, मस्ती कीजिए और म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि म्यूजिक हर दर्द की, हर बीमारी की दवा है। सुंदरी आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

भाई किसी का दिल टोटे टोटे हुआ हो या ना हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन किंतु परंतु मेरा जो दिल है ना वो बहुत गद गद गद हो गया है, क्योंकि आप सभी के मैसेजेस बता रहे हैं कि आपको प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है। भाई अच्छा लगना भी चाहिए, हम आते किस लिए यहाँ पर कि आपका मनोरंजन कर सकें और आपको जो म्यूजिक दिया जाए सुनाया जाए वो आपको अच्छा लगे। फिलहाल बता देती हूँ कि जो ये म्यूजिक का दौर है, टिक टिक करती घड़ी बता रही है कि इसके लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अब देखिए ना, मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। आपसे जुदाई का जो वक्त शुरू हो जाता है ना, जुदाई का टाइम शुरू हो जाता है, तो वो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिल करता है कि बस यहीं पर रह जाऊं, लेकिन जाने के लिए आना और आने के लिए जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो फिलहाल अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। लेकिन किंतु परंतु आपको छोड़े जा रही हूं एक और मस्ती भरे सॉन्ग के साथ। तो चलिए, क्योंकि ये जो डांस स्टेप आपने लेना शुरू किए हैं ना या सोच रहे हैं वो रुकने नहीं चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। मैं फिलहाल जा रही हूं, लेकिन रेनबो इंडिया कहीं नहीं जा रहा है। फिर मुलाकात जरूर होगी इसी वादे के साथ। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रेनबो इंडिया इसी तरह से सुनते रहिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे की मुख्य खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और हॉल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। तो आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ रास्ते हमें खूबसूरत यादों की ओर ले जाते हैं। कभी कोई धुन दिल को छू जाती है, कभी कोई गीत हमारे पुराने दौर में वापस ले जाता है। तो आइए आज फिर चलते हैं उन खूबसूरत रास्तों पर जहां हर गीत में कहानी है, हर धुन में एहसास, हर याद में एक कहानी। आपकी याद आती रहे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सीमा के साथ।

सफर में सुनवाऊंगी आपको वो गीत जो आपके दिल के होंगे बेहद करीब। बस जुड़ी रहिए आकाशवाणी रेनबो पर हमारे साथ और कीजिए स्पेशल फील।

ज़्यादा है लम्हे गुजर जाते हैं। हम चाहे कितनी भी रास्तों से होकर मंजिल की तरफ कदम क्यों ना बढ़ाते रहें, पर कभी कभी जिंदगी हमें पीछे मुड़कर देखने को मजबूर कर देती है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रास्ते नहीं यादें दिखाई देती हैं।

और फिर हम इन यादों को खुद ही के साथ साझा करते हैं। कुछ यादें जो हमारे चेहरे पर, हमारे लबों पर मुस्कान छूट जाती हैं। हमेशा सजो कर रखे इन यादों को।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादों का भी अपना एक आईना होता है जिसमें चेहरा नहीं, हमारा बीता हुआ वक्त नजर आता है। आपकी याद आती रहे आकाशवाणी रेनबो पर, मेरी यानी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सीमा के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आपके दिल के बाद कुछ यादों के साथ आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही सीमा के साथ। इसी तरह के और प्यारे से अफगाने सुनने के लिए होगी जो आपके दिल के हों बेहद करीब। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

दिल्ली एनसीआर में आप सुन रहे हैं हमें 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हम आपके साथ और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो जुड़े रहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आकाशवाणी रेनबो स्पेशल फील करना चाहते हैं तो बस आपको यही ट्यून इन करना है। बातें यादों की, उन लम्हों की जो हमारे साथ हमेशा उम्र भर चलते हैं। कुछ इस तरह की यादें सबकी अलग अलग होती हैं। अगर मैं बात करूं तो बचपन की वो बेफिक्र हंसी याद आती है, कभी दोस्तों के साथ बिताई हुई शामें, कभी किसी अपने की आवाज़, तो कभी किसी पुराने घर की दहलीज। कुछ यादें तस्वीरों में कैद होती हैं और कुछ यादें दिलों में, और कुछ यादें दोस्ती के नाम। तो ये वाला सॉन्ग दोस्ती को डेडिकेट कीजिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। और ये मेरा वादा है आपसे कि ये सॉन्ग आपके दिल के भी बहुत बहुत करीब होगा। तो आप सभी दोस्तों के लिए आपकी पेश नज़र।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ ही वो मैजिकल नंबर है जिसके माध्यम से आप दिल्ली और एनसीआर में हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हम आपके साथ और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आपकी याद आती रहे आरजे सनसनी सेवा के साथ। कितने खुश हूं ना मैं, हूं भी क्यों ना आपका साथ जो है। जी हाँ, दोस्ती हो तो कुछ इसी तरह की। बहरहाल, जिस तरह से आपने ये वाला सॉन्ग सुना ना, और दोस्ती को डेडिकेट करते हुए बहुत सारे संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन संदेशों के लिए। और यकीन मानिए, दोस्ती का ये पैगाम इस गाने के माध्यम से आप सभी दोस्तों को ज़रूर मिल गया होगा। और ऐसे में आप मना भी सकते हैं यदि आपके दोस्त टूट गए हैं। तो खास बात होती है गानों की कि हर एक गाने में अपनी एक कहानी होती है। जब आपके पास कुछ अल्फाज ना हो कहने के लिए, अंदाज़े बयां ना हो, तो फिर आप गीतों के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। हम बात कर रहे थे यादों की, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेना भी ज़रूरी होता है ताकि हमें याद रहे हमने कितना सफ़र तय किया है, कितने मौसम बदले, कितने लोग मिले और कितने लोग बिछड़े। बहरहाल, ये वाला जो गीत है बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है प्ले करने का। प्लीज़ प्ले करो, प्ले करो, प्लेइंग कर रहा था। लीजिए किया प्ले हमने इसे।

मानी, ये वाला सॉन्ग आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप हमें फिर संदेश करने वाले हैं। एक बार फिर शुक्रिया आप सभी के संदेशों का आकाशवाणी FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही, लेकिन अब समय हो रहा है 9:52 होने को हैं, तो वक्त आ गया है जब हम आपको बताएं कि आगे आपके लिए और क्या है खास। 10 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 10:02 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का। शिवानी वाशने होंगी आपके साथ, और 11:02 पर फिर हम आपसे मिलेंगे लेकर रंगे महफिल।

जी यादों को लेकर एक बात जो मेरे जहन में आई, मुझे लगा कि ज़रूर बता दो आपको ज़िंदगी में वो यादें जो आपको परेशान करती हैं और कहीं ना कहीं आपको दुख देती हैं, उस तरह की यादों को कह दीजिए टाटा बाय बाय। और उन यादों को अपने ज़िंदगी में खुद के साथ संभाल कर रखिए जो आपको एक सुकून देती है। हमें उन यादों को ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं याद करें कि वो हमें खुशी देती हैं या कि, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूहानी सुकून भी हमें मिलता है, क्योंकि यही तो है यादों का आईना, यादों का सफ़र और हमारी अपनी अधूरी सी मगर बेहद खूबसूरत कहानी। तो इस खूबसूरत कहानी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए प्ले कर रही हूँ, अलका याग्निक के मखमली आवाज।

मुझे तो यादों को और बातों को संभाल कर रखिए। बहरहाल स्टूडियो के मैडम टिक टिक कह रही हैं, यहाँ पर इशारा हो रहा है आपसे इजाजत लेने का इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात हो रही है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे की मुख्य खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। दिल्ली जल बोर्ड ने लंबित पानी के बिलों पर 100% विलंबित भुगतान अधिभार LPSC माफ करने की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी और हॉल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। तो आकाशवाणी FM रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जिंदगी में रंग कितनी भी क्यों ना हो, तस्वीर तभी हसीन लगती है, खूबसूरत लगती है जब हर रंग अपनी जगह मुकम्मल हो। और जी हाँ, इसी मुकम्मल को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम लेकर आ गए हैं रंगे महफिल। रंगे महफिल में रहेंगे आप मेरे यानी सीमा के साथ और सुनेंगे एक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गजल। जो कहती है दिल की बात।

जी हाँ, कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जो जिसे देख कर, जैसे महसूस कर कर हमें सुकून मिले और अपने दिल की बात वहाँ तक पहुँचे। इनके लिए कुछ चिट्ठियाँ सिर्फ कागज़ नहीं होती, उनमें बीते लम्हों की खुशबू और अपनों की आवाज़ बसती है। बिना कुछ कहे बात वहाँ तक पहुँचती है, लफ्ज़ कागज़ पर उतरते गए, दिल की बात बनती गई, एक चिट्ठी क्या मिली, जैसे कोई पुरानी याद मिल गई। बेहद बेहद प्यारी गज़ल महसूस कीजिए इसे।

0: चिट्ठियाँ भी बड़े कमाल की होती हैं, इनमें सिर्फ शब्द नहीं, किसी का इंतज़ार, किसी की याद और दिल के अनकही बातें कैद होती हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं रंगे महफिल सीमा के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खत बहाना था एक बात दिल तक पहुंचाने का, वरना इंतजार तो आज भी है किसी अपने के लौट आने का।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: चांद के बाद अब सितारों की तरफ क्या देखूं, जब मेरी नजरें ही उस चेहरे पर ठहर गई हैं जो मेरे लिए पूरी कायनात से भी ज्यादा खूबसूरत है। आकाशवाणी FM रेनबो पर सुन रहे हैं रंगे महफिल, मेरी यानी सीमा के साथ।

हम सभी की जिंदगी की कहानी अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी मंजिलें अलग हैं, लेकिन जब ये सब सारे रंग एक जगह मिलते हैं तो एक खूबसूरत सी महफिल सजती है। और शायद यही तो इस महफिल की शान है कि यहाँ हर एक चेहरा अपनी कहानी है, हर मुलाकात में एक याद है और हर रिश्ता इस खूबसूरत सफर का एक रंग। जी हाँ, हमारे साथ भी ये रंगी महफिल का सफर लगातार जारी है, जिसमें सुन रहे हैं आप एक के बाद एक प्यारे से गजल और याद कर रहे हैं कुछ पुराने, कुछ बीती कुछ बातें। बहरहाल हम आगे बढ़े अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और वापस जुड़ेंगे बहुत जल्दी। तब तक जाइएगा नहीं, सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर 102।

0: 1.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और एनसीआर में आप इसी फ्रिक्वेंसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपके साथ लगातार कनेक्ट हैं।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

चलिए जी, कुछ और बातें याद आ रही हैं, शेयर करूं आपके साथ, साझा करूं आपके साथ, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। कभी बचपन में कागज की एक छोटी सी कश्ती बनाकर उसे बारिश के पानी में बहाया था। तब कहाँ पता था कि वो कश्ती सिर्फ कागज की नहीं, हमारी मासूमियत और अनगिनत सपनों की भी थी। कागज की कश्ती थी, बारिश का पानी था, वो बचपन भी क्या खूब था, जहाँ हर ख्वाब सुहाना था। आज भी जब कभी बारिश होती है तो दिल चाहता है कि एक बार फिर वो कागज की कश्ती बनाऊं और उसके साथ अपनी सारी फिक्रें बहा दूं। क्या आपका भी दिल ऐसा चाहता है? यदि हाँ तो सुनिए फिर इस गजल को, और यदि नहीं तो भी सुनिए इस गजल को, एंजॉय करना है क्योंकि बहुत ही प्यारे।

0: रंगे महफिल सुन रहे हैं आप, आपकी दोस्त आपकी होस्ट सीमा के साथ। जिंदगी भी इतने खूबसूरत है, हो भी क्यों ना इसमें अलग अलग रंग जो हैं, कभी हंसी के रंग, कभी दोस्ती के रंग, कभी रिश्तों की मिठास, तो कभी कुछ अनकही यादों के रंग, और इन सभी से मिलकर बनती है एक खूबसूरत से प्यारी जिंदगी। लेकिन हमेशा खुशियाँ ही हो ऐसा तो जिंदगी में नहीं होता, कभी कभी दुख, कभी परेशानी, इन सभी का एक मिश्रण तैयार होता है और बन जाती है जिंदगी। बहरहाल जिंदगी पर होंगी और भी बातें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोज़।

0: रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक दीवाने को आए हम समझाने, मगर इश्क में डूबे दिल को भी भला कौन समझा सकता है, कौन समझा पाया है। हमने कहा थोड़ा संभल जाओ, वो मुस्कुरा कर बोला इश्क में संभलना नहीं बस बिखरना आता है। समझाने वाले तो बहुत मिले इस दिल को, मगर इश्क की जिद थी बस उसी का नाम रहे। कभी कभी किसी दीवाने को समझाना भी कितना खूबसूरत होता है, क्या कभी महसूस किया है आपने? क्योंकि उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत की एक अलग ही कहानी दिखाई देती है। और आइए देखते हैं, यहाँ पर सुनते हैं उस कहानी को।

साथ स्टूडियो के मैडम टिकटिक इशारा कर रही हैं, यहाँ पर समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का इस वादे के साथ। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत सीमा चौधरी को, नमस्कार।

ये थी रंगे महफिल के साथ सीमा, एक खूबसूरत शो, बहुत ही नवाजिश के साथ, अदायगी के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम किया। और अब चूंकि कैलेंडर का दिन बदल चुका है, घड़ियों की सुइयां भी बदल चुकी हैं, और अब इशारा हो चुका है कि कुछ ही देर बाद हम लेकर आएँ आपके लिए प्रोग्राम ज़ीरो और शो इसी चैनल पर। लेकिन उससे पहले पेश है अब तक की मुख्य समाचार हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये उद्यान खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गाले में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सुन सकते हैं देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से। फिलहाल रजत शर्मा कर रहा है आपका स्वागत जीरो और शो में। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं खूबसूरत गानों के साथ और अपने मैसेजेस के साथ जो कि आप हमें भेजते रहते हैं 9868107070 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर

0: ये रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम

5:30 बजे प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF मिश्र बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गोल्फ में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:03 और 20 सेकंड हुए हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की पीने के पानी

की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम रंजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 408 रन बनाए। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: समय 2:08 और ये वक्त है भुलाए ना बने कार्यक्रम का, जो शुरू हो चुका है इस खूबसूरत गाने के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है, और जैसा मैंने बताया प्रोग्राम है भुलाए ना बने इस घंटे का शो, और इसमें आप मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आप इस फ्रीक्वेंसी के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगर यह ऐप नहीं डाली है अभी तक जनाब अपने फ़ोन वगैरह या डिवाइस में किसी में भी, तो अभी डालें और एंजॉय करें, लुत्फ़ उठाएं हमारे सभी कार्यक्रमों का एफएम रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस तो आपके मिलते ही हैं हमें, और अच्छा लगता है आपके मैसेजेस देखकर, जिस तरह काफ़ी लोगों ने आज आए हुए हैं। और मैं बता दूं इस वक्त जो मैसेज चल रहा है, नाम नहीं दिए हुए हैं लोगों ने, और आप अगर नाम बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना, धन्यवाद करने में आसानी रहेगी। रिया जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से, राजकुमार जी एम राजकुमार साहब हमारे नियमित श्रोता नियमित दोस्त ये जुड़े हैं, और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा आपको देखकर, और आप खैरियत के साथ रहें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नया मोड़। बहुत अच्छे गानों को लेकर आऊँगा, ये वादा ज़रूर कर रहा हूँ अपने हर शो की तरह, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, आप इस थोड़ा सा तरोताज़ा फील करेंगे और हौसला याफ्ता भी फील करेंगे, ये कोशिश रहती है हमारी, आज भी रहेगी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का

0: बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राजेश भलावी जी हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में गांव घोटी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। रिया जी हमारे साथ लगातार हैं, मैसेजेस पर आ ही रहे हैं आपके मैसेजेस। एम राजकुमार साहब ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी और उन्होंने ये भी

0: रिया जी को भी सुनकर अच्छा लगा इतने टाइम बाद, और उनके लिए शुभकामनाएं, वो ठीक रहें, सकुशल रहें। एक और मैसेज है, लेकिन इसमें नाम नहीं है, लेकिन हेलो आकाशवाणी लिखा है इन्होंने, काफ़ी देर पहले का ये मैसेज है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें की भी हैं, लेकिन बिना नाम के वो थोड़ा सा असहज हो जाता है। आपके नाम होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे बाकी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, नए दोस्त बनेंगे एक शो के ज़रिए से, एक ख़ास चैनल के लिए ज़रिए। और उम्मीद है आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा होगा। भुलाए ना बने का मकसद यही है कि ऐसी वो बातें जो भूले नहीं बनती, ऐसे वो गीत मुलाकातें जो भुलाए नहीं बनती, ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे लोग बातों को हम संयोजन के साथ यहाँ लाते हैं। समय हुआ है 2:52, कुछ सेकंड्स जारी रहेगा प्रोग्राम, एक और प्रस्तुति होगी, उसके बाद जुड़िएगा हमारे साथ मिडनाइट मेलोडीज़ में, ठीक 3 बजे समाचारों के बाद आखिरी प्रस्तुति के साथ। मैं रजत ले रहा हूँ विदा इस शो से, जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त

तक बढ़ाया। राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुल गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में शाम 5 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 3:03 और 10 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: गारे गारे
1: ये जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हमको भटका
0: गया गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये

अपने ही जाल में फंसत जात हम मर

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: अलबेला, जो है अकेला वो अलबेला, उसका जमाना।
1: शाबाश मेरे शागिर्द।
2: थैंक यू।

0: उसने कसाया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू।

सुबह के 4 बज चुके हैं। लीजिए पेश हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों और लद्दाख में आगामी जनगणना 2027 के लिए आज से सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी भरने की सुविधा शुरू होगी जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। एयर इंडिया की विशाखापट्टनम आने जाने वाली सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। गाजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमेरिकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम

बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। और गाले टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:02 हो चुके हैं और कार्यक्रम का वक्त हो चला है सारेगामा। नए पुराने गीतों के इस सजीले सुनहरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं। आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत। और जो हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हैं, हमारे सामयीन, हमारे लिसनर्स, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
1: हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों और लद्दाख में आगामी जनगणना 2027 के लिए आज से सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी भरने की सुविधा शुरू होगी जो 31 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अवैध सोना और चांदी ले जा रहे 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गाजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशेनर ने हमास के प्रमुख के साथ बैठक की। कुशेनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी और गोल्ड टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने तक प्रसिद्ध कृष्ण और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 5:03 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।